और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सकें, और तुम उन्हें देखते हो कि बज़ाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाके कुछ नहीं देखते। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अफ इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो।

0: इन लोगों को अपने घरों से इसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला, और उस वक्त मोमिनों की एक जमात ना खुश थी।
1: यूं

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

29 रन बना चुकी है अपने करियर में।

ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਓ।

पाकिस्तान की तरक्की का राज तमाम शहरियों खुसूसन अकलियतों और कमजोर तबकात को साथ लेकर चलने में है। जब हर फर्द खुद को महफूज और बाइज्जत महसूस करेगा तभी हमारा कौमी इत्तेहाद मजबूत होगा।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमेश कुमार है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं आज आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कश्मीरी भाई, हम आपके साथ हैं, हम पाकिस्तान के सारे हिंदू आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे।
2: दार बड़े भरपूर तरीके से निभाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
3: हम देख के रहेंगे, भारत चलेंगे, देख के रहेंगे।
4: कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू हैं तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर

0: कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को ना मिली है ना मिलेगी।
1: तू रोक ले राहें मस्जिद की, पर सजदे कैसे रुकेगा? मासूम दुआओं का रास्ता तू कह दे कैसे रुकेगा?

0: हर इंसान अल्लाह की तरफ से मुअज्जज है, चाहे वो किसी भी मजहब या नस्ल से हो। किसी को कमतर समझना या उसकी तजलील करना इस्लाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। आइए एक दूसरे को इज्जत दें और समाजी हमाहंगी को फरोग दें।
1: आज की मज़हब दुनिया में जब हम देखते हैं कि इंसानी हकूक के हवाले से या हक खुद इरादियत के हवाले से या कौमों की आज़ादी के हवाले से रिटेरिया हो या सूडान में कुछ हिस्से पर या जज़ायर के कुछ हिस्से पर कुछ माइनॉरिटीज़ के हकूक के हवाले से बात हो तो इंसान समझता है कि अभी इंसानियत ज़िंदा है। लेकिन इस बात का क्या किया जाए कि जब कश्मीर की बात आती है, फ़लस्तीन की बात आती है, तो ये इस्लामिक जो मूवमेंट्स हैं और ये आज़ादी की मूवमेंट्स हैं, ये हक़ के खुद इरादियत की मूवमेंट हैं, तो इनके हवाले से बैन अक़वामी सतह पर वो पज़ीराई नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान और कश्मीर दोनों यकजान हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसे शारक करार दिया था और शारक इंसान की ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ है, उसके बगैर इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल है। तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे में, पाकिस्तान के जवानों में, पाकिस्तान के बुज़ुर्गों में कश्मीरियों के साथ यकजहती का जज्बा मौजूद है और हर मुश्किल वक्त में कश्मीरियों के साथ ही पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अहम मौका है कि अब जबकि इंडिया ने एक तरफा तौर पर इतनी ज़्यादा जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया है और कानूनी तौर पर भी कश्मीरियों को कमज़ोर करने, उनकी आज़ादी पर हमला किया है, नीम खुद मुख्तारी पर हमला किया है, तो इस मौके पर जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए और मुअज़्ज़ब दुनिया को याद दिलाया जाए कि वो इस तरह की मज़लूम कौमों की मदद के लिए अगर सामने नहीं आएंगे तो उनकी इंसानियत के हवाले से जो उनके दावे हैं वो खोखले होंगे। FM 101 जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।

ये किस्सा जुल्म का किस्सा है, कई पहलू इस तस्वीर के, बर्फीले सब्ज़ा ज़ारों में ये आंसू।

कश्मीर के बेटे शेर जरी इज्जत से मरना जाने, गासिब की एक न माने, आजादी के दीवाने, दुश्मन की गोली के आगे ये अपना सीना ताने, हकदार का हक छीना जाए क्या अदल के ये पैमाने हैं।

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, built on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just... Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
1: ए जन्नते कश्मीर, तेरी मकबूज हवाओं को सलाम. यौमे इस्तेहसाले कश्मीर, कश्मीरियों से यकजहती के इजहार का दिन.
5: कश्मीर के हवाले से एक आज़ाद नज़्म पेश करती हूँ. ये आज फिर तेरी धरती पर किसका लहू टपका है, ऐ मेरे कश्मीर, ऐ जन्नत नज़ीर. सुर्ख सफ़ेद सेबों जैसे गुलाल चेहरे, नीलगुं आँखें, उम्मीद की जोत जगाए, मुंतज़िर हैं और हैरान हैं कि सारी फाख्ताएँ उड़ा ले गया कौन, फूलों की महकारें चुरा ले गया कौन, कि सारी फाख्ताएँ उड़ा ले गया कौन, फूलों की महकारें चुरा ले गया कौन. है कहीं सनसनाती गोलियों की बौछारें और कहीं चीखती माओं की आह बकाएं. फ़ज़ा में बारूद की ये सड़ांत कैसी, फ़ज़ा में बारूद की ये सड़ांत कैसी, मासूम कुलकारियाँ पड़ गईं मात कैसी. है कहीं सनसनाती गोलियों की बौछारें और कहीं चीखती माओं की आहो बकाएं. फ़ज़ा में बारूद की ये सड़ांत कैसी, मासूम कुलकारियाँ पड़ गईं मात कैसी. भूख और खौफ के संपोलिए, बेबसी और बेचारगी के अजदहे शजरे जीत से लिपटे हुए हैं. भूख और खौफ के संपोलिए, बेबसी और बेचारगी के अजदहे शजरे जीत से लिपटे हुए हैं. हर तरफ मौत के सायों के बीचों बीच, हर तरफ मौत के सायों के बीचों बीच एक बच्चा बम खिलौने से खेलता है. ایک بچہ بم کھلونے سے کھیلتا ہے، عقل ہے محو تماشا، ہر خطر سے بے نیاز، ہر خوف سے بالا تر، وہ آتش نمرود میں کودنا سیکھ گیا ہے، وہ آتش نمرود میں کودنا سیکھ گیا ہے، اب چاہے بھاری بوٹوں کی چاپ ہو یا نوکدار سنگینوں کی چبھن، اب چاہے بھاری بوٹوں کی چاپ ہو یا نوکدار سنگینوں کی چبھن، یہ آج کا بچہ، کشمیر کا بچہ، ہمارا کل، شعور و آگہی کی دہلیز پہ کھڑا، عزم و استقامت کی تصویر بنا، یہ آج کا بچہ، کشمیر کا بچہ، ہمارا کل، شعور و آگہی کی دہلیز پہ کھڑا، عزم و استقامت کی تصویر بنا، سوچتا ہے اور کہہ رہا ہے، اے دھرتی ماں، اے کشمیر، اے جنت نظیر، تو میری ماں ہے اور میں دھرتی ماں کا سر برہنہ نہ ہونے دوں گا، اور کہہ رہا ہے کہ اے کشمیر، جنت نظیر، تو میری ماں ہے اور میں دھرتی ماں کا سر برہنہ نہ ہونے دوں گا۔ میرے

0: बीजेपी ने मकबूजा इलाके को मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व के रंग में रंगने के लिए ये दीपक जो थी वो रोन डाली। अब कश्मीरी मुसलमानों का वजूद, उनकी शनाख्त और तहजीब तमदन शदीद खतरे से दो चार है। 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों को खामोश करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोशी अब एहतजाज में बदल चुकी है, जो कभी पोस्टरों की शक्ल में, कभी आलमी सतह पर आवाज बनकर गूंजती है, कभी सोशल मीडिया पर बगावत बनती है और कभी किसी शहीद के जनाजे में नारा बनकर रहती है। यही वजह है कि कश्मीरी आवाम के लिए 5 अगस्त को यौम सिह मनाना सिर्फ माजी के दुखों का मातम नहीं है, बल्कि हाल की मजम्मत और मुस्तकबिल की उम्मीद का इजहार है। इसी यौम सिह, यौम इस्तेहसाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज के मुजाकरे में हमने जिन मौजूद शख्सियात को, जिन सीनियर सहाफियों तज़ियाकारों को अपने स्टूडियोज में मधु किया है, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। सबसे पहले तशरीफ फरमा है टीवी और रेडियो के जाने मानी नाम शख्सियत जनाब मुश्ताक अहमद वाली सर, और फिर सीनियर सहाफी और तज़ियाकार मोहतरम हमजा रहमान और जनाब हाफिज खिजर हयात। तो आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो चलते हैं सवालात की तरफ, तो पहले आगाज वानी साहब से ही करते हैं। वानी साहब, ये जो कश्मीरी मुसलमानों के वजूद, उनकी शिनाख्त और तहजीब तमदन को खत्म करने के लिए अपने जिस मजमूम एजेंडे को मोदी हुकूमत तेजी से आगे बढ़ा रही है, जम्मू कश्मीर को बाकायदा तौर पर 2 यूनियन टेरिटरीज में और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम से किया था इसका आगाज, तो इसके साथ और कौन से इकदाम ऐसे किए गए, तो मुख्तसरन उन पर जरा सी रोशनी डालिए।
1: देखिए जी, रियासत जम्मू कश्मीर पार्टीशन के वक्त एक मुकम्मल आज़ाद रियासत थी, इनके दुनिया में मानी जाती रियासत थी, इनके अपनी करेंसी थी, वजीर आजम था, और इंडिया यानी जो हिंदुस्तान था वहाँ से जब भी कोई एंटर होता था तो वो वहाँ वीज़ा लेता था। और इस सिलसिले में एक बड़ी दिलचस्प वाकयात है कि नेहरू कोहाला पे जब गया तो उसके पास वीज़ा नहीं था, पिंडी में वीज़ा जारी होता था, तो फिर वो 3 दिन वहाँ कैद रहा, उसके बाद वीज़ा उसे ले जाया गया वहाँ। तो मतलब ये था कि एक मुकम्मल आज़ाद रियासत थी। फिर 47 में अगर आप देखें तो वहाँ का जो वज़ीर आज़म कोल था उसने पाकिस्तान के साथ कई मुआहदे कर लिए थे और उन परचम उन बिल्डिंग्स पे लगा दिए थे जो मुआहदे हुए थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन भारत की साजिश की वजह से ये सारा सिलसिला हो गया, उसने अपनी फौज उतारी। अब ये सिलसिला चल रहा था, कम अज़ कम कश्मीर की एक शनाख्त थी, अपना उनका परचम था, तराना था, रेडियो स्टेशन था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारतीय वजीर आजम मोदी ने जो इकदाम उठाया वो कश्मीर की तारीख का बदतरीन वाकया, तारीख 3 दिन था। उसने पार्लियामेंट से भारतीय आईन में जो कश्मीर के मुतल्लिक दफा 370 और 35 से उन्हें खत्म करके मकबूजा कश्मीर को जबरदस्ती भारत का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। जाहिर है ये बैनुल अक्वामी तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक बैनुल अक्वामी तनाजा है, जब तक ये हल नहीं होता कोई भी मुल्क उसको अपना हिस्सा नहीं बना सकता। लेकिन उसने जो वहां पर ये काम किया, और इसके बाद क्या हुआ कि कश्मीर के तमाम जो कवानीन थे उनके अपने खत्म हो गए, अंदरूनी जो मामला थे वो खत्म।

0: 101 FM।
1: कश्मीर एक जहदे मुसलसल, एक सुबह नौ का ख्वाब, जिसके हर जर्रे से तुलू होते हैं आजादी के आफताब, जिनको रोशन कर रहे हैं गाजियों के वलवले और शहीदों के लहू के कतरे। मेरे वतन, तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। 5 फरवरी।
2: अगर नीलम की लहरों पे मोहब्बत खुशबुओं की उंगलियों से अम का एक गीत लिखती तो ये कैसा था। चनारों में छिपे सब फूल जुगनू तितलियां आजाद सी नज़में सुनाते तो ये कैसा था। अगर सरसब्ज वादी के मकीनों की उठी नजरों में खुशियां गुनगुनाकर एक लंबी दास्तां का जगमगाता सा कोई उन्वान रख देती तो कैसा था। मगर ऐसा नहीं होता। यहां पर फाख्ता के पर सभी सरसब्ज शाखें और जो उठना चाहते हैं सर हमेशा कटते रहते हैं। कभी जंजीर पा नज़्मों को और बेरंग गीतों को शहर यारे मोहब्बत छू नहीं सकता। यहाँ पर हर कहानी को लहू से एक कहानी लिख रहा है पर कहानी को कोई उन्वा नहीं मिलता। ये किस तरह की बस्ती है, अंधेरे ही अंधेरे हैं, यहाँ अंधेरे सवेरे हैं, यहाँ पर जबर के मौसम हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये एक गमगीन वादी है जहाँ पर आसमां तो है मगर इस आसमां के तकने वालों को कोई रोशन सा सूरज, चांद या मध्यम सितारा तक नहीं मिलता। यहाँ अपने ही घर में बेघरी का रोग है और सोग है। हर दिल पे ऐसा जख्मकारी है कि जो वादों के रेशम से नहीं सिलता, कभी भी जो नहीं मिलता।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: देके रहेंगे, भारत चलेंगे।
4: कश्मीर, तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर

0: कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को ना मिली है ना मिलेगी।
1: तू रोक ले राह मस्जिद की, पर सजदे कैसे रोकेगा? मासूम दुआओं का रास्ता तू कह दे कैसे रोकेगा?

0: And now you are tuned into
1: FM 101
2: FM 101
3: FM 101
4: FM 101

0: Big socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: सेवरेंस, और अगर जान का खतरा है तो उसके खिलाफ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। तो मोदी ने तो बिल्कुल ही ओपन अकवाम करारदादों को ख़त्म कर दिया। तो इस पर तो हिंदुस्तान पर तो इकोनॉमिक सेंक्शन लगने चाहिए, इसे तो अकवाम की मेंबरशिप जो है उसकी ख़त्म करनी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को उठना चाहिए, और यह मोदी ये समझता है कि इस तरह वो मर्ज कर लेगा, जम कर लेगा। मर्जी ऐसे नहीं होता। जब हरी सिंह के साथ मुआहदा हुआ था तो उसमें साफ लिखा है कि ये मर्जी नहीं है, ये जम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने जम नहीं किया कश्मीर को 370 का, इसलिए आइन में ये आर्टिकल था। टेम्प्रेरी एक्सेशन आजील हक, और वो भी उसमें लिखा हुआ कि हम कश्मीरी जो चाहेंगे फैसला करेंगे। अकवाम मुत्तहदा की करारदाद यही है, लिहाजा इनको हर हालत में दुनिया को उठ खड़ा होना चाहिए, और हिंदुस्तान का खात्मा, हिंदुस्तान की वहाँ जो पॉलिसी है उसका खात्मा होना चाहिए, और कश्मीरियों को राजशुमारी का अकवाम मुत्तहदा करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए।
1: कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आंख में पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

0: के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आज इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी यकतरफा इकदाम की मजम्मत करना है। सदर वजीर आजम मुसल्ला फाज के सरबराह ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतजलजल यकजहती का इरादा किया है। नायब वजीर आजम बैतुल मुकद्दस से मुतालिक वजारती इजलास में शिरकत के लिए उर्दन के दारुल हुकूमत अमान पहुंच गए हैं। और पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे रोज आज वेस्ट इंडीज अपनी दूसरी इनिंग्स 6 विकेटों के नुकसान पर 103 रन से दोबारा शुरू करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: 101 FM.
2: कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आंख में पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर।

0: मासूम दुआओं का रस था, तू कह दे कैसे रोकेगा
1: लाचारों को।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: And now you are tuned into
2: FM 101.

आज़ादी चीखते, नस्लें हो गई मेरी जवान। यौमे इस्तेहसाले कश्मीर, कश्मीरियों से यकजहती के इजहार का दिन।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

जिंदा है पर मांग रही है जीने की आजादी, जिंदा है पर मांग रही है जीने की आजादी। देव के चुंगल में शहजादी, ये कश्मीर की वादी। हद्दे नजर तक सर्व सुनूबर हैं भी और नहीं भी, जालिम के दरबार में जैसे मोहर बलब फरियादी। छीनते हैं होठों से दुआएं और सरों से रिदाएं, दुश्मन ने जिन भेड़ियों को जंगी वर्दी पहना दी। शायद ऐसे एक मैयत पामाली से बच जाए, माँ ने कमसन बच्ची की दरिया में लाश बहा दी। सोए हुए जमीर ने अब तक दरवाजा नहीं खोला, हमने तो जुल्म के पहले दिन जंजीरें अदल हिला दी। हुस्न लकीरें खींच रहा था सादा से कागज पर, आजादी का लफ्ज लिखा कश्मीर की शक्ल बना दी। FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर की लाइव ट्रांसमिशन में हम अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। सामीन कराम, यौम इस्तेहसाले कश्मीर आज 5 अगस्त को पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जहां जहां कश्मीर की बात होती है वहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 तारीख के औराक में एक स्याह तरीन दिन गिना जाता है, वो दिन कि जिस दिन मकबूजा कश्मीर की और उसके अवाम की हक खुद इरादियत के साथ साथ उनके बुनियादी इंसानी और आईनी हुकूक पर शब खून मारा गया। जी हाँ, 2019 में ठीक आज ही के दिन हमसाया मुल्क के ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खुसूसी हैसियत को अपने आइन में तब्दील कर दिया, खत्म कर दिया, जो कि सरासर बैन अल-अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। और हम उस दिन से इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और रहेंगे जब तक कि ये अपनी असल हालत में बहाल नहीं हो जाता। लेकिन ये बात भी है कि इस अमर से, इस हरकत से उनकी जो नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत है उसकी कलई ना सिर्फ खुल गई बल्कि खुल के पूरी दुनिया के सामने आ गई। उसी स्याह दिन के खिलाफ पुरजोर मजम्मत के लिए, एहतजाज के लिए और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए हर साल 5 अगस्त को पाकिस्तानी अवाम ये दिन मनाते हैं, इसका अहतमाम करते हैं। इस दिन को याद रखने का मकसद कश्मीर, कश्मीरी अवाम के जिद्दोजहद आज़ादी और कुर्बानियों को याद रखना है। 79th इंडिपेंडेंस डे हम कुछ ही दिनों में मनाने जा रहे हैं पाकिस्तान का, और 79 ईयर्स ही कश्मीरी आवाम को हो गए हैं अपने हक के खुद इरादियत की आवाज़ बुलंद करते हुए। और हमारा अज़्म है कि उनको उनका हक मिलने तक हम उनके साथ खड़े हैं और हर साल इसी तरह कौमी सतह पर यह दिन मनाया जाता रहेगा और इसकी बात होती रहेगी हर प्लेटफॉर्म पर। रैलीज भी निकलेंगी, सेमिनार्स भी होंगे, नेशनली इंटरनेशनली जिस प्लेटफॉर्म पर मौका मिला इसकी बात भी होगी।

0: और जो लहदगी पसंद तंजीमें हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की, बिलखसूस अगर हम ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने भी इस आईनी तरमीम को न सिर्फ रद्द किया बल्कि इसकी बहाली का तकाजा किया है और इसकी बहाली तक उन्होंने इस दिन को यौम सयाह के तौर पर मनाने का अज़्म किया है। सो हम दुआगो हैं आज के दिन ख़ास तौर पर। वैसे तो हमेशा हमारे दिल हमारे कश्मीरी आवाम के साथ धड़कते हैं और हम उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं, लेकिन आज के दिन बिलखसूस हम उनके साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। सामिन कराम, FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से हम आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं और कुछ ही देर में हम मज़ीद सिलसिले भी आज के शो के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मुझे कहते हैं सातिया रफीक।
1: तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर।

0: है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को न मिली है न मिलेगी।
1: तू रोक ले राहे मस्जिद की, पर सजदे कैसे रोकेगा? मासूम दुआओं का रास्ता तू कह दे कैसे रोकेगा?

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं फ्रॉम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मैं हूं आपके साथ सादिया रफीक। मेरे साथ कुछ और गेस्ट भी आज स्टूडियोज में मौजूद हैं, जिनके साथ हम आपका तारुफ भी कराएंगे, उनसे बात भी करेंगे। सो वन बाय वन हम जनाब आपकी गुफ्तगू जो है उसका आगाज करते हैं। आई होप आप सब लोग एक्साइटेड हैं, लग नहीं रहे ना। सो जनाब लेट्स सी कौन कौन हमारे साथ है। बारी बारी जनाब बताइएगा कौन कौन हमारे साथ है।
1: मेरा नाम हिदब फैसल है और मैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हूँ।
0: अच्छा जी, और आगे।
2: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आयशा सुल्तान है और इस वक्त मैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान में एज अ इंटर्न मौजूद हूँ और मेरी तरफ से एज एन एडवांस सबको जश्न आज़ादी मुबारक
0: जी।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा शकूर है और मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है। सो थैंक यू मैम सादिया फॉर इन्वाइटिंग अस
0: जी। और हमारे साथ कौन है।
4: अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा 101 के स्टूडियो से अपने सामीन तक आवाज़ पहुंचा रहा है। हवा की दोष पर ये आवाज़ पहुंच रही है और आपका बहुत शुक्रिया कि हमें रेडियो पाकिस्तान से ये मौका दिया कि हमारी आवाज़ पहुंचे और हमारी बातें पहुंचे।
0: जी वेरी नाइस, बहुत अच्छे वोकल्स हैं। आप बताइए।
5: मोहम्मद अली मिन्हाज यूनिवर्सिटी लाहौर से।
0: ऑलराइट, अली हैं हमारे साथ। अच्छा जनाब, मीरब आयशा फातिमा रेहान और अली हमारे साथ हैं। मुझे भी याद करने पड़े नाम। सो हम बात कर रहे हैं आज स्पेशली अपने इस शो में इंडिपेंडेंस डे को लेके, हम कुछ जो है गुफ्तगू करेंगे आप लोगों के साथ क्योंकि इट्स अराउंड द कॉर्नर। एंड सेलिब्रेशंस की बात करें तो पूरे शहर में आपको हर तरफ रंग बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। सो वन बाय वन आप लोगों से छोटी छोटी सी हम चिट चैट करेंगे। आई होप हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी इसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे। सो ये हमारे कुछ न्यू कमर्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आयशा आपसे स्टार्ट लेते हैं, कैसे मनाती हैं इंडिपेंडेंस डे को, और अगर बात करें अपने बचपन के इंडिपेंडेंस डे की और आज के इंडिपेंडेंस डे की, तो क्या फ़र्क आपको मिल दिखता है।
2: देखिए आज़ादी जो है ना हमारे लिए इसके एक बहुत वसी मायने रखती है। अगर मैं अपने बचपन में चली जाऊँ आज से 10-15 साल पहले, तो हम बचपन में अपने घरों को झंडियों से सजाया करते थे और जैसे ही अगस्त के माह का आगाज़ होता था तो एक अजीब सी ऐसा एक्साइटमेंट हमारे अंदर आ जाया करती थी कि झंडियाँ लेनी हैं, कौमी बैजेस लेने हैं और घर सजाना है और मिली नगमों की प्रैक्टिस करनी है। स्कूल्स में हमारी तकरीबात हुआ करती थी तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं और मेरे सारे कज़न्स मिलकर झंडियाँ ख़रीदा करते थे और वो आटे की लई बना के हम पूरे घर को सजाया करते थे। और हमेशा हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में 14 अगस्त की जो तकरीबात होती थी उसमें हम लोग मिली नगमों की खुसूसी तैयारी किया करते थे, वो एक बहुत खूबसूरत याद है। लेकिन इन सारी यादों के साथ हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें आज़ादी मिली कैसे है। हमारे जो आबाव अजदाद थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उस वक्त पर हम लोगों ने, उन लोगों ने जो भी कुर्बानियाँ दी, हमें उस चीज़ को याद रखना चाहिए कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। हम आज दुनिया में जितने भी काफ़ी ऐसे खित्ते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल कशीदा है जो कि जिनकी आज़ादी का स्टेटस मुतनाज़ा है, तो अगर हम देखें हमें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद रियासत के अंदर, एक आज़ाद खुली फ़िज़ा के अंदर सांस ले रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि हम कैसे इस आज़ादी को मना सकते हैं, कैसे अपने मुल्क को आगे ले जा सकते हैं और हमारा एज अ आवाम, एज अ सिटीज़न इसके अंदर क्या रोल होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ पर हमें सोचना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट के साथ हमारा अपना उसमें क्या रोल होना चाहिए।
0: वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत बात की आशा ने। और ये लकी ऐसा जो है वो कहना चाहिए कि ऐसे बहुत कम लोग से सोचते हैं और गहरी बात है और ये हम सबको सोचते हैं। आयशा आपने बहुत अच्छी आज़ादी तो हमें मिलती है लेकिन उस आज़ादी की कीमत हमने किस तरह से उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और किस तरह अपने मुल्क ज़मीन को आगे लेकर जाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लिसनर्स फातिमा لسنرز, اب ہم بات کرتے ہیں ریحان سے. تو ریحان, آپ کو کیا فرق لگتا ہے آپ کے بچپن کے جشن آزادی میں اور آج کے جشن آزادی میں, ایز این اڈلٹ, ایز اے اسٹوڈنٹ, اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, تو کیا فرق آیا؟
4: انسان کی زندگی کا میں سمجھتا ہوں جو حسین ترین دور ہے وہ بچپن کا دور ہے. اور غیر سنجیدہ حرکتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں دیکھنے والوں کو بھی, اور خود انسان بھی محظوظ ہوتا ہے. میں جب اپنے بچپن پہ نظر ڈالتا ہوں تو وہ یاد پڑتا ہے کہ جھنڈیاں لینا, سائیکل سجانا, موٹر سائیکل سجانا, اور جشن آزادی کے آنے سے پہلے 14 دن پہلے, 15 دن پہلے گھر کو سجا لینا. لیکن اب صورتحال کچھ ایسی ہے, مصروفیات بھی ظاہر ہے بڑھ چکی ہیں, تو اب شاید ہم منانے سے زیادہ, وہ بچپن میں ہمیں بڑے یہ بھی کہتے تھے کہ منانے سے زیادہ آپ عملی جو پیغامات ہیں ان پر بھی عمل کریں, تو اب ہم شاید عمل کے دور میں داخل ہو چکے ہیں اور منانا شاید اب اس طرح نہیں رہا. لیکن
0: منانا بھی ویسے ہی ہونا چاہیے, بالکل ویسے
4: ہونا چاہیے.
0: اچھا, بچوں کو انکریج نہیں کرتے اب؟
4: نہیں, وہی نا, اب تو اب چھوٹے بچوں کو ہی بس, خود تو منانے والی باتیں اب نہیں رہی, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں شاید. تو لیکن یہ ہے کہ جشن آزادی منانا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں وقت نہیں مل رہا تو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو, اپنے چھوٹے بھائیوں کو انکریج کریں, ان کو کہیں کہ آئیے ہم ان کے ساتھ منائیں. یعنی خود اگر جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تو ان کو لے کر دیں کہ جناب اب آپ نے گھر سجانا ہے, اور اس طرح پیغام جو ہے نسل در نسل یہ
0: منتقل
4: ہوتا رہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے قائد اعظم کے افکار کو آگے پہنچانا ہے, علامہ کے افکار کو آگے پہنچانا ہے. اب ہم اس فیز میں شاید داخل ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں, تو منانے کے ساتھ عملی تعبیرات جو ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے, اور یہ اہمیت مجھے لگتا ہے اس کی اہم ہے.
0: بہت شکریہ ریحان, اور صحیح کہا آپ نے بھی, آلموسٹ وہی ملتی جلتی بات ہے کہ اب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے آ گئے ہیں, اور اب جو ہمارے فرائز ہیں وہ تھوڑے بدل گئے ہیں. اس کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, فی الحال شامل کر رہے ہیں ایک ملی نغمہ اپنے پروگرام میں, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے, سنتے رہیے FM 101 ریڈیو پاکستان لاہور.

0: जी जनाब, बहुत सारे गेस्ट हमारे पास मौजूद, हमारे साथ मौजूद हमारे आज की ट्रांसमिशन में, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की। अभी हम बात करने जा रहे हैं जनाब मीरब से। मीरब हमें देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। सो मीरब, कैसा था आपके बचपन का जश्न आज़ादी और आज का जश्न आज़ादी, क्या फ़र्क आया?
1: अच्छा, तो बचपन का जश्न आज़ादी जब हम सेलिब्रेट करते थे आज से तकरीबन 10 साल पहले, तो उसमें और आज के सेलिब्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसमें ये है कि हम पहले घर को ख़ुद झंडियाँ लगा के सजाते थे, अब तो रेडीमेड मिल जाती हैं और वैसे ही लगा लेते हैं। और तब उसमें जो मेहनत लगती थी और जोश जो होता था वो आज का, मुझे लगता है कि आज कम है, पहले ज़्यादा होता था।
0: एग्जैक्टली, अब तो मैं कहती हूँ कि बच्चे फरमाइश करते हैं तो फ़ौरन पेरेंट्स कहते हैं चलाओ चल के लेकर आते हैं ना, तो हम तो इतने इतने दिन पहले प्लानिंग शुरू करते थे, पॉकेट मनी से पैसे निकाल निकाल के जोड़ना शुरू करते थे कि अब हमने जो है वो जश्न आज़ादी मनानी है। सो अब किस तरह से मनाती हैं, क्या करती हैं 14 अगस्त पे?
1: शुरुआत तो यहाँ से होती है कि हम पहले फायरवर्क्स देखने जाते हैं। रात 12 बजे ही हम पहुँच जाते हैं, मीनार पाकिस्तान जाएँ या वैसे तो वहाँ ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो वहाँ जाते हैं पहले फायरवर्क्स देखते हैं। फिर सुबह होते ही झंडियों से आगाज़ होता है, फिर घर में ही जिसको कहते हैं तो खाना पीना ये वो सब कुछ।
0: ठीक हो गया। अली, आप क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से? अच्छा, स्माइल आप लोग बहुत कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन ना ये स्माइल माइक में भी देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको आपकी तस्वीर नहीं जा रही है।
2: दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत,
0: बेशक
2: दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। तो 14 अगस्त हमारे तो खून में शामिल है, ये आज़ादी का दिन। और बचपन से ही हम, जब बचपन में ये ऐलान होता था कि कौन सा घर कौन सी गली सबसे ज़्यादा सजेगी तो उसे इनाम मिलेगा, तो वो एक लगन होती थी, एक जज्बा होता था, झंडियाँ लेनी, फिर उसको सजाना घरों को गलियों को, फिर सारा दिन जुलूस निकालने, तो
0: नारे लगाने
2: गलियों में जश्न आज़ादी के, तो खून में ही एक जज्बा होता था कि बस। फिर हम वो रेडियो पे टेलीविज़न पे नगमे सुनते थे वो मैडम नूर जहान के और इन लेजेंड्स के, तो एक अंदर से ही एक आवाज़ आती थी कि वो कितने अजीम लोग थे, इतनी अजीम उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस वतन के लिए और आज हमें ये वतन मिला। उस वक्त एहसास होता है इंसान को कि आज ये वतन ऐसे नहीं मिल गया, तो अभी भी वो जज्बा है, अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी एक आवाज़ आए तो हम बस
0: बॉर्डर काबिले दीद होता है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये इसी तरह से सलामत रहेगा, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी जब तक निभाते रहेंगे, जब तक ये जज्बा आगे अगली नस्लों में मुंतकिल करते रहेंगे, ये जज्बा सलामत रहेगा। सो फातिमा, आपकी तरफ आते हैं, फातिमा के बचपन का इंडिपेंडेंस डे। फातिमा अभी भी छोटी सी लग रही है वैसे तो।
3: थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बात करूँ अपने बचपन की, तो मुझे याद है हम तीनों बहन भाई ना मिलकर क्या कहते हैं झंडियाँ पहले ख़रीदते थे और आटे की लेई बनाकर पूरी गली हम लोगों ने सजानी होती थी, और जब 14 अगस्त गुजर जाती थी तो जो गली गंदी हुई होती थी झंडियों की वजह से, उसके ऊपर हम लोगों की काफ़ी बेइज्जती भी होती थी। तो आई फील लाइक कि अब की जनरेशन का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आजकल की जनरेशन को सेलिब्रेशन उस तरह से नहीं सेलिब्रेट करती जिस तरह से हम लोग करते थे। काफ़ी ट्रेंड्स में चेंज आ चुका है। अगर हम आज की बात करें तो आजकल 14 अगस्त से पहले ही हमें बाजों की आवाज़ें सुनने को मिल रही होती हैं, तो आई फील लाइक कि इसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल होता है। आई फील लाइक जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि बजाय नॉइज़ पोल्यूशन के, लाइक आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आपने उसको किस तरह से पूरी सेलिब्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना है उस पर काम करना चाहिए। और रिसेंटली मैंने एक ट्रेंड देखा है जो काफ़ी मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी, काफ़ी सोशल मीडिया पे रील्स आपको देखने को मिली होंगी, काफ़ी एनजीओज इसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं कि किस तरह से 14 अगस्त पे वो प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी एक्टिवली कर रही है, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट एफर्ट।
0: बहुत खूबसूरत, दो बातें बहुत ही खूबसूरत फातिमा ने की हैं अपनी गुफ्तगू में, कि जो हम सेलिब्रेशन के बाद जो हालात होते हैं, जिस तरह से वही बंटिंग्स वही झंडियां जो हमने लगाई होती हैं वो जब गिर रही होती हैं, तो फिर उसका एहतराम करना और उनको संभालना उठाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया कि आप शामिल हुए प्रोग्राम में, आप सब ने अपनी अपनी आरा का इजहार किया, अपने अपने एक्सपीरियंसेस का इजहार किया। और ऐसा ही है जनाब के बचपन में, हमारे बचपन में हमें लगता है कि थोड़ी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल रेडीली अवेलेबल सारी चीज़ें हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। राइट नाउ जनाब हम बढ़ रहे हैं एक और मिली नगमे की जानिब, ये प्ले करते हैं, इसके बाद लौट कर आते हैं आपके साथ और कुछ नए मेहमान, कुछ नए दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ साथ रहिए, सुनते रहिए FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: जी हाँ जनाब, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। वे बैक अगेन। हमारे साथ कुछ नए गेस्ट मौजूद हैं, कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ हम्माद मौजूद हैं, शकीला है, अक्सा है, किरण है और जनाब हमारे साथ मनाहिल मौजूद हैं। और हम बात कर रहे हैं आज इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के हवाले से, कौन किस तरह से मनाता है। सो मनाहिल से आगाज़ करते हैं आई गेस।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जश्न आज़ादी के मौके पर जैसे बात हो रही है तो मैं यही कहूँगी कि जश्न आज़ादी मनाना बहुत मज़ा आता है। हमने बचपन से देखा है कि किस तरह, मतलब हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह शहादतें दीं, और वो बड़ों से स्टोरीज सुनना और इंटरेस्ट लेके के कैसे क्या हुआ, किस तरह सब कुछ सबने किया, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और फिर मिली नगमों से जो जोश आता है वो तो फिर एक अलग ही मज़ा है उसका। और अब मैं यही कहूँगी कि जश्न आज़ादी अगर मनानी है तो फिर उसके लिए कोई नेक काम करना चाहिए, अब बजाय इसके कि आप इधर उधर की एक्टिविटीज़ करें। तो किसी की मदद करें, पौधे लगाएं, द बेस्ट थिंग।
0: वेरी नाइस जनाब, बहुत अच्छी बात की है मनाहिल ने। पौधे लगाएं, मुल्क की खिदमत करें, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। दिस इज़ द बेस्ट वे वी कैन पे बैक टू आवर कंट्री। और जनाब अब हम बात करते हैं अक्सा से। अक्सा की राय जानते हैं, अक्सा से पूछते हैं जनाब कि वो किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, करती आई हैं 14 अगस्त को, जश्न आज़ादी को।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा मुस्तफ़ा है और आज जश्न आज़ादी के मौके पर बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जश्न आज़ादी ऐसे मनाते, घर में झंडियाँ लगाते हैं, सारे ही लगाते हैं। मैं ये कहूँगी कि 14 अगस्त को झंडियाँ तो लगा लेते हैं, लेकिन 15 अगस्त को वही झंडियाँ नीचे गिर रही होती हैं, पाँव में आती हैं, तो दिल को बहुत कुछ, मतलब बुरा लगता है बहुत। और सुनने वालों तक मेरी आवाज़ जा रही है, यही कहूँगी कि उनको जैसे लगाते हैं फिर अगले दिन उनको उतार भी लिया करें, ताकि वो पाँव के नीचे ना आए। और मैं सबसे पहले दुआ करती हूँ शहदा के लिए और झंडा लगाती हूँ घर में, और उसके बाद फिर घूमना फिरना और बहुत कुछ।
0: घूमना फिरना जनाब, ये तो हमारा फेवरेट मशगला है 14 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे पे, और ऐसे लग रहा होता है सारा शहर आज सड़कों पे
2: ही आ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
0: तो हम्माद से बात करते हैं जनाब, हम्माद से जानते हैं कि वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे को।
3: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हम्माद है। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय करना, उसमें सबसे पहले तो याद आती है हमारे बचपन की, कि जिसमें हम पूरे घर को सजाया करते थे झंडियों से, और बाइसाइकिल को सजाना, अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्रूज पे निकलना साइकिल्स का। आजकल तो लाइक जब बड़े हो जाते हैं तो गाड़ियों पे क्रूज करते हैं, हम साइकिल्स पे करते थे, और हमारे लिए वही एक बहुत बड़ी बात होती थी। और सबसे मेन चीज़ कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और इस चीज़ का हम सब पाकिस्तानियों को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दी है, हम एक आज़ाद कौम है। और हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इस मुल्क में एक आज़ाद सोच के साथ और आज़ाद घूम फिर रहे हैं। तो यही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि बस इस मुल्क का ख्याल रखें। 14 अगस्त को सिर्फ इसी तरह सेलिब्रेट ना कीजिए कि बाली बजा लिए, मोटरबाइक्स के सेंसर उतार दिए, इसके अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ करें, कि जिस तरह पौधे लगाएँ, दरख्त लगाएँ और अपने लोगों के काम। थैंक यू सो मच।
0: बहुत शुक्रिया हम्माद, बहुत खूबसूरत बात की आपने। किरण हमारे साथ मौजूद है जनाब, और किरण के पास एक बहुत ही एक्साइटिंग सा कोई मिली नगमा है, वो शेयर करना चाहती हैं आप सभी लिसनर्स के साथ। सो किरण क्या सुना रही हैं?
4: सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
4: जी, मैं पाकिस्तान के हवाले से एक मिली नगमा सुनाऊँगी।

इसमें काम आया है किस दर्जा शहीदों का लहू, इस पे हम सोचे जरा, इस पे जरा।

इस पे किसी तौर ना आने देंगे। अमन और खुशियों से हम इसको सजाएंगे सदा, अपनी धरती।

0: थैंक यू सो मच.
1: बहुत शुक्रिया. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आवाज़ भी और अंदाज भी. माशाल्लाह काफ़ी रियाज़ है आपका.
0: थैंक यू.
1: सो मुझे एक बात याद आ गई कि हम लोग मिल्ली नगमों का भी एक कंपटीशन रखा करते थे. मुझे याद है कि बचपन में जब हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे होते थे तो सारे बच्चे इकट्ठे होके एक कंपटीशन रखते थे जिसके लिए हम लोग बाकायदा गिफ्ट्स भी ख़रीदते थे और उनको पैक करके और फिर खुद ही जो पोजीशंस होती थी वो भी डिक्लेयर करते थे. तो देखें कितने हम क्रिएटिव होते थे. आई डोंट नो कि अब जो अगली नस्ल है वो इस तरह से मनाएगी या नहीं मनाएगी. हम आज से हम बात कर रहे थे, हम आज जिक्र कर रहे थे कुछ साइकिल सजाने का और वो साइकिल के क्रूज़ की बात कर रहे थे. सो हम आज बताइएगा कैसे और किस तरह से, मतलब आप भी नारे लगाते थे गलियों में.
2: एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से ही है. हम भी जब सब फ्रेंड्स और कज़न्स निकलते थे बाहर रोड पे तो हम भी इसी तरह नारे लगाते थे. हमारी साइकिल्स पे झंडियाँ लगी होती थी और हम करते इस तरह से थे कि ग्रीन एंड वाइट कलर की ही टेप्स जो मिलती हैं वो पूरी साइकिल पे लगा लेते थे ताकि वो एक प्रॉपर थीम हो और हम भी फिर उसी तरह से रेडी होते थे वाइट एंड ब्लैक ड्रेसिंग के साथ. तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं कि बैजेस लगाना और बाजे लेना. अब तो ये चीज़ें आई थिंक कम हो गई हैं, पहले शायद ज़्यादा थी.
1: बाजे ज़्यादा हो गए हैं
2: जी, बाजे वो ज़्यादा हो गए हैं. वैसे सजावट वगैरह करना वो चीज़ें अब बहुत कम हो गई हैं जिस तरह से पहले सजाया करते थे रोड्स को और इस तरह से चीज़ें. अब बस इतना ही है कि हम हमारे लिए अब के वक्त में 14 अगस्त इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चले गए, हैंग आउट कर लिया, या फिर अर्ली मॉर्निंग फायरवर्क्स देखने चले गए इस तरह से, या फिर मिली नगमे गा लिए.
1: बिल्कुल सही
2: इस तरह से.
1: सो शकीला आपसे आपकी तरफ आते हैं, आप बताइएगा कि आपने किस तरह से ऑब्जर्व किया बचपन में इंडिपेंडेंस डे को और अब किस तरह से मनाती हैं, बस मुख्तसर से जल्दी से.
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी सुनने वालों को. सबसे पहले मैं FM 101 पाकिस्तान लाहौर का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया. तो बात कर लेते हैं बचपन से. तो बचपन की जो जश्न आज़ादी होती थी वो आज के दौर से मुख्तलिफ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बहन भाइयों में ये कंपटीशन होता था कि सबसे झंडियाँ किसने लगानी है, सबसे ज़्यादा झंडियाँ. और ये के यानी कि झंडियाँ लगाने के साथ साथ ये भी देखना है कि कितनी गिनना भी है उसको, और सबको बताना है कि अम्मी को अबू को हमने ज़्यादा लगा ली हैं. और ये कि मैं समझती हूँ कि जब हम जश्न आज़ादी बचपन में मनाते थे तो मुझे लगता है कि वो ना हमें लगता था कि ये आज़ाद ये जो झंडा है ना, ये झंडी है, ये एक झंडा नहीं है, ये झंडी नहीं है, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती थी दिल की. यानी कि जैसे हम कहते हैं ना वतन की मोहब्बत हमारे अंदर ईमान की तरह है, तो वो फीलिंग्स होती थी हमारी. तो आज के दौर में मैं ये समझती हूँ कि आज हमें आज़ादी तो हमें सबको पता है 14 अगस्त आता है, हम सब उसी हिसाब से कपड़े बनवा लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जिस शोबे से वाबस्ता हैं, सिर्फ हम उसमें काम नहीं कर रहे. मैं यही समझती हूँ कि अमली फुकदान बढ़ गया है और बाकी वही चल रहा है सब कुछ.
1: बिल्कुल सही. सो जो ये अमली फुकदान है इस पे बात करेंगे और भी लोगों के साथ. हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं. स्टिक अराउंड, दिस इज FM 101 रेडियो पाकिस्तान.

0: now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.
3: FM 101.
1: FM 101. 101. 101. 101.

0: Alright listeners, welcome back for once again. News break ke baad laut kar aa chuke aapke saath ek baar phir se FM 101 Radio Pakistan Lahore ke live on air studio se hum aapse mukhatib hain, mujhe kehte hain Sadia Rafiq. Baat kar rahe hain hum jashn e azadi ke hawale se 14 August. That is just around the corner and celebrations are in there. हर तरफ रंग बिखर चुके हैं जनाब, और जिधर जाइए सब्स और सफ़ेद ही मिलता है. सो आज हमने स्टूडियोज़ में भी यही रंग सजाए हैं. अपने साथ कुछ मेहमान भी हमने इनवाइट किए हैं जो आपसे बात कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, अपने जश्न आज़ादी की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से मनाते हैं. सो अभी हमें जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में, उनमें शामिल हैं सिदरा शब्बीर हमारे साथ हैं, लाइबा शाहजहाँ हैं, लाइबा आसिफ हैं, फिज़ा डार हैं और ईमान ज़हरा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं. इन सबको खुश आमदीद कहते हैं. सो बात करते हैं हम सबसे पहले सिदरा से, आगाज़ करते हैं. सिदरा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप महसूस करती हैं, क्या फ़र्क है आपके बचपन के जश्न आज़ादी में और अब के जश्न आज़ादी में, किस तरह मनाती थीं, किस तरह मनाती हैं?
1: मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बचपन के जो 14 अगस्त मनाई जाती थी, जो मैं मनाती थी, वो तो मैं बहुत ही पुरजोश तरीके से मनाती थी और मैं बहुत एक्साइटेड होती थी. जैसे ही अगस्त का महीना आना, मैंने जो है वो झंडियाँ ख़रीदनी अपनी अम्मी से पैसे लेकर, और जी उन झंडियों को ख़रीदने के बाद मैं उन पर आटा लगा के उन्हें घर में लगाती थी, हर तरफ झंडियाँ लगाती थी और बहुत मज़ा आता था. तब मना 14 अगस्त मनाने की बात की जाए तो अभी हम बहुत पुरजोश तरीके से मनाते हैं. अपने घर में सब सिलाली परचम लगाते हैं, वही झंडियाँ लगाना, और बहुत मज़ा आता है अभी भी. लेकिन जो बचपन की वो यादें हैं वो बहुत खूबसूरत थीं.
0: बेशक, अब क्योंकि बचपन जो है बहुत मेमोरेबल होते हैं, जब बड़े होते हैं तो फिर वो याद आता है, तो फिर हम कहते हैं कि यार वो दौर सबसे अच्छा था, कुछ था भी अच्छा. या फिर शायद सबको अपना बचपन ही अच्छा लगता है. एनी जनाब, बहुत शुक्रिया सिदरा. और लाइबा, आपसे बात करते हैं. लाइबा शाहजहाँ हमारे साथ मौजूद हैं. सो लाइबा, क्या कहेंगी आप, कैसे मनाती थी, कैसे मनाती हैं?
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा शाहजहाँ है. जश्न आज़ादी ये एक ऐसा इवेंट है जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है. तो मैं कहूँगी कि अगर आपको ये देखना है कि किसी कौम की क्या कनेक्टिविटी है किसी इवेंट से, तो आपको उनके बच्चों को देखना चाहिए कि उनके जो अर्ली टीन्स में या उससे छोटे बच्चे हैं वो उस इवेंट को कैसे सेलिब्रेट करते हैं. अभी कल ही की बात है कि मैं देख रही थी, एक छोटा सा बच्चा 4 साल का होगा मुश्किल से, और वो इतना खूबसूरत स्टॉल लगा के बैठा था और उसके साथ उसके दादा बैठे थे. तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ से जाऊँ ही ना. मैं उसके स्टॉल के पास गई, उससे बातें की, उसको इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वो कह रहा था हाँ हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था इसीलिए मैंने ये स्टॉल लगाया हुआ है. तो मुझे भी फिर मैं सारा बैकग्राउंड याद आ रहा था कि मैं भी ऐसे करती थी. इधर ही बचपन का एक दुख भी मैं आपको सुना दूँ कि जब भी मैं झंडियाँ लगाती थी उसी दिन बारिश आ जाती थी और वो सारी झंडियाँ भीग के जो है ना वो ज़मीन पे आ जाती थी. लेकिन मैं उन सब झंडियों को इकट्ठा करती थी और उन्हें बहुत संभाल के रखती थी. तो मेरा सब बच्चों के लिए यही मैसेज है कि आप झंडियाँ लगाते हैं तो उन्हें संभाल के भी रखा करें, और कोई भी झंडी और झंडा जो है वो हमारे पाँव के नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उन्हें उठा लिया करें.
0: ओके ओके ओके.

ऑलराइट लिसनर्स, लाइबा बात कर रही थी अपने बचपन की कि किस तरह से वो मनाती थी अपना इंडिपेंडेंस डे. सो जनाब सभी को अपना बचपन बहुत याद आता है इंडिपेंडेंस डे को लेके. एंड आई गेस कि ये जितनी भी खुशियां हैं ये बचपन में दुबाला होती हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं बच्चे, एक्साइटेड होते हैं. आजकल के बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं. लेकिन अगेन बीइंग एल्डर्स और बड़े होने के नाते, अब जो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो ये है कि हम इस जज्बा हुब्बुल वतनी को इसी तरह से जिस तरह से हमें दिखाया गया, सिखाया गया, हमारे अंदर जो है इसको पैदा किया गया, उसी तरह से हम अपनी आइंदा नस्लों के अंदर भी इस जज्बे को इसी तरह से पैदा करें, बेदार रखें, उनको गाइड करते रहें, उनको टाइम दें, उनके साथ मिल के सेलिब्रेशंस करें और उनको अहमियत बताएं इस दिन की, आज़ादी की. और ये मेरा, आपका, हम सब का फ़र्ज़ है. इसी के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद, इस ख्वाहिश के साथ कि आपसे होगी फिर मुलाकात. उस वक्त तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए, जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में हैं. जस्ट प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड से ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद. और शो को अभी कंटिन्यू करेंगे आरजे डॉक्स. सो एवरीवन टेक केयर, फी अमानिल्लाह.

0: हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं मंथ ऑफ सेलिब्रेशन की स्पेशल ट्रांसमिशन विद द डॉक्स। और वक्त हो चुका है 12:20 और आज है जी 5 अगस्त 2026 का सिन। एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चेंज माई BGM। हमारी नई आरजे आई हैं सादिया रफीक, उनका BGM ट्राई करते हैं। मैडम आपका BGM अच्छा है, आप बीट यस अफगान जलेबी वाला सीन है। हमारी पुरानी आरजे नई नई होके आई है वापस। एनीवेज आई गेस आवर टेलीफोन लाइन इज वर्किंग। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये मैं बताना चाहूँगा कि आज और कल के दिन आप सुनेंगे हमारे साथ हमारे जितने इंटर्न्स हैं। एक्चुअली वी आर इंटरेक्टिंग विद आर यूथ। और आज़ादी का महीना है, 2026 अगस्त है आज, और हम बात करेंगे कुछ भी लेकिन एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू आज़ादी। डोंट वरी, परेशान नहीं होना, लेकिन आपके बचपन के किस्से नहीं सुनूंगा मैं। फ्यूचर प्लान्स पे बात करेंगे कुछ और, ताकि थोड़ी परेशानी हो आपको, परेशान होने का मजा आएगा आपको। आप लोगों के माइक में ऑन करता हूँ। ओके, अभी मेरे से पहले मैडम सादिया थी, यहाँ पे बात चल रही थी आई गेस आपकी बचपन की हैबिट्स क्या रहीं, जश्न आज़ादी के हवाले से किस तरह से करते थे और क्या नहीं करते थे। एंड यू कैन कॉल अस एज वेल 0422111001। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए इफ़ यू डोंट हैव इंटरनेट एक्सेस तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पे। एंड आई वुड लव टू टेक योर कॉल्स। पहले कॉल ही लेंगे। हेलो, अस्सलाम
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
1: सर बहुत शुक्रिया आपने कॉल उठाई। अच्छा, टेलर इतने बाजार।
0: मैं वैसे फोन उठाना पसंद करता हूँ लेकिन आज मैंने कॉल उठा ली।
1: थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह पास सलामत रखे आपको।
0: कौन साहब है हमारे साथ?
1: सलीम टेलर इचरे बाजार।
0: जनाब सलीम साहब, इस जश्न आजादी पे आप कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर लगा रहे हैं कि नहीं?
1: नहीं सर, कोई नहीं लगाई अभी।
0: फिर फोन बंद कर दो, मैं नहीं बोल रहा। मैं नहीं गाल कर रहा। आपको लगानी चाहिए, आपको लगानी चाहिए। आप चाहे 50 रुपए कम करें यार, एटलीस्ट कम तो करें ना। सारी दुनिया करती है, इस तरह के इवेंट आते हैं उस पर कुछ ना कुछ तो कम होना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप स्पेशल एक बाहर कुछ लिख के लगाएं कि जी 14 अगस्त के मौका पर इन 2 अयाम में जो हमें बुकिंग कराएगा उसे 100 रुपए का डिस्काउंट या 200 रुपए का कोई डिस्काउंट ऑफर लगाए।
1: 200 रुपए रियायत करना हो, मैं उन्हें लिख के ला दूं।
0: उन्हें लिख के लाओ तो मैंने फोटो कर ली है, मैं अपलोड कराऊंगा अपने फेसबुक पे।
1: अरे वाह,
0: डन करें। ठीक है,
1: ठीक है सर।
0: कुछ तो फायदा होया ना आवाम का। तमाम जितने सुनने वाले हैं, जरा सलीम टेलर साहब के पास आप जा सकते हैं, 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मैं कहना साल के कपड़े इकट्ठे ही सवा लेने और आप कोशिश करें सारे सफेद और सबस शलवार सूट सिलवाए अगले 4-5 सालों के इकट्ठे। आप बल्कि ये भी करें कि जश्न आजादी के हवाले से इन 2 कलर्स का जो सिलवाएगा उससे ज्यादा डिस्काउंट दें।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: कोई नहीं, बड़ी दुनिया से आप बड़े बड़े लोगों के कपड़े सीते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, थोड़ा सा कम कर लो।
1: सर मेरी गल सुनो।
0: सुनाओ सुनाओ सर।
1: सर तुसी नाश्ता की करके आए जी?
0: मैं आज कुछ नहीं खादा, आज मैं भूखा ही लड़ांगा।
1: सर कड़ी पकौड़े बने थे साडे नाल होटल दे।
0: क्या बात है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त इंटर्न्स बैठे हैं, यूथ बैठी है। जश्न आजादी के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: सर ये जो आपने ये महीना पहले एक शुरू किया, इनमें काम के नए आदे, माइक पे बोलना सिखाना और नई अब जो जनरेशन है इनके लिए बहुत अच्छी ये एकेडमी है।
0: थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू,
2: थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
1: और इनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये जो नए लोग आए हैं यहाँ पे और इनका जज्बा देख के हमें बहुत खुशी हुई कि वाकई माइक यहाँ पे बोलना सिखाते हैं।
0: नहीं नहीं, आपको बहुत सारी नई आवाजें मिलेंगी जी इंशाल्लाह आने वाले महीने में।
1: और जितने
0: मैं के साढ़े आर दे पुराने बंदे को लो जान छुड़ाई है ताड़ी।
1: हमारे बहन भाई आए हैं, इनको हम वेलकम करते हैं और इनको आजादी मुबारक, बल्कि पूरे पाकिस्तान को आजादी मुबारक।
0: थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: ऑलराइट, हम पहले इंटर्न से बात करते हैं, देखते हैं आप में से कौन बोलेगा पहले। 1 2 3 here we go।
2: सर मेरी तरफ से बिस्मिल्लाह करें।
0: जी जी आप करें, आप पहले भी मेरे शो में हो के।
2: जी जी बहुत मजा आया था, बहुत यादगार प्रोग्राम था मेरा।
0: हाँ थैंक यू यार।
2: उसके बाद मैंने आपके बाकी प्रोग्राम सुनने शुरू कर दिए थे।
0: उसके बाद मेरा ख्याल है प्रोग्राम ही कोई नहीं हुआ। प्रोग्राम तो आज
2: आज दूसरा होने
0: का सुना लिया। हाँ जी, व्हाट यू थिंक अबाउट जश्न आज़ादी?
2: जश्न आज़ादी
0: किस तरह से परसीव कैसे करते हो आज़ादी को?
2: जश्न आज़ादी का दिन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। इस चीज में हमें याद रखना चाहिए कि ये दिन हमें
0: मोटरसाइकिल का सिलेंसर बाहर होना चाहिए।
2: नहीं, ये यही चीज मैं आगे करने लगा था।
0: फिर
2: बाजा बड़ा होना चाहिए। नहीं, ये है कि इस दिन की अहमियत को जो है ना आपका बाजा जो है वो बिल्कुल जाया कर देता है। मैंने बहुत दफा देखा कि वो बाजा जो है वो इस दिन की बका को, इस दिन की अहमियत को जो है वो कहीं पसे पोछ डाल देता है। इस दिन की जो कदर कीमत है उस चीज को जो है वो भुला देता है, क्योंकि बाजा
0: को याद करके आए।
2: नहीं नहीं, मेरी कुदरती तौर पर ये अंसर मेरे अंदर मौजूद है। लेकिन ये कि
0: अनासर कहाँ से लाए तो?
2: ये कुदरत का मजाहर है।
0: अच्छा माशा,
2: मेरे बस में कुछ नहीं है। तो ये है कि इसमें पौधे लगा कर, प्लांट्स वगैरह ग्रो करके, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है सोसाइटी को इस वक्त प्लांट्स की। और बहुत ज्यादा जो है गर्मी का जो मौसम है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट जो है, इस चीज के ऊपर हमें इस दिन को नहीं बल्कि हर दिन जो है प्लांट को ग्रो करना चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। और इस दिन को खास तौर पर अगर हम एक टारगेट रख के प्लांट लगाएंगे तो आई थिंक सो के वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा।
0: ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अपना नाम नहीं बताया आपने?
2: हमजा अहमद रजा, वैसे कहते नाम ही काफी है, लेकिन हमजा अहमद
0: आने के बाद आप सारे ने पहले अपना नाम बताया।
2: ओके, मेरा नाम
0: तमाम सुनने वालों के लिए बताता जाऊंगा कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने इंटर्न्स के साथ। रेडियो पाकिस्तान ने जो इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें वी आर एक्चुअली एजुकेटिंग देम हाउ टू कम्युनिकेट एंड ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ एंड दे आर मच मैच्योर। जिस दिन आए थे उससे आज अब काफी बदल चुके हैं। सो अब हमारे साथ ये माइक पे हैं तो आपसे भी ये गपशप करेंगे। आप बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं। बार बार लाल बत्ती जल के इशारा दे रही है, अगली कॉल है। यू गोना टेक द कॉल। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम,
0: क्या हाल है आपके?
3: ठीक ठाक सर, आप सुनाइए।
4: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर?
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, बड़ी माशाल्लाह रंका लगी आई थे स्टूडियो से।
3: जी सर बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है आज़ादी का महीना है और हम जश्न आज़ादी के उस एक कॉन्सेप्ट
4: पर बात करेंगे। जितनी टीम आई है उन जश्न मुबारक, जितने आज़ादी मुबारक हो गए
3: आपको, बहुत बहुत मुबारक।
4: आज जी डॉक्टर साहब किधर गए, किधर गए पाया ना?
0: मैं भज गया जी, आवाज सुन के
4: ना यार भज। मैं अब्दुल हमीद बरसी वाला, सलीम ने नहीं सोया 200 रुपया तो मैं 100 रुपया
0: करूंगा जी। नहीं सर, नहीं 200 रुपया उन स्टैंडर्ड हो गया सर, बर्फी तो 200 रुपया कटाओ सर।
4: यार 200 रुपया आज 200 से बचना कोई नहीं, मैंने पल्ले पाने।
0: अच्छा चलो 100 रुपया फिर लिख के लाना है, मैं नहीं करना।
4: 100 रुपया लिख के लाता जी, वादा मेरा,
0: वादा चलो डन हो गया जी। हाँ, दुकान का पता भी दस दियो, मैं भी उतों मंगा ला।
4: जिला शिवपुरा फुलकाबाद अगे छोटा सरकारी साहब हमारा
0: जरूर जरूर जी, जरूर जी, जबरदस्त जबरदस्त। अमीर साहब है, 100 रुपए का डिस्काउंट लगाया, पूरा महीना चलना चाहिए 14 अगस्त का महीना पूरा।
4: इंशाल्लाह इंशाल्लाह सदका अल्लाह बैठता तो सदका पांचा फाग का मैं वादा कर।
3: बिल्कुल सर, ये तो आपने एक अपने सुनने वालों के लिए, जिन्होंने सुना उनके लिए जो डिस्काउंट दिया है उससे तो आपने वो एक आजादी का मजा डबल कर दिया। बिल्कुल सर, ये तो उनकी मेहनत है और काशे है जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं और इस तरह से बात कर पा रहे हैं। सर बाकी आप अपना कोई एक ऐसा पैगाम देना चाहें लोगों को जश्न आजादी के हवाले से?
4: पैगाम ये दूंगा, सबसे पहले तो मैं दुआ मांगूंगा अपने कश्मीरियों भाइयों वास्ते, वो भी साडे वर्ग जिवें असीं आजाद, वो भी आजाद हो जाए तो बहुत खुशी मिलेगी। तो बाकी पाकिस्तान वाले जिन्ने भी साडे भैणा भरा आवे, जिवें असीं साडी रेडियो की टीम ना, तो भी असीं एक होकर रहिए।
3: बिल्कुल
0: تھینک یو ویری مچ جی میٹھا بہت شکریہ تھینک یو
4: رب رکھا جی اللہ حافظ اللہ پاکستان زندہ باد پاک آرمی بھی زندہ باد پاکستان
0: زندہ باد ناؤ وی گونا ٹاک ایمان آپ سے بات کرتے ہیں بالکل آپ سے آپ کے بچپن کے قصے میں نہیں پوچھوں گا ویسے کبھی مجھے یہ بتائیں آپ نے گوند کا پتہ کیا ہوتی ہے
5: جی گلو
0: ہاں اس سے جھنڈیاں لگائیں کبھی
5: نہیں لگاتے تھے جب ماما پاپا پہلی بار پیسے دے دیتے تھے جب وہ گوند ضائع ہو جاتی اس کے بعد آٹا چوری کرتے تھے فریج سے
0: آٹے کی آتی ہے بنانی
5: جی
0: کیسے بناتے ہیں ریسیپی بتاؤ
5: ریسیپی سب سے پہلے آپ نے آٹا لینا ہے اس کے اندر پانی ڈالنا
0: آٹا لینا
5: اور اس کو پتلا کر لینا ہے بہت زیادہ
0: لینا
5: گوندنا نہیں ہے اس کو چمچ سے مکس کر لینا ہے لئی سی بنا لینی ہے جسے کہتے ہیں اور اس کو پھر جھنڈیوں کے پیچھے لگا کے اور جو دھاگا باندھا ہوتا ہے اس کے اوپر چپکا لینا ہے لو جی آپ کی جھنڈیاں تیار ہیں
0: ویری گڈ ویری گڈ اور آپ لگاتی ہو ہر سال
5: جی ہر سال پہلے لگاتے تھے بچپن میں زیادہ تر لیکن اب تھوڑا چھوٹے بھائی ہیں وہ لگاتے ہیں وہ بہت زیادہ شوقین ہیں اس چیز کے اور باجا جو کلچر آ چکا ہے اس نے تو باقی یہ ساری چیزوں کو بہت پیچھے کر دی
0: میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات
5: ہے
0: اوپر اوپر سے کہہ رہی ہو گھر میں آپ بھی باجے بجاتی ہو ہے نا
5: نہیں نہیں
0: ہاں ہاں
5: میری ماما چھوٹے والا گلا باجا ہے بس اور باجا نہ لے کے آنا
0: یہ بھی اچھا ہے زبردست اپنا تعارف کروائیں بتائیں آپ کون ہیں کیوں ہیں
6: میرا نام فضا ڈائر ہے اور جشن
0: مائک کے پاس آ کے بول رہا ہوں
6: اور جشن آزادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے
0: پریشان ہو رہی ہیں
6: نہیں
0: کیوں نہیں ہو رہی پریشان ہونا چاہیے آپ کو فیل آنی چاہیے پریشانی ہو رہی ہے ہاں میں بہت گھبرا رہی ہوں کنفیوز ہو رہی ہوں
6: نہیں سر
0: آپ لائیو ہیں
6: ابھی نہیں ہو رہی
0: کالر سے بات کریں
6: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
0: ہیلو ہیلو ساڈا کالر ہی ڈراتا ہے
6: وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
7: میں فرید برجی لاہور سے بات کر رہی ہوں
6: جی کیا نام ہے آپ کا
7: فرید برجی لاہور سے بات کر رہی ہوں آج ڈاکٹر میرے بیٹے ہیں ان کو پتا چل گیا میں کون ہوں
6: جی جی وہ بتا رہے ہیں آپ کا نام
0: بالکل ایسے ہی ہے
7: ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا
0: سارے مل کے پڑھے
7: تیرے دم سے شان ہماری نام ہمارا
0: جب تک یہ دنیا باقی دیکھے آزاد تجھے ہم دے فری جی سبز اور سفید چاول لا رہی ہیں آپ 14 اگست
7: چودہ اگست کو میں پہنچ رہی ہوں سار میں بیجز ہوں گے چوڑیاں ہوں گی گرین والی
0: میں چوڑیاں نہیں پہن سکتا اب میرے لیے چوڑیاں مت لائیں
7: دوسری میری بیٹیاں ہیں نا زبیہ شفیق ہے زینب ارشد باقی ساری آئیں گی نا تو ان کو چوڑیاں دیتی ہوتی ہیں نا
0: ہاں میرے لیے دوپٹہ لے آنا مجھے اکثر شرم آتی ہے
7: آپ کے لیے میں پھیرا لے گیا ہوں گی سونے کا پھیرا آپ کی شادی پہ
0: لے کے آنا ہوں مگر نہ جانا چھڈ دیو اگلی گل لبھی جائے گی تسی سیرا لے آ سونے دا شہزیب یہ سونے کے سیرے کے بغیر آئے اندر نہیں آنے دینا
7: نوٹوں والی کاپی بھی میرے پاس پڑی ہوئی آپ کی
0: اوپر یہ عید مبارک نہیں لکھا ہونا چاہیے اچھا ڈان کریں ڈان ہو گیا فری جی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے نا آپ کی ینگ جنریشن ہے ینگ انٹرنس ہیں ہمارے بیٹھے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں
7: یہ سب آگے ہیں منے منے آگے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں بڑے آرزے بنیں گے
6: انشاءاللہ بہت
7: شکریہ دعائیں نیک دعائیں ان کے ساتھ ہیں
0: انشاءاللہ
7: ہلو
0: بات شرما رہے ہیں آپ سے نا شرما رہے ہیں آج
7: کیوں شرما رہے ہیں میں ان کی والدہ سے بڑی ہوں تو میں میری بیٹی جو ہے پنجاب یونیورسٹی کے نا لیکچرار ہے ان یونیورسٹیوں میں پڑھا رہی ہیں تو میں ان کی والدہ ہوں اس لیے یہ بچے جو ہے نا مجھے میرے شاگرد لگتے ہیں انہوں نے ملک کی باغڈور سنبھالنی ہے اچھی باتیں کریں گے تو ہمیں اچھا سبق ملے گا ان سے
0: بالکل ٹھیک ہے
6: اچھا چلیں آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی 14 اگست کیسے مناتی ہیں یہ دن کو
7: میں جب 101 پہ آتی ہوں जो कुछ होता है मैं इधर ही मना के ना, तो फिर मैं घर आ जाती हूँ।
6: ठीक है, मतलब आप सारा दिन रेडियो पाकिस्तान FM 101 सुनती हैं?
7: 101 मुझे बड़ा प्यारा लगता है। इधर के सब आरजे मेरे जो है ना, वो मेरे ना बेटे भी है, बेटियाँ भी है।
6: तो आप सारे शो सुनती हैं?
7: नहीं साला, पूरे शो रात को आरजे डोसा शो सुनती हूँ। वसीम भाई का पूरा रेडियो मेरे साथ है।
6: तो आपके फेवरेट आरजे कौन है इनमें से?
7: ये जो मेरे पास आपके बैठे
0: हुए आज ये डॉग से
6: इनके फेवरेट होने की वजह बताएं।
7: आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आवाज बड़ी प्यारी है, जो लेक्चर देते हैं वो हमारे लिए सबक मोल होता है।
6: बिल्कुल,
0: चले अगली दफा आपने रजिस्टर लेके आना, मैं चेक करूंगा आपने सही से नोट की है चीजें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फरी जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। वक्त हो चुका है 12:36 और आज है जी 5 अगस्त 2026। किसी ने FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं अगस्त स्पेशल, जश्न आजादी स्पेशल प्रोग्राम, एंड दिस इज आज डॉक्स, और ये चलेगा कल के दिन भी चलेगा जी 12 से 4, एंड उसके अलावा अगले हफ्ते भी, फिर बल्कि अगले हफ्ते आप सुनेंगे इंटर्न से नई आवाज़ों के साथ नए प्रोग्राम, पुरानी आवाज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, अच्छा अच्छा फील करेंगे। अभी आप एक गाना चलाते हैं और गाने के बाद वापस आते हैं, तब तक मैं इन्हें बताता हूँ गाना लाते हुए ब्रेक किमें लेनी है, तो कॉलरों को तंग किमें करना है, तो उन्होंने कहना बस करो हम बंद कर दो। Enjoy the number. And yes, I'll be taking a call 0422111001.

0: असलामुअलैकुम, मेरा नाम गाइबा आसिफ है और आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 के स्टूडियो से बराहे रास्त। ट्रांसमिशन का नाम है हम एक हैं। आज है 5 अगस्त है, 12:40 हो चुके हैं और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं इंटरनेस RJ डॉक्स के साथ। हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं लाइव और आपसे बातें हो रही हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि हमने अपने बचपन में यौम आज़ादी कैसे मनाई और हमने
1: पूछा ही नहीं
0: लेकिन हम बात कर रहे हैं ना इस बारे में,
1: बता रहे हो आप
0: अपने बारे में। हम अपने यादगार जितने भी मोमेंट्स थे वो बता रहे हैं कि हमारे क्या क्या गुजरे, हमने क्या क्या सेलिब्रेट किया और हम आगे क्या क्या करेंगे, हम क्या इस हवाले से जो 14 अगस्त आ रही है उसको हम कैसे मनाएंगे, क्या हम हमारी क्या प्लानिंग है उसके बारे में बातें हो रही हैं। मजीद बातें होंगी आगे और आगे आज हमारे से बात करेंगे।
1: वेरी गुड, कैसा लगा स्टार्ट करना?
0: बहुत अच्छा लगा।
1: क्यों?
0: पहली दफा।
1: ओके,
0: और उसके
1: अब मुझे आपने ये बताना है, आपने बहुत सारी बातें की इसमें, आपने कहा कि हम बताएंगे आगे हम क्या करेंगे। नाउ यू गोना टेल मी आगे आप क्या करेंगे।
0: पहले तो ये जो 14 अगस्त आ रही है उसके हवाले से तो बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, जैसे कि वही होता था कि झंडियाँ गाना, परचम गाना और बाजे तो पर्सनली मुझे आई डोंट लाइक इट, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर होता है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि बचपन से हम जो होता था झंडियाँ वगैरह, हम बचपन से बच्चों का माइंड बहुत बिजनेस वाला माइंड सेट होता है, जैसे हमारा तो बहुत था क्योंकि हम बचपन से झंडियाँ बेचते थे। बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे मेज लगा लेते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे मेज लगा के उसके ऊपर वो जो फ्रेम होता है वो कलरिंग वाला और जो झंडियाँ होती हैं वो सारा कुछ लगा के बच्चे बैठ जाते हैं, वो पारा वगैरह। तो हम तभी वहाँ से हम बेचते थे और काफी कमाई हो जाती थी।
2: हार्ड एंटरप्रेन्योर की कहानी यहाँ से स्टार्ट है ना।
1: तुम्हें किसने बुलाया भाई?
2: आपने।
1: अच्छा, चलो गुड गुड, इस दफा फिर कट्टे मिल के काम करें।
0: मतलब
1: हम सारे मिल के बाहर बैठ जाते हैं ना, सारे मिल के
0: स्टार्ट करते हैं, काफी कमाई होगी।
1: बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किसकी होगी? इन्वेस्टर हमारे
0: सारे
1: पास
0: मिल के करेंगे ना।
1: चलो डन करो सेल, लेकिन मार्केटिंग आपने करनी है।
0: ठीक हो गया।
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: अब बेचने के लिए आवाज लगाने के लिए मैं बैठ जाऊंगा।
0: नहीं, जब अट्रैक्टिव चीजें होंगी तो वो खुद ही आएंगे।
1: अच्छा, वैसे क्या आवाज अगर लगाई जाए तो किस तरह से आवाज लगाई जाएगी?
0: आवाज तो नहीं लगाएंगे,
1: नहीं अगर लगानी पड़ जाए,
0: बच गाना सा
1: अगर लगानी पड़ जाए
0: बायो कुड़ियो क्योंकि ज्यादा बच्चे ही आते हैं, बच्चे ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
1: वेरी गुड लाइबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा जी। ऑल राइट जी, वक्त हो चुका है 12:43, 5 अगस्त 2026 के सेट ने FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आजादी के महीने की स्पेशल ट्रांसमिशन हम एक हैं। और बिल्कुल एक हैं जी चीज़ें, देखें घर में एक ही माँ के बतन से पैदा होने वाले बहन भाई जो होते हैं उनमें भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री तब हम एक हैं कुछ भी हो। एंड विल ऑलवेज स्टे लाइक दिस इंशाल्लाह। एंड यू कैन कॉल अस 04-2111-0101, इस पर कॉल कर सकते हैं और बात चल रही है आज़ादी के हवाले से, आज भी चलेगी कल भी चलेगी, आप कोई भी मैसेज कोई भी बात, एनी थिंग we are waiting and we're going to take the call.
3: Hello, assalam alaikum.
4: Yes, assalam alaikum.
3: Hello, assalam alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
3: Sir, kya hal hai aapke, kya naam hai aapka?
4: Ji sir, theek hai, khairiyat se hain aap? Ji mujhe Mohammad Usman Mughal kehte hain.
3: मोहम्मद उस्मान सर, आज हम रेडियो FM 101 में जिसने आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे इंटर्निस मौजूद हैं FM 101 में RJ डॉक्स के साथ, तो इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
4: सबसे पहले तो मैं सारे RJ डॉक्स के जितने आप बिलखसूस स्टूडेंट्स हैं सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप खुश नसीब हैं कि आप सर डॉक्स के स्टूडेंट हैं।
3: जी जी,
4: तो ये बहुत अजीम जखीरा है, कोशिश करना है कि इनकी कदर करना और इनकी कदर करवाना।
3: बिल्कुल ऐसे
1: आजकल पता है जखीरे किवें लभदे ने?
4: जी जी,
1: ओ बंब लांदे ने पहले
4: नहीं नहीं बंब जेड़ा
1: जेड़ा बंब लांदे ने फिर ओ जेड़ा ना बंब जदों फटदा है फिर जखीरे लभन वास्ते ना ओ कुदाल फड़ लैंदे ने ते पन तोड़ करके फिर जखीरे लभदे ने।
4: कोई गल नहीं, पक्के पकाए लब रहे हैं क्योंकि 2026 जा रहे हैं।
1: हाँ नहीं, उन्होंने भी पान तोड़ के कट लेना फिर।
4: हाँ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਹੋ, ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ, ਔਰ ਅਸਦ ਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੁਗਲ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਔਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕੋ?
4: ਜੀ ਵੋ ਮੁਝੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ
1: ਜੀ,
4: ਅਗਰ ਵੋ ਆਪ ਕਹੇ ਤੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰ।
1: ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ।
4: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ ਫਿਰ
4: ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹੈ।
1: ਹੈਂ
4: ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਾਲੇ ਸੀ?
1: ਹਾਂ ਸੁਣਾਏ ਸੁਣਾਏ।
4: ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।
1: ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ?
4: ਹਾਂਜੀ।
1: ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ
4: ਜੀ।
1: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਯੂਰ ਕਾਲ ਜੀ।
4: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
1: ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ
4: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
1: ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ?
3: ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਨਾਮ ਬਤਾਤੇ ਹੈਂ?
3: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਹੈ। ਔਰ
1: ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੁਮਨੇ।
3: ਜੀ ਸਰ, ਹੈ
1: ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਆਏ ਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ
3: ਸੀ, ਥੋੜੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀ, ਅਬ ਥੋੜਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ
1: ਮਾਹੌਲ ਮੇ ਘੁਲ ਗਏ ਨੇ,
3: ਮਾਹੌਲ ਮੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ
1: ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
3: ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਤਾਓ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ?
3: ਸਰ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਗਰ ਹਮ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਹਮ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮੇ ਹਮੇ ਹੋਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਝੰਡੀਆਂ ਲੇ, ਬੈਜਿਸ ਲੇ, ਔਰ ਪੇਂਟ ਲੇ ਕੇ ਜੋ ਨਾ।
1: ਅਭੀ ਅਭੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
3: ਵਹੀ ਮੈਂ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਹਮ ਐਜ਼ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇਖਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਕਿਆ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਮੇ, ਹਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਜ਼ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਹਮ ਪੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਫਰਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਹਮ 14 ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਯੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਅਬ ਬਾਜੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਲੰਸਰ ਜੋ ਹੈ ਵਾਲਟਰ ਕਰੇ ਬਾਈਕਸ ਮੇ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੇ ਹਮ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਕਸ ਕਟਿੰਗ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਹਤਮਾਮ ਹੋਤਾ ਹਮਾਰੇ 14 ਅਗਸਤ ਕੋ ਲੇਕਰ।
1: ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ?
3: ਸਰ ਪਰਸਨਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਹਮ 14 ਅਗਸਤ ਪੇ, ਜਾਂ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਮੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ।
1: ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਮੇ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੋ?
3: ਜੀ ਸਰ।
1: ਕਿਸ ਕਲਰ ਕਾ?
3: ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਵਾਈਟ।
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਪੇ ਬਨਵਾਤੇ ਹੋ?
3: ਯੈਸ ਸਰ।
1: ਗੁੱਡ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟਰਨ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
5: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ।
1: ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ?
5: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੀਨਤ ਇਸ਼ਫਾਕ ਹੈ।
1: ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮਾਈਕ। ਹਾਂਜੀ,
5: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੀਨਤ ਇਸ਼ਫਾਕ ਹੈ।
1: ਕਿਆ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਪ?
5: ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂੰ।
1: ਕਿਉਂ?
5: ਕਿਉਂ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
1: ਯੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੀ ਜਾਏ?
5: ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬੌਂਬ ਹੋਰ ਵੋ ਕਾਲਜ ਮੇ ਹੋਰ, ਬਟ ਐਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਬਸ।
1: ਮੈਡਮ ਯੇ ਸ਼ੋਅ ਬੈਨ ਕਰਾਏਗੀ, ਯੇ ਸ਼ੋਅ ਬੈਨ ਕਰਾਏਗੀ।
5: ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਈ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਕੌਨ ਸਾ ਅਸਲ ਮੇ ਬੌਂਬ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
1: ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਰਾਦੇ ਆਪਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੌਨ ਸੀ ਟੀਚਰ ਆਪਕੋ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ?
5: ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰਸ ਮੁਝੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮੁਝੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੋ ਟੀਚਰ ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੋ?
5: ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਅਬ ਉਹਨੇ ਆਰਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਾ ਕਹੂੰ ਉਨਕੋ।
1: ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ?
5: ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਈ ਆਰ ਕੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਉਨਸੇ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਵੋ ਉਨਕੀ ਟੂਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਐਸਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ।
1: ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਬਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਜਾਣੇ ਚਾਹੀਏ।
5: ਨਹੀਂ ਬਜਾਣੇ ਚਾਹੀਏ,
1: ਹੈ ਨਾ?
5: ਬਜਾਣੇ ਚਾਹੀਏ,
1: ਬਜਾਣੇ ਚਾਹੀਏ।
5: ਯੈਸ, ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਖੁਦ ਮੁਝੇ ਬਾਜਾ ਨਾ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਤੀ 14 ਅਗਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
1: ਮੁਝੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ,
5: ਮੁਝੇ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1: ਇਸਕਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਪ 14 ਅਗਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤੀ ਹੋ ਫਿਰ?
5: ਹਮ 13 ਅਗਸਤ ਕੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਤ ਪੇ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਗਮੇ ਗਾਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੋਏ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਤੰਗ ਕਰਤੇ।
1: ਸੁਣਾਓ ਕੌਨ ਸਾ ਨਗਮਾ?
5: ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਨਗਮੇ ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ਉਨਕੋ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਾਤੇ ਹੈ।
1: ਆਪ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਗਾਤੀ ਹੋ?
5: ਹਾਂ।
1: ਕੌਨ ਸਾ?
5: ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਆ ਥਾ, ਅਬ ਕਿਆ ਯਾਦ ਹੋਗਾ।
1: ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 14 ਅਗਸਤ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਹੋ?
5: ਝੰਡੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ
1: ਬਸ,
5: ਔਰ ਬਾਜਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ।
1: ਬਾਜਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਲ।
5: ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਮੈਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭੀ ਤੱਕ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਭੀ।
1: ਕਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
5: ਓਕੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
6: ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
5: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਕੈਸੀ ਹਾਂ ਆਪ?
6: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो जैनब?
5: मैं भी ठीक हूँ।
6: जैनब आपका मतलब
1: उस्तानी आ गई है आपकी कॉल पे?
5: कुछ नहीं होता, आई कैन हैंडल।
1: ये उस्तानी है, ये सारों की उस्तानी है।
6: नहीं
1: बहुत ज्यादा है, देख लेना हूं जो कर लें 40-50 बंद कर लेने
6: इंशाल्लाह इंशाल्लाह 14 अगस्त को सही इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पहुंच जाएगा।
1: चले जबरदस्त।
5: तो आप 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें इंटर्निस को?
6: पहले तो मैं ये कहूंगी कि सर डॉक्स दी ग्रेट कमाल कर रहे हैं इंटर्नशिप का जो इन्होंने शुरू कर दिया, और इतने इतने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे खूबसूरत अंदाज में आ रहे हैं और इतना खूबसूरत सीख के आ रहे हैं। और जैनब आपका तो फिर वो सीन है ना कि या अल्लाह सैलाब आए तो स्कूल का अलग ही उड़ जाए।
5: मैं आपकी बात से मुतफिका हूँ, बिल्कुल मुतफिका हूँ बिल्कुल।
6: मुझे पहले पता था वैसे
1: जो भी है दोनों में से कोई जो भी है मुतफिका हूँ मतवक्का हूँ ठीक है
6: ठीक है बाजा वैसे मुझे भी पसंद है।
1: मैंने इसलिए कहा उस्तानी आ गई, दो में एक को जाएंगे।
5: नहीं आपने कहा ना नन्हे मुन्ने बच्चे इंटर्निस्ट, तो फिर उनको जो उनको तो बाजा पसंद होगा
6: ना, थोड़ा सा
1: कैसे दोबारा जरा बताएं।
5: हाँ दोबारा बताइएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल।
6: पाकिस्तान जिंदाबाद होता है फिर, अब पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। और बहुत खूबसूरत आप शोज कर रहे हैं, जो न्यू इंटर्निस भी जो जबरदस्त बोल रहे हैं आके, पता लग रहा है डॉग्स ने कितनी मेहनत की थी। वे लोग
1: नहीं, ये टीम एफर्ट है, मैं तो टाइम ही कोई नहीं देता, ये खुद भी बड़े शार्प है।
6: टीम भी जबरदस्त है ना फिर
1: जो, नहीं ये तो बहुत ही शार्प है जो मेरे सामने बैठी है।
6: कोई नहीं जाना, सर दे कोल से माचिस बम छोड़ देना, कोई गल नहीं।
1: उन्हें सूट भी देना है, किन्हों कह रहे हो तुसी। एनीवे इसको मैसेज देना चाहेंगी आप?
6: वैसे है कि इनकी साथ हमारा ख्याल रखना भाई।
1: कोई मैसेज देना चाहेंगी आप?
6: अल्लाह ताला हमारे मुल्क कौम पे अपना रहम करम रखे और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। और ये कहूंगी कि मोहब्बत और प्यार बांटें, एहसास और फिक्र का एहसास दिलाते रहें।
5: शुक्रिया मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह
6: हाफिज़। थैंक यू सो मच। ये आपको वो सिखा रहे हैं कि आपने कॉलर को भगाना कैसे।
1: हाँ जी सही समझी हैं आप, बिल्कुल सही समझी। मैं अगर मैं तो नमक खाया भाई, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, तुम मैंने को चले जाए अब
6: जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज सबके लिए, बहुत ही दुआएं।
1: थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम अनिला थी और ये हमारी बड़ी पुरानी कॉलर हैं, थैंक यू वेरी मच आप सबका। अब यहाँ पे हम एक नगमा लगाते हैं, मेरे वतन ये अकीदत है, अ ब्यूटीफुल ट्रैक, डोंट गो एनीवेयर, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस track, and it's 12:54 PM on the dial on 5th of August 2026. This is Ajay Talks and we are celebrating Azadi month. Hum sab ek hain and definitely will be always. Do gaane kyun chal rahe hain?

0: Of course, when the vibe is high and mic is hot, it's your boy on the spot. My name is Shaheer Safdar and you are listening to the special transmission on FM 101 Lahore. Hum Ek Hain and this is Independent Special Transmission. Hamare saath maujood hain RJ Doc and all my colleagues. Time hua chahta hai 59 past 12, jo ke Pakistan ka standard time hai. Is waqt ko aur miyari banane ke liye hamare saath maujood hain Asad bhai.
1: Kya baat hai, time hua jata hai 12 baj ke.
0: 59 past 12, which is the standard time of Pakistan. Ab time
1: honi mein sirf 1 minute baaki hai. है ना?
0: All right.
1: रोजा खुलने में एक मिनट बाकी है
0: जी, बिल्कुल
1: म्यारी वक्त के मुताबिक
0: जी.
1: गुड, अब वाइब्स हाई करो ना जरा थोड़ी सी.
0: वाइब आपने करने नहीं दिया, आपने पहले मुड़ाल गिरा दिया मेरे.
1: चलो करो करो, ऑल योर्स.
0: All right, जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में, वी आर डिस्कसिंग आवर फ्यूचर प्लान्स अबाउट पाकिस्तान, किस तरह चाइल्डहुड में हम पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे ऐसे मनाते रहे हैं. एंड वन पॉइंट जिसे मैं रेज करना चाहता था, आई डू स्टोरी टेलिंग डिफरेंट स्कूल्स में पिछले 2 से 3 साल से.
1: कोई स्टोरी नहीं सुनाएगा.
0: All right. 14 अगस्त से मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ डिफरेंट स्कूल्स में. एंड एक पॉइंट जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बहस करता हूँ एंड अभी भी माइट भी किसी से हो भी जाए यहाँ पे, so that is difference between patriotism and nationalism. On this 14 August,
1: नहीं करेंगे,
0: नहीं हम नहीं कर रहे, मैं सिर्फ एक पॉइंट दे रहा हूँ. On this 14 August, just keep in your mind के जो भी आपके दिन में आपकी patriotic vibes हैं, आपके जो patriotic emotions हैं, उन्हें कभी nationalism ना बनने दें. अपने मुल्क से प्यार जरूर करें, but wherever जहाँ पे criticism possible है, जहाँ पे room है improvement का, डू योर बेस्ट के आप अपना पॉइंट रेस करें, आप अपनी वॉइस रेस करें. एज मार्श सेज, जब लोग बोलते हैं तो वो चीज़ बेहतर होती है. एंड जब हम बोलेंगे सो जितनी भी खमियाँ कामियाँ जो हमें लगती हैं इस मुल्क में, वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगी. दिस इज ऑल माई पॉइंट. थैंक यू फॉर फाइनली हैविंग मी माइक.
1: थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच. ऑलराइट, मेरा ख्याल है वो
2: हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: All right, जी, वेलकम बैक. वक्त हो चुका है 1:03 एंड शाहिर थैंक यू वेरी मच. यू कैन लीव नाउ. आई वांट यू टू लीव. 5/2/26 के सेन है जी. आगे क्या बोलना होता है मैं भूल गया. उसे देना माइक. क्या बोलते हैं आगे?
1: क्या बोलना है सर?
0: आगे बोलते क्या हैं? मैं भूल गया. स्टार्ट कैसे करते हैं
1: जी? स्टार्ट इसी तरह ही किया जाएगा कि FM 101 से आपका मेजबान सिराज भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप इस वक्त FM

0: 101 पे स्पेशल ट्रांसमिशन सुन रहे हैं जिसका उन्वान है हम सब एक हैं।
1: बाबा साईं आप बचपन में कैसे मनाते रहे हो?
0: बचपन में उसी तरह जिस तरह मनाया जाता है बच्चे मनाते हैं, वही बाजे बजाना।
1: आपके बचपन में बाजा था?
0: हाँ बाजे थे, बिल्कुल बाजे थे, बड़े मॉडर्न बाजे होते थे, बजाते थे हम। लेकिन जैसे जैसे वक्त
1: टेक्नोलॉजी आ गई थी तब।
0: हाँ जी टेक्नोलॉजी तो आ गई थी, ये सही है।
1: तो जैसे सिराज आप कहाँ से हो पहले ये बताओ।
0: सर जी मैं बेसिकली हूँ डिवीज़न सखर सिंध से हूँ और उसका छोटा सा शहर है गंबट।
1: हाँ
0: मेरा ताल्लुक वहाँ से।
1: अच्छी जगह है वो।
0: जी जी बिल्कुल अच्छी।
1: आपके पास अच्छा सा हॉस्पिटल भी एक बना है।
0: जी सर,
1: बड़ा आजकल पाकिस्तान
0: मेडिकल साइंस
1: फेमस है। क्या है उधर की स्पेशलिटी? क्या
0: सर वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है और बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है, इसके साथ साथ दीगर काफी सहूलियात वहाँ पे दी जाती
1: है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। और वहाँ पे इलाज मुआलजा बहुत अच्छा किया जा रहा है पाकिस्तान के चंद एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, उसका नाम आ रहा है जी।
0: लिवर ट्रांसप्लांट के मेरे ख्याल से
1: आप मुझे ये बताओ कि आजादी से आप क्या परसीव करते हो, आप क्या करते हो, आपके इर्द गिर्द वाले लोग वहाँ पे क्या परसीव करते हैं?
0: सर हर इंसान का अपना जो है नजरिया होता है, जैसे मैंने पहले बताया बच्चे उनका होता है सिर्फ रोशा शुगल कह लो जिसे।
1: रोशा बोलते हो?
0: हाँ सिंधी में रोशा ही कह लेते हैं।
1: सिखाओ ना इस तरह की बात।
0: हाँ तो जैसे जैसे
1: रोशा और लोचा में क्या फर्क है?
0: रोशा होता है शुगल लगाना, लोचा होता है कोई मसला कर देना।
1: अच्छा,
0: तू मसला क्रिएट कर देना
1: है यार तू तो। अच्छा
0: तो वही कह रहा कि था मैं कि बचपन में जैसे छोटे थे तो बाजे बजाना, नाच गाना कर लेना, गाड़ियों के पीछे भागना, जो कि इंतहाई गलत है। और जैसे जैसे वक्त के साथ बड़ा हुआ और जैसे
1: गाड़ी के पीछे क्यों भागते हो
0: सर? बच्चे
1: हम तो 12 रबी लेवल पे भागते थे, चंदा दे जाओ चंदा दे जाओ। हम तो पैसे इकट्ठे करते थे।
0: नहीं हम पैसे
1: हमने गली से जानी है, हमने जाके ना वो बाहर
0: हम शुगर के पीछे
1: हमने वो इशारों पे खड़े हो जाना, वो पैसे इकट्ठे करने बाद जो जाके खा लेने।
0: अच्छा
1: हमने उन्हें ये कहना हमने सेलिब्रेशन कर दिया, गली से जानी है वो जाके खा लेना। आपने कभी इस तरह किया पैसे मांग के खा लिए?
0: नहीं इस तरह गलत काम है मैंने आज।
1: यार तू शरीफ आदमी, तेरा मेरा शो में कोई काम नहीं है। बट यार कम ऑन तुम बताओ मुझे इस तरह की कोई स्टोरी बना के सुनाओ अगर नहीं नहीं किया तो भी को। हाँ जी किया, किया ना?
2: हाँ हाँ हाँ जी हाँ जी मैंने किया ऐसी
1: हाँ जी अपना तारुफ करवाए।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर अब्बास है और
1: थोड़ा माइक को पास करो।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर अब्बास है और आप सुन रहे हैं एफएम 101। हम बैठे हैं आरजे डॉक्स के सामने और बात चल रही थी कि हमारे कुलीग जो है हमारे इंटर्नशिप के पार्टनर इन्होंने चंदा खाया है कि नहीं खाया। आरजे डॉक्स साहब ने तो बड़ा खाया है।
1: नहीं नहीं चंदे का लफ्ज ना इस्तेमाल करो, चंदा खाया है बंदा बान ये तो मेरे ते फतवा लवान लगा ये चंदा खांदा रहा।
2: बस यही बात चल रही थी कि ये शरीफ लोग हैं हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने चंदा है कभी नहीं खाया,
1: इन्होंने पैसे वो
2: कभी पैसे करप्शन नहीं की इन्होंने।
1: ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। तुम बताओ आजादी किस तरह सेलिब्रेट करते हो? तो
2: आजादी सो के गुजारते हैं जैसे ईद गुजारते हैं और अरसा हो गया सेलिब्रेट किए हुए।
1: इस दफा क्या प्लान है सो के गुजार?
2: इस दफा भी सोना ही है जैसे कोम सोई है वैसे ही बस।
1: अब बदाबान तुम्हें पता है जिस तरह की तुम बातें करते हो ना तेनू मैं ही अंदर करा दूंगा इस दफा तुमने स्पेशल 14 अगस्त पे सुबह फ्लैग सेरेमनी यहाँ पे होगी ना उसमें होना है, उसके बाद यहाँ पे अंदर जो कंपटीशन होंगे तुमने उस पर होना है। मुझे सारा दिन तुम रेडियो पाकिस्तान में चाहिए, ठीक है? इस दफा ये स्पेशल होना चाहिए रजा, मेक श्योर करना। हाँ इसे हम बताएंगे कौम जाग रही होती है ठीक है। और आप अगर अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाओ 14 अगस्त के हवाले से तो क्या लाना चाहोगे जिससे आप समझते हो कि लोगों को बेनिफिट पहुंचे?
2: मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, मेरे घर घर के जो आसपास के बच्चे थे ना मेरे मेरे नहीं शायद मोहल्ले वालों के
1: अच्छा
2: उनको मैं बुला के ना खुशखती सिखाता था। अच्छा, मैंने उनको क्लासेस देता था
1: ओके
2: ताकि उनकी जो राइटिंग है ना बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि हमारी एकेडमी वालों ने हमें ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने एक टीचर हायर किया था और उन्होंने फ्री क्लासेस दी थी हमें।
1: दैट्स गुड।
2: तो मैंने कहा जो मेरे पास आया उसको वापस क्यों ना दूं, मैं वापस मुआशरे को देना चाहिए। तो बहुत अच्छा मेरे पास रिस्पांस आया, बच्चे मेरे पास आते थे ایک تو ان کی رائٹنگ بڑی اچھی ہوگی, اوپر سے ان کا اخلاق بہت اچھا ہو گیا,
1: خوش ہو گئے وہ. تم سے اخلاق سیکھ لیا انہوں نے؟
2: جی بالکل,
1: پکی بات ہے.
2: آپ
1: چھا گئے ہو تم ویسے,
2: بہت شکریہ.
1: تمہارے ساتھ میں اکیلے بیٹھ کے شو کروں,
2: بہت بہت شکریہ.
1: ہٹ کے تھوڑا سا
2: چلو
1: ڈفرینٹ, ابھی مائک سے ہٹ جاؤ, ابھی تم خطرناک ہو. Alright, who's next? Yes. جی جی کال لے لیں, چلو بات کریں کالر سے.
3: السلام علیکم.
1: السلام علیکم. خوش ہونا ہے, کوئی ہم وہ اداسی نہیں منا رہے, ہم خوشی منا رہے. آپ کے بعد میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. رونا مجھے بھی بڑا آتا ہے, میں رات کو شو میں جس دن رونا ہوتا ہے میں چنگا رو پٹ لینا. آج ہم ہنس رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے. دوبارہ کرتے ہیں.
3: السلام علیکم.
1: ہیلو. السلام علیکم. نو, اپنا تعارف کروائیں.
3: میرا نام لاطفہ ہے اور آپ سن رہے ہیں FM 101 ریڈیو پاکستان. اس وقت ہم انٹرنس جو ہیں وہ RJ ڈاگس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور جشن آزادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سو اور جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ جشن
1: کالر ہے آپ کے ساتھ. ہیلو.
4: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
4: شکر الحمدللہ. آپ سنائیں, ابھی کیا حال ہے؟
1: تھوڑا اونچا بولیں.
4: سر لاہور شاد باغ سے محمد نوید بات کر رہا ہوں.
3: جی جی, آپ کیسے ہیں؟
4: جی شکر الحمدللہ. آپ سنائیں. آپ سبھی سے پہلے سب میرے بہنوں بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
4: اور اسد بھائی آپ سنائیں, سر کیا حال ہے آپ کا؟
1: الحمدللہ جی مہربانی.
4: تو سر میں تو یہ میرے جتنے بھی بہن بھائی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پیغام میں یہی دینا چاہوں گا ان کو کہ جب تک آپ کی اور اس ملک کی قدر کریں گے تو اللہ پاک ان کو بہت ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ.
3: آمین آمین, شکریہ آپ کا.
1: اور اس کے علاوہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
4: سر میں تو بس آپ کی بات سن کے تو میں تقریباً پچھلے گھنٹے سے کال کر رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ تو ہمیں رات کو سننی چاہیے تھی آواز, لیکن ہمیں صبح صبح سننی پڑ رہی ہے.
5: جی تو سر بتائیے گا آپ 14 اگست کس طرح مناتے ہیں اور بچپن کی آپ کی کون کون سی یادیں جڑی ہوئی ہیں 14 اگست کے ساتھ؟
4: آپ بھی وہی بس جو جھنڈیاں لگانی, پہلے ضد کر کے پورا پورا مہینہ پیسے اکٹھے کر کے لے کے آنی, پھر اس کو پورے گھر میں لگانا, سبھی بہن بھائیوں کو اکٹھے کر کے خود.
5: ارے واہ واہ, تو کوئی لڑائی ہوتی تھی آپ لوگوں کی آپس میں جھنڈیوں پہ؟
4: لڑائی وہی ہوتی تھی کہ وہ اس نے کہنا تھا کہ پہلے میں نے لگانی ہے اپنی والی اور اس نے کہنا تھا پہلے میری لگانی ہے, وہ اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا.
5: جی تو سر 14 اگست کے حوالے سے یہاں پہ سارے انٹرنیز موجود ہیں, تو آپ جشن آزادی اور آزادی کا جو مہینہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
4: آپ ہی میں تو سب سننے والوں کو جہاں جہاں تک میری اور آپ کی آواز جا رہی ہے میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ سچے دل سے اور من لگا کے اپنے ملک کے لیے محنت کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو ملک کا فلیگ ہے یہ دنیا میں سب سے اوپر نظر آئے گا آپ کو.
5: جی سر بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی اللہ حافظ.
4: جی اوکے, اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ جی. اوکے, وقت ہو چکا ہے 1:12 اور 5 اگست 2026 ہے اور ہم ایک ہیں کہ عنوان سے ہماری چل رہی ہے آزادی ٹرانسمیشن اینڈ وی ہیو آور نیکسٹ انٹرن
5: ہمنا صدیقی.
1: زور سے بولیں
5: ہمنا صدیقی.
1: اوکے ہمنا, آپ نے کیا سیکھا؟
5: کہاں سے, زندگی سے یا اس انٹرنشپ سے؟
1: ہاں دونوں سے.
5: زندگی سے سر میں نے ایک بات سیکھی ہے, ایک ایگزامپل کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ بچپن میں جب ہمیں کلاس روم میں کوئی سزا ملتی تھی, ٹیچر کھڑا کر دیتی تھی اور ہم باتیں کرتے تھے اور ہنستے تھے اس پنشمنٹ کو انجوائے کرتے تھے, تو ٹیچر میک شور کرتی تھی کہ اس کو کوئی ایسی پنشمنٹ دی جائے جس کو یہ انجوائے نہ کرے.
1: اچھا,
5: کیونکہ پنشمنٹ از ناٹ سپوز ٹو بی انجوائیڈ.
1: ہاں بالکل ایسی ہے.
5: تو اگر یہ دیکھا جائے تو زندگی اور دنیا یہ بھی ایک سزا ہی ہے, تو اگر ہم آتے ہیں اور دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم جی انجوائے کریں اس کو تو بس یہ ہماری غلط فہمی ہے. اور انٹرنشپ سے میں نے یہ سیکھا کہ سر نے سارے ٹرینرز نے سکھانے کی بہت کوشش کی کہ کیا بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے.
1: ہاں नहीं, हमना हमारी और हमना के अलावा हमारे कुछ ऐसे इंटर्न्स हैं जो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें सीख के आए थे और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लर्न किया था। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस सारे प्रोसेस से गुजरना, चीज़ें कुछ आप लोगों से हमने सीखी और आप लोगों ने भी डेफिनेटली सीखी होंगी। अभी हम बात करें 14 अगस्त के हवाले से, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप?
5: सर, पैगाम देने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी।
1: हाँ हाँ,
5: झंडियाँ लगाने की बात हो रही थी, मुझे वो याद आ गई थी बचपन की बात। ये मेरे माथे पे एक चोट का निशान है जो मुझसे लोग पूछते हैं कि ये कट आपने खुद लगाया हुआ
1: है? बड़ा स्टाइलिश है।
5: स्टाइलिश सा। तो ये बहुत 3-4 साल की थी मैं, और घर में सब झंडियाँ लगा रहे थे, अम्मी अब्बू और हम सब बहन भाई मिलके। अच्छा। और मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, वैसे अब लगता नहीं है कि कोई टाइम ऐसा भी होगा कि मुझे बोलना नहीं आता होगा।
1: अब आप ही सिर्फ बोलती हैं जब बोलती हैं।
5: तो मैं तोतली जबान में जिद कर रही हूँ कि मुझे भी झंडा दो, भाई ने झंडा छत पे लगाया, मुझे भी झंडा चाहिए। तो अम्मा ने झाड़ू के एक तिनके पे आटे से झंडी लगा दी और मेरा झंडा बन गया। मैं तो खुश, मैं झंडा पाकिस्तान करती करती पूरे घर में फिर रही हूँ। और मेरा पाँव फिसला और मैं टकरा गई जाके कुर्सी, लोहे की कुर्सी से।
1: अच्छा।
5: और लोहे की कुर्सी से जो है वो मुझे चोट लग गई और मेरे माथे पे ये जख्म बन गया। और ये पिछले 17-18 साल से ये जख्म मुझे रोज़ याद, हर 14 अगस्त पे याद आता है और मैं याद करती हूँ कि अच्छा, ये वो मेरा जज्बा था जिसने मुझे ये चोट दी है।
1: वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी फिर उस जज्बे में कमी तो नहीं आई?
5: नहीं नहीं, जज्बे में कमी नहीं आई। पता नहीं, मतलब इस हवाले से मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ। ईद हो, कोई इवेंट हो, नेशनल इवेंट हो, मैं बहुत ज़्यादा लाइवली होती हूँ। मेरे आसपास कोई सेलिब्रेट करने वाला ना भी हो तो मैं खुद ही बगैर वजह के खुश हो जाती हूँ। तो मैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती हूँ।
1: वेरी गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, ये हमना थी हमारे साथ और वो हैव अ कॉलर।
6: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
7: मैं ठीक हूं। बशीर अहमद चुम्मी अमर सिद्धू
6: जी। हेलो,
7: बशीर अहमद ने मुकाला चुम्मी अमर सिद्धू गल कर रहा।
1: हां जी, हां सही आई जा रहे था डिवास सुन के कुड़ी ने।
5: जी सर, बताइएगा चुंगी अमर सिद्धू में मौसम कैसा है आज? अच्छा, तो कहीं कोई मौसम बारिश वगैरह का है, कोई नजर आता है? हो रहा हूं।
7: बारिश बुरिश नहीं है,
6: आज हम इंटेंस बैठे हैं आज डॉग्स के साथ। रमजान
1: ट्रांसमिशन चल रही है आज डॉग्स के साथ, और इस वक्त हमारे इंटर्न सारे रोजा रख के आए हैं। क्या आज आप अफतारी भिजवाएंगे हमें?
7: रोजा रख के आए हैं
6: 14 अगस्त के हवाले से। हमारी
1: नफली रोजे रखे ने सारे आने।
7: नकली रोजे,
1: उन्होंने कहा ताड़ी कॉल आनी है तो इसे बहाने रोजे रख लिये, कुछ मंगा ही लांगे।
6: सर, आप 14 अगस्त के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहेंगे?
7: हाँ, बचपन झंडियां लगाते रहे हैं ते तो काफी उम्र
1: झंडे लगे होंगे,
7: बच्चे झंडियां लेके आए थे।
1: मेनू सर एक गल दसना, एक गल होंदी है हुणे चल रही है ना जी, ए झंडियां लांदे सी हुण मुहावरा एक चलदा ओ तेरे ते झंडे गड़े होए ने, ए दोनों गल्लां च की फर्क है?
7: हां जी,
1: आवाज नहीं आई?
7: हाँ जी, हाँ दसा।
1: कोई बात नहीं सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
7: ठीक है,
1: थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।

0: हाँ जी, हेलो हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम। आप सुन रहे हैं FM 101, मैं हूं अब्दुलरहमान नासिर। क्या कहना चाहेंगे
2: जी? क्या पहले नाम बता रहे हैं आपको?
1: जी जी प्लीज नाम बताइएगा और अपना शहर भी।
2: जी मोहम्मद शहजाद शाद बाग लाहौर से बात कर रहा हूँ जी।
1: कैसे हैं आप? और आप बताइएगा कि आज हमारी जो ट्रांसमिशन है ये 14 अगस्त के हवाले से की जा रही है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सामईन को?
2: पैगाम तो यही है जी, हमारा हम उस वक्त भी एक थे तो अब भी एक है जी, जब आजादी ली है ना उस वक्त भी एक।
1: बिल्कुल ऐसे
2: अब भी इंशाल्लाह एक एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं, और इसी का नाम मोहब्बत है, इसका नाम पाकिस्तान है, जो एक दूसरे के काम आते हैं।
1: बिल्कुल, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और जब भी जी जी
2: डॉक्टर साहब
0: जी जी अच्छा है सर,
2: ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰ।
0: ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਵਾਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ।
2: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰ।
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਛਾ ਗਏ ਆਪ, ਛਾ ਗਏ।
2: ਓ ਠੀਕ ਠਾਕ
0: ਸਭ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਕਾਲ ਜੀ।
2: ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜੀ,
0: ਅੱਲਾ ਫੈਸ, ਅੱਲਾ ਫੈਸ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਹਾਂ ਜੀ ਰਹਿਮਾਨ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ?
1: सर अल्हम्दुलिल्लाह,
0: एवरीथिंग इज़ गुड। हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस
1: सो फार? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी हर किस्म का वोकैबुलरी हो गई और कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत अच्छा एक्सपोजर हासिल हुआ आपके साथ।
0: हम ना आप बताओ, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस?
3: अच्छा रहा।
0: कितनी क्लासेस आपने स्किप की हैं?
3: प्रीवियस वीक की थी एग्जाम की वजह से।
0: बाकी सारी ली हैं?
3: जी।
0: तुम क्लास का वो बच्चा हो जो मेरी तरह टीचर को कभी याद ही नहीं हुआ। मैं तब तो वो भी मेरी क्लास से है। जी सर मैं भी हूँ।
3: सर मैं किसी टीचर को भी नहीं याद रहता
0: है ना, खामोश चुप, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती। पेपर देती हूँ
3: जी
0: के, वो भी ऐसे ही बस नहीं गए। क्या सीखा है फिर? क्या सीखा है? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਨੀਵੇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 1:20 ਔਰ ਆਜ ਹੈ ਜੀ 5 August 2026 ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਨਗਮਾ ਲਗਾਊਂਗਾ
1: ਜੀ,
0: ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਜੇ ਆਏਂਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫਰਹਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈਂ, ਫਰਹਾਨ ਖਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਵਾਹਿਦ ਆਰ ਜੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਆ ਥਾ, और इस आरजे के पेज पे वाहिद पॉडकास्ट है जिसने ये इतने ज़्यादा व्यूज़ लिए। फिर इसने कहा दोबारा इस बंदे का पॉडकास्ट ही नहीं करना, मैं गला नहीं छड़ांगा, आई वुड लीव इट। एनीवेज जी फरहान आए हैं, फरहान अब आपको ज्वाइन करते हैं, बाकी इंटर्न्स के साथ गुफ्तगू फरहान अब आपकी करवाएंगे और ये सिलसिला कल भी चलेगा। चेक अराउंड होंगे एनीवेयर एंड यू कैन कॉल 0422111001। दिस इज आरजे डॉक्स, कल मिलते हैं आपसे 12 से 1 दोबारा। हम एक हैं, जश्न आजादी सेलिब्रेशन 2026 को लगता है। हेलो, एक बात रह गई यहाँ पे, मुझे किसी ने सवाल किया था कि आपसे कभी सिचुएशन ऑन एयर कोई आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, जो यहाँ आपसे कोई ऐसी बात हो जाए जो कि वैलिड ना हो या एतराज़ की वजह बन जाए, नुक्ता एतराज़ बने, तो किस तरह से हैंडल करते हैं? असी तो माफ़ी मांग लेने हैं, पॉइंट गलती हो गई है साढ़े को, माफ़ कर दो। और इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होती लंबा ड्रैग करने की। दिस इज़ द सिंपल वे, जहाँ आपको पता चले आपकी गलती है वहाँ पे आप कहें कि वो क्या है, ये बाई मिस्टेक हुआ या स्लिप ऑफ टंग हुआ या नहीं मेरे इल्म में था। और सम टाइम ये होता है कि व्हेन यू हैव अ कॉलर, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाद में भी जो प्रोग्राम में आए, जो आज़ादी है जश्न आज़ादी उसके हवाले से बात करें और पाकिस्तान के हवाले से बात किया करें हमेशा। लव योर कंट्री एंड लव योर सेल्फ।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم لاہور, اینڈ السلام علیکم ایوری ون ان دا اسٹوڈیو. ویل جناب, تمام سننے والوں کو, تمام سہنے والوں کو, ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. So I'm very excited today because I have such a beautiful people around me, such a talented people, اور میری ایکسائٹمنٹ کا لیول میری آواز سے آپ محسوس کر سکتے ہیں. سو جناب, ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اٹس ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن ود بیوٹیفل وائسز آف پاکستان, دا فیوچر آف پاکستان, پاکستان کا روشن مستقبل میرے سامنے ہے. سو جناب, یہ جو مہینہ ہے, اس مہینے کی تھوڑی ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اور جیسے ہی اگست کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب ایز اے براڈ کاسٹر جتنے بھی ہم لوگ ہیں, ہم لوگ بڑے چارج ہو جاتے ہیں. آف کورس پورا پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر ایک وطن کی جو محبت ہے وہ بڑھ جاتی ہے, وطن کے حوالے سے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, نہ صرف ہمارے ریڈیو اسٹیشن پہ بلکہ پورے پاکستان میں جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. سو آپ سب جتنے بھی اس وقت یہاں پہ میرے دوست بیٹھے ہیں, انٹرنیز بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کا ڈیفینیٹلی بڑا زبردست ایکسپیرئنس جا رہا ہوگا. میں نے آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا ہے, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ ٹو سی آل آف یو کہ کتنی خوبصورت انداز سے آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز ریڈیو پاکستان نے جو آرگنائز کی ہے, اور جس طرح آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یہ سب سے خوشی کی بات ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن بڑی زبردست ہے. اور میرے لیے سب سے ایکسائٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ پہلا اوپننگ سیرمنی تھی آپ لوگوں کی انٹرنشپ کی, میں جب اس ایونٹ کو ہوسٹ کر رہا تھا اور میں جب آپ سب کو دیکھ رہا تھا, تو میرے لیے سب سے مزے کی بات آج اس انٹرنشپ پروگرام میں آ کے دیکھنے کی یہ ہے کہ جتنے لوگ پہلے دن تھے اتنے ہی لوگ آج بھی موجود ہیں. تو میں چاہوں گا آپ سب لوگ اپنے لیے تالیاں بجائیں, بیکاز آپ لوگ اتنے ماشاء اللہ ایکسائٹیڈ ہیں اور اتنا سیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ لوگ کے اندر اتنا لرننگ کیپیسٹی ہے, اور بولنے کا کانفیڈینس کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے. سو آئی ایم سو گلیڈ ٹو سی آل آف یو. میں تو براڈ کاسٹر ہوں, میں تو بولتا جاؤں گا اور آپ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ کیا یار بولی جا رہا ہے, بولی جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے ایک براڈ کاسٹر کا, جب اس کے پاس مائکروفون آتا ہے نا, اس کے سامنے کوئی بھی ہو, بس اس کا دل کرتا ہے وہی بولتا جائے. تو میں چاہوں گا کہ میں اکیلا نہ بولوں, آپ سب بولیں میرے ساتھ, بات کریں گے, ریڈی ہیں جی؟ اچھا جی, سب سے پہلی جو آواز ہے اس وقت میرے سامنے, میں چاہوں گا آپ نے جب آنا ہے نا تو آپ لوگوں نے اپنے انٹروڈکشن ریڈیو انٹروڈکشن کے ساتھ آنا ہے, جو آپ کا ریڈیو انٹروڈکشن آپ سب نے بنایا ہوگا, آئی ایم شیور جو بھی آپ نے بنایا. تو اگلی آواز میرے سامنے ہے اور اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے اور ان سے ہم بات کریں گے. لیٹس سی ہو از ود اس.
1: اوکے جی, السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان, اور میں ہوں آپ کی کو ہوسٹ ریمونا شیما, کیونکہ ابھی آپ نے فرحان خان صاحب کی آواز سنی ہے, اور ان کی آواز آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں, ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, اور آج کچھ منفرد آوازیں آپ لوگ سن رہے ہیں, بہت سارے انٹرنز ہم یہاں پر موجود ہیں. سو سر, آپ کوئی سوال پوچھیں گے یا میں آپ سے سوال پوچھوں؟
0: نہیں نہیں, آپ مجھ سے نہ پوچھیے گا, میں آپ سے پوچھوں.
1: اوکے اوکے,
0: کیونکہ میں خود سوال پوچھنے والا ہوں, سوال پوچھنے والے سے سوال پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
1: سر
0: اچھا جی, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟
1: سر ایکسپیرینس انٹرنشپ کا بہت اچھا رہا, اور مجھے ایک دفعہ زندگی میں بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر آپ نے کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک سرٹیفیکیشن, تو وہ ایک ہی ادارہ ہے پورے پاکستان میں, وہ ہے ریڈیو پاکستان. اور آج جب ریڈیو پاکستان میں یہ انٹرنشپ بالکل اختتامی مراحل میں ہے, تو میں تھوڑی سینٹی بھی ہو رہی ہوں, اور مجھے
0: رونا نہ شروع کر دینا,
1: میں بہت جلدی ویسے رونا شروع ہو جاتی ہوں, مجھے لگ رہا ہے آخری دن پہ میں رو بھی پڑوں گی, لیکن بہت اچھا
0: ان کی ویڈیو لازمی بنائے گا, جب یہ روئے نا تو پتا ہونا چاہیے,
1: وائرل ہو جائے گی سر.
0: ہاں نا, تو اچھا نا, آج کل تو لوگ وائرل ہونا چاہتے ہیں, ہے نا؟ لیکن اس وائرل کلچر نے, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں یہاں پہ چونکہ لینا چاہوں گا, اس بات کو ضرور کرنا چاہوں گا, اس وائرل کلچر نے جہاں پہ کانٹینٹ کی دھجیاں بکھیری ہیں نا, آپ لوگ چونکہ ریڈیو پاکستان کے تربیت یافتہ ہیں, اب جب باہر نکلے گے تو ضرور سوچیے گا, دیکھیے گا کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں, کیا یہ ویڈیو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, یا اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں, جو کانٹینٹ کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں, کچھ بھی کانٹینٹ, چاہے آپ ٹک ٹاک پہ بنا رہے ہیں, آپ فیس بک پہ بنا رہے ہیں, تو یہ چیز آپ نے بہت اس کا خیال رکھنا ہے,
1: پروڈکٹیو کانٹینٹ,
0: پروڈکٹیو کانٹینٹ, یعنی کانٹینٹ وہ ہو جس سے आपने ये नहीं सोचना कि आपका कंटेंट वायरल हो रहा है या नहीं हो रहा, लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे, आपने सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज़, हर बंदे की ज़मीर की आवाज़ होती है ना, तो उसको सेटिस्फाइड करना है। सो मैमूना, आपने बड़ा ज़बरदस्त अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताएं कुछ जश्न आज़ादी के हवाले से, कोई आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या एक्साइटमेंट होती हैं?
1: सर, जश्न आज़ादी के हवाले से, मैं जब बहुत छोटी थी तब से लेकर आज तक,
0: आप तो अभी भी छोटी हैं,
1: थैंक यू सो मच, मैं आज तक, मतलब जैसे ही ये महीना शुरू होता है अगस्त का, तो मेरी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मतलब अच्छा। जैसे छोटे होते थे ना, तब तो ये होता था अच्छा झंडियां लगानी है, वो तब एक कल्चर था कि वो हमारी एक आदत थी कि हम 13 अगस्त को शुरू हो जाते थे। और मैं हैरान होती हूँ कि अगस्त के महीने में तब भी गर्मियाँ होती थी, लेकिन जब हम बहुत छोटे थे तो झंडियाँ जब लगा रहे होते थे, हम तो खैर बहुत ही छोटे थे, लेकिन जो हमसे बड़े कजन्स थे वो लगा रहे होते थे, हम उन्हें पकड़ा रहे होते थे बाकायदा ना, वो ट्रेज पे रख रख के, तो हम इतनी गर्मी में कैसे लगाते थे ये मुझे समझ में नहीं आता अब। मतलब अब अगर मैं सोचूं कि मतलब हम बच्चे थे, क्या हमें गर्मी नहीं लगती थी? खैर, वो हमारी तैयारियां वैसी होती थी। और आजकल की तैयारियां ये होती हैं कि ड्रेसिंग के हवाले से कि अच्छा वाइट एंड ग्रीन होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, तो वो पहले से ग्रीन दुपट्टा है, वाइट सूट है, शलवार कमीज़ है, तो वो हम पहले से लेना शुरू हो जाते हैं। और फिर साथ में हमारी कुछ खवातीन की तो तैयारियाँ होती है ना, हम ग्रीन और वाइट चूड़ियाँ ले सकते हैं, कुछ वो हेयर बैंड्स वगैरह। तो अब मेरा आपसे एक सवाल की इजाज़त है, मर्दों की तैयारियाँ क्या होती है?
0: अच्छा, मेरी तैयारी तो ये होती है कि मेरे इवेंट्स चल रहे होते हैं और मेरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में, अगर लाहौर में इवेंट्स हैं तो लाहौर से बाहर इवेंट्स चल रहे होते हैं
1: और आप होस्ट कर रहे हो,
0: और मैं होस्ट कर रहा हूँ इवेंट्स को, और मेरी एक्साइटमेंट ये होती है कि मेरे साथ सारी ऑडियंस होती है, सब लोग होते हैं। मैं लास्ट ईयर मैंने इवेंट होस्ट किया था, पाकिस्तान से बाहर था मैं, एमरेट्स लव पाकिस्तान की तरफ से था एक इवेंट। सो उसमें जो पाकिस्तानी थे उनकी जो एक्साइटमेंट थी, जो पाकिस्तान से मोहब्बत थी, वो आपको ना मुल्क से जब आप बाहर होते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है कि यार लोग कितनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों के क्या हालात होते हैं। सो वो मेरा लास्ट ईयर बड़ा ज़बरदस्त, इस ईयर भी है, तो मेरे तो ये होते हैं, मेरे तो इवेंट्स चल रहे होते हैं और मैं हर वक्त वो एक्साइटमेंट में होता हूँ, हर वक्त
1: जज्बा हुबुल वतनी,
0: जज्बा हुबुल वतनी भी होता है, जज्बा जो होता है ना लोगों को देख के जज्बा आता है ना। आप लोग, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग, आपको मौका मिलेगा स्टेज होस्टिंग का, जब आप लोग स्टेज पे आएंगे और जब आप ऑडियंस के साथ आप गुफ्तगू करेंगे, और जब ऐसी एक्साइटेड इवेंट्स हों, खासतौर पर जश्न आज़ादी का जो इवेंट होता है, इसमें तो लेवल ही बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज आपके अंदर वतन होता है, emotions, वतन की मोहब्बत होती है, इमोशंस होते हैं आप, और फिर क्राउड की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो आपको बड़ा ग्रैब करती है। मैं हमेशा कहता हूँ जो इवेंट है ना वो क्राउड से होता है, क्राउड का, जिस तरह आप लोग हैं ना सारे बैठे हैं, कुछ लोग बड़े ईजी बैठे हैं, कोई बड़े मुझे एक्टिव होके देख रहे हैं, कुछ लोग जो है ना कि आ रहे हैं कि बोली जा रहे हैं, चुप ही नहीं कर रहे हैं, यू नो हर बंदे की एक एक चल रही होती है। बट ये जब आप स्टेज पे होते हैं, स्टेज पे फिर आपका माइक होता है और फिर आपकी ऑडियंस होती है, आपने उसके साथ खेलना है, यही हमारे इस माइक्रोफोन की भी बात है। थैंक यू सो मच मैमूना, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है जी, और आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और ओपनिंग करनी है।
2: अस्सलामु अलैकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर के स्टूडियो से आज़ादी ट्रांसमिशन हम एक हैं के साथ, मैं हूँ वासफा मुकद्दस, और आज हम बैठे हैं सर फरहान के साथ, आज जश्न आज़ादी के हवाले से जो तैयारियां हैं उनके हवाले से बातचीत जारी है। सर फरहान को मैं पहले सुन चुकी हूँ, लेकिन आज उनके साथ माइक शेयर करने का ये पहला मौका है कि जब हम उनके साथ बैठ कर गुफ्तगू कर रहे हैं और अपनी जो तैयारियां हैं उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। सर की जो मेरे एक ट्रांसमिशन मुकम्मल, वैसे क्लिप्स मैं छोटे छोटे देखती रहती थी, लेकिन जो एक मैंने पूरी ट्रांसमिशन सुनी थी वो हमारे एक बहुत अच्छे शायर हैं, चूंकि मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, खालिद नदीम शानी साहब।
0: अरे वाह खालिद भाई, जी जी, आप शायरी भी करते हैं? खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम
2: ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे।
0: आप दोबारा सुनाएं इसको
2: जी। ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे।
0: थोड़ा सा फ्लो में बोलना आपने। ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे।
2: तो हम चूँकि यूनिवर्सिटी,
0: हम ना मजनू हैं ना फरहाद के कुछ लगते हैं,
2: बिल्कुल
0: हम किसी दश तमाशे में नहीं आएंगे। इसका जो सबसे मज़े का जो इस पूरी इनके जो शायरी ने इसमें वो है कि जिस तरह आपने बीमार से रुख्सत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुख्सत ली है, साफ लगता है जिनाजे में नहीं आएंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी दश तमाशे में नहीं आएंगे। और जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे।
2: बिल्कुल, तो जब हम अक्सर अच्छा। यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं तो सर के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि वो मजलिस में होते हैं, तो पीएचडी स्टूडेंट्स होने की वजह से हमारे वहाँ आना जाना लगा रहता है।
0: अच्छा।
2: तो हम अक्सर किसी को इंट्रोडक्शन कराना होता, हम कहते हैं खालिद नदीम शानी साहब को जानते हैं, वो लिफाफों वाले
0: अच्छा।
2: तो अक्सर हम उनके बारे में, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है उनके साथ एक फ्रैंकनेस भी है।
0: ठीक, जबरदस्त।
2: लाइब्रेरी जाना,
0: तो शायरी, शेर व शायरी से आपको शगफ
2: नहीं
0: है?
2: शायरी से तो मुझे शगफ नहीं है, मैं पीएचडी की पीएचडी स्कॉलर हूँ।
0: अच्छा,
2: लिटरेचर
0: वेरी नाइस
2: मेरा सब्जेक्ट है, तो इस हवाले से
0: तो आपको पढ़ना पड़ा उसमें शायरी।
2: वैसे भी मुशायरों में जाना और बैठना, तो ये सारी सरगर्मियाँ हमारी रहती हैं।
0: अच्छा, जबरदस्त।
2: पॉडकास्ट मैंने आपका पूरा सुना, बहुत अच्छा जो है वो लगा कि हम, मुझे ये लगता था रेडियो पाकिस्तान में ये हमारी फील्ड के लोग बहुत कम आते हैं, या मुझे लगता था कि उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से बहुत अटैचमेंट है ना दोनों चीज़ों की, रेडियो पाकिस्तान की और उर्दू ज़बान और अदब, शुरू से ही। तो मैं कहती थी कि उर्दू अदब के हवाले से तो कभी मैंने कोई प्रोग्राम सुना ही नहीं, हालांकि पंजाबी के एक दो प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे चलते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन आपने उनको बुलाया।
0: शानी भाई से पूछेगा उनको कैसा लगा था प्रोग्राम।
2: इंशाल्लाह जरूर आप बुलाकर।
0: वैसे शानी भाई से बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस गुजरा, और उन्होंने भी, वो भी कहते हैं कि यार मैं बड़ा डिफरेंट किस्म का एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि नॉर्मली रवायती गुफ्तगु चल रही होती है ना इंटरव्यूज़ में। इंटरव्यूज़ भी आप सब, आई एम श्योर इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप इंटरव्यूज़ भी करेंगे, और हर फील्ड के बंदे से करेंगे, क्योंकि आपका शायरी से ताल्लुक है, सिर्फ शायरी तक आपने मुख्तस नहीं रहना अगर ब्रॉडकास्टर बनना है। तो जिस तरह अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था आज डॉक्स का, सो डैट वॉज टोटली डिफरेंट इंटरव्यू, वो उसके अंदर जो हमारी गुफ्तगू थी वो बिल्कुल हट के थी, हर मौजूद जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट। तो यू मस्ट सी दैट, इंशाल्लाह जल्द वो हमारे ऑफिशियल पेज पे भी आएगा, वो भी आप देखिएगा। इसके अलावा लेकिन ये इंटरव्यूज़ में ये है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों से, दोस्तों से। जश्न आज़ादी कैसी गुजारती है आपको, क्या एक्साइटमेंट होती है?
2: आज़ादी बचपन का तो सिर्फ मुझे एक ही वाकया याद है, बींग एन इंट्रोवर्ट मैं चीज़ों में घुलना मिलना और उस तरह से चीज़ों का सेलिब्रेट नहीं कर पाती, लेकिन आजकल मेरा एक मामूल, मतलब पिछले 2-3 सालों से बना हुआ है कि एक केक बेक करके जश्न आज़ादी के हवाले
0: अच्छा।
2: से मोहल्ले के सारे बच्चों को इकट्ठा करके, तो हम वो केक काटते हैं
0: बच्चे। चलो बच्चों आप लोगों ने सुन लिया, केक मिलेगा आप सबको जश्न आज़ादी के करीब करीब
2: मोहल्ले के बच्चों को स्कूल के बच्चों को।
0: ठीक है
2: बिल्कुल। अब फिर वो बच्चे छोटे छोटे अपने नग में वो कुछ तैयार करते हैं, क्योंकि अब तो मामूल बन चुका है ना, तो बच्चे अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं इसमें एक्टिविटी। मेरे अब्बा खास तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं।
0: अच्छा।
2: फिर वो अपनी जेब से उन बच्चों को इनाम भी देते
0: जबदस,
2: हैं
0: जबदस।
2: तो ये आज पिछले 2-3 साल से तो ये
0: बहुत अच्छी एक्टिविटी।
2: उसके हवाले, उसके पीछे थोड़ा सा जाएं तो मुझे एक अपनी शायद 8-10 साल की थी मैं, एक ही मुझे वाकया याद है कि अभी हमारा घर नया नया बना था, तो पेंट वगैरह सब कुछ नया था, अगस्त का महीना आया, तो मेरे अब्बा चूँकि फोर्ट से रिटायर्ड हैं तो उनका उस तरह से भी हमारा एक ताल्लुक है, तो अब हमने ज़िद की कि हमें तो भाई झंडियाँ चाहिए। वो झंडियाँ लेके आए, लेकिन वो थी धागे के साथ, कि हम उसको धागे के साथ लटकाएँगे और उसके साथ जो है वो घर को सजाएंगे, लेकिन बाबा जो है वो हमें झंडियाँ दे के बाहर चले गए खुद, तो हम से पीछे से बिल्कुल वो सब्र की जो कमी की वजह से हमने अपनी दादी से पूछा कि ये कैसे लगाएंगे, तो उनको भी आइडिया नहीं था कि ये धागे के साथ बंधी हुई हैं तो इनको हम लटकाएंगे।
0: अच्छा।
2: तो आमतौर पे तो आटे से लगाते हैं तो आटे से लगा लो, तो मैं और मेरी बहन वो कुर्सियाँ वगैरह रख के, दरवाजे ऊँचे थे उस पर हमने लगा दी। रात को बाबा वापिस आए तो उनको बहुत गुस्सा आया कि ये क्या भाई, अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए पेंट हुए और आप लोगों ने आटा वगैरह लगा के सारा कुछ ख़राब किया। तो उस वक्त उनको इतना शदीद गुस्सा आया, कहते किधर है सारी झंडियाँ लेके आओ, मैं इनको जला दूंगा। तो उस वक्त मेरी दादी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, गो कि वो एक पढ़ी लिखी खातून तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुल्क जिसको हासिल करने के लिए लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, खानदान तबाह हुए, उसका ये परचम है और आप इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं इसको जला दूँ।
0: अच्छा।
2: तो वो उस वक्त अब्बा ऑब्वियसली उनको खुद भी हिट किया, तो उन्होंने फिर वो एकदम से पुरसकून हुए,
0: बैक फुट पर चले गए, उनको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने बड़ी बात कह दी है। चलें जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। एक और दोस्त मेरे बिल्कुल सामने हैं और मैं चाहूँगा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है जैसे रेडियो का आपने तैयार किया है।
3: जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन से। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोहम्मद इस्लाम और आप सुन रहे हैं एफएम 101 लाहौर रेडियो के स्टेशन से इस वक्त आज़ादी की ट्रांसमिशन। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त आरजे फरहान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
3: सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप
0: थोड़ा सा माइक नीचे कीजिए, थोड़ा सा। हाँ आप ठीक हैं? बिल्कुल। कैसा जा रहा आपका इंटर्नशिप?
3: सर थ्रू आउट जो हमारी इंटर्नशिप थी वो बहुत एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, एक ज़बरदस्त शानदार तजुर्बा था, जिसमें हमने कम्युनिकेशन से लेके किधर बोलना है, कहाँ बोलना है और किस तरह बोलना है, किस लहजे में बोलना है, ये सारा कुछ सीखा। आर्जेस के साथ हमारी कम्युनिकेशन हुई, उनसे जो है वो हमने अपना जितना भी कम्युनिकेशन का तरीका था वो सारा से डिवेल्प किया, बिल्ड किया। और इसके साथ साथ जो है वो हम आगे जाके इंडस्ट्री में या फील्ड में जाने के लिए अभी पुरजोश हैं कि हमने जिस तरह से सीखा है तरीका उनसे, उसको जो है वो फील्ड में जाके अप्लाई
0: करें। जी बेस्ट ऑफ लक, आप आगे जाएं, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे। जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे, क्या एक्साइटमेंट होती है, क्या तैयारियाँ होती हैं?
3: जी सर, ये मेरे लिए या जो हमारा गाँव है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक गाँव से है, तो बड़ी हमारे यहाँ बड़ी एक्साइटमेंट होती है। हम जब बचपन में थे, बहुत दूर की बात नहीं है, अभी पिछले 5-6 या 10 सालों की बात होगी, तो स्कूल में हुआ करते थे, आपको पता है कि 14 अगस्त के करीब जो है वो छुट्टियां होती थी स्कूलों में। तो उस वक्त ऐलान होता हमारे स्कूल में 13 अगस्त को या 12 अगस्त को कि जो 14 अगस्त है उस दिन जो है वो हमारे स्कूल में एक सेलिब्रेशन होगी।
0: अच्छा।
3: तो हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं या जो मास्टर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, वो सारे आएंगे, तो तमाम बच्चों ने छुट्टी के बावजूद उसमें शिरकत लाजमी
0: करनी। अरे वाह, अरे वाह।
3: तो सब बच्चे जो है वो मिलके स्कूल जाते, और क्योंकि छुट्टियों के बाद अचानक से जाते, और क्योंकि स्कूल का नॉर्मल डे नहीं होता था, तो बच्चे खुशी खुशी जाते थे। तो फिर सबको मौका मिलता कि किसने जो है वो तिलावत करनी है, नात पढ़नी, किसने मिली लंगवा पढ़ना है और किसने जो है वो तकरीर करनी है। तो इसी दौरान जो है वो हम सारे बच्चे 14 अगस्त को जाते, वहाँ पे मिली लंगवा पढ़ते एक लाउड स्पीकर के जो है वो जरिए। तो एक फिर स्कूल को सजाते, आटे के साथ झंडियाँ लगाते।
0: अच्छा।
3: और फिर बड़े बड़े झंडे भी लगाते ग्राउंड में, और फिर कुर्सियाँ लगाते। तो फिर बाद में जो है वो हमारे स्कूल में देगे बनती थी।
0: अच्छा।
3: जिसमें वो उसमें स्पेशली होता था कि उसमें जो जर्दे की जगह उसमें ग्रीन कलर जो है वो शामिल किया जाता था।
0: अरे वाह।
3: तो ये बड़े ऐसे लगता था कि चावलों को जो थीम है वो भी एक ग्रीन कलर में आ गई थी, बड़ा जबरदस्त तजुर्बा होगा।
0: क्या बात है जी।
3: अब तो स्कूल भी चला गया और वो दिन भी चले गए, अब तो हम सिर्फ छोटे से जो बैच वगैरह है वो लगा के बस आज़ादी का हज़ार।
0: चलिए वो मेमरीज तो आपके पास है ना, वो मेमरीज जो है वो आपकी बड़ी कीमती मेमरीज हैं जो आपने स्कूल में वक्त गुजारा। अच्छा मैं ना चाहूँगा कि मैंने मैडम से इजाज़त ली है, वैसे हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं मैडम से पूछे बगैर नहीं कर सकते। मैडम देख रही हैं? हाँ देख रही हैं सब। अच्छा ऐसा है कि आप लोगों के साथ ना एट दी एंड कुछ लोगों के साथ मैं एक एक्टिविटी छोटी सी करूँगा, सो इट्स अ रैपिड फायर। मैं रेडियो पर कभी कभी करता हूँ, तो मेरा दिल है कि आप लोगों के साथ करें कुछ, जो लोग करना चाहें, जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें। एक और दोस्त हमारे साथ है, लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ। आप अपना इंट्रोडक्शन, प्यारा सा इंट्रोडक्शन दें।
4: अस्सलाम वालेकुम, आप
0: थोड़ा सा माइक्रोफोन के पास आएँ, थोड़ा सा इसको आगे कर लीजिए।
4: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं एफएम 101 लाहौर, लाहौर स्टूडियो से मैं हूं आपका होस्ट नयान अब्बासी। तो आज हम जश्न आज़ादी के मौके पर डिस्कशन कर रहे हैं तमाम इंटरनीस, साथ हमारे होस्ट आरजे फरहान साहब हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनके पॉडकास्ट हम देखते रहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ को वो बुलाते हैं अपने शो में।
0: आपको भी बुलाऊंगा किसी
4: पॉडकास्ट में, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आज जश्न आज़ादी का मौका है, उससे रिलेटेड हमारी डिस्कशन चल रही है कि कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं और कैसे हमारे 14 अगस्त को हमारी क्या मसरूफियात रहती हैं और कैसे हम सेलिब्रेट।
0: एक्टिंग का भी शौक है आपको?
4: है थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बचपन में किया है मैंने।
0: अच्छा की है कहाँ पे?
4: स्टेज ड्रामा किए हैं स्कूल टाइम पे, परफॉर्म किया हुआ, प्रोफेशनली इस तरह से इसको परसू नहीं किया कभी।
0: अच्छा कोई ना, भी बड़ा वक्त है, प्रोफेशनली आप कर भी सकते हैं एक्टिंग। आपको वैसे क्या, आपका योनरा क्या है, क्या पसंद है आपको?
4: मुझे, मैं बेसिकली एंकर पर्सन बनना चाहता हूँ।
0: एंकर पर्सन,
4: वर्सेटाइल एंकर पर्सन, मीडिया से रिलेटेड। चाहे मैं वर्सेटाइलिटी पे बिलीव करता हूँ कि आप अपने आप को एक चीज़ पे लिमिट आपको नहीं करना चाहिए, कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आप खुद पे बिलीव करें। तो इसी को बिलीव करते हुए तो मैं एक वर्सेटाइल एंकर पर्सन बनना चाहता हूँ,
0: ज़बरदस्त,
4: चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ ताकि ऑडियंस को इंगेज करना चाहता हूँ। अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहता कि अगर मैं पॉलिटिकल शो कर रहा हूँ तो सिर्फ उसी तक रहूँ, मैं स्पोर्ट्स शो भी कर सकता हूँ, रिलीजियस कॉन्टेंट पर बात कर सकता हूँ। तो इस तरह हरफन मौला होना चाहिए।
0: अच्छा। जैसे क्या बात है जी, हरफन मौला। आप नाम क्या बताया आपने?
4: नयान अब्बासी।
0: नयान अब्बासी, आपका इलाका कौन सा है?
4: मेरा मरी
0: का। मरी है ना, मेरे पहले शक पड़ा था, ठंडे इलाके में आप, माशाल्लाह। तो मरी में अभी भी है फैमिली?
4: जी फैमिली है।
0: मरी में तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है जश्न आज़ादी की, है ना?
4: बिल्कुल होती है, वहाँ पे भी होती है एक्साइटमेंट।
0: वहाँ पे तो मेरे ख्याल लाहौर से लोग गए होते हैं।
4: लाहौर से लोग आते हैं, हमें उनसे
0: खास मरी शहर के अंदर है कि उसके
4: मरी से थोड़ा सा 30 मिनट्स डिस्टेंस पे है गाँव।
0: अच्छा।
4: मेरा नाम, उसका नाम है बिरोट, वहाँ से मेरा ताल्लुक।
0: वो बिरोट से आप?
4: जी।
0: वो तो मौसम बड़ा अच्छा होता है वहाँ,
4: जबरदस्त।
0: चले आप सब, हम लोग बिरोट के सिद्ध।
4: बिल्कुल जरूर तशरीफ
0: लाए। आप लोग तैयार हैं सारे
4: मेरे फ्रेंड्स से?
0: अब्बासी साहब की तरफ से आप सबको ऑफर है जी, जितने भी इंटर्नीज यहाँ पे मौजूद है, इंक्लूडेड आरजेस और प्रोड्यूसर्स, तो बेरोड
4: वहाँ से व्यू इतना प्यारा है कि आप अगर बालकनी में बैठे हैं, सामने आपको मुश्कुरी टॉप नज़र आता है।
0: अच्छा।
4: लेफ्ट पे आपको किश्वा मरी नज़र आ रहा होता है।
0: वाओ।
4: फिर अगर आप सामने के वाले पहाड़ की तरफ चले जाते हो तो आपको तो पूरा कश्मीर नज़र आ रहा होता है।
0: कश्मीर नज़र,
4: कश्मीर के सारे पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं।
0: ओह माय गुडनेस, अब तो जाना पड़ेगा, अब तो बस कर दे यार, तो सचमुच ही दिल कर अब जाने को। हाँ ये बात तो है,
4: खूबसूरत है,
0: खूबसूरत मंजर है, खूबसूरत। तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं?
4: यहाँ पे पढ़ चुका हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने मैथ्स कम किया।
0: ठीक है।
4: प्रोफेशनल करियर, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा अदारा है जो, फिर कहा जाता है कि जो रेडियो से तैयार होकर निकलता है उसे फिर दुनिया याद रखती है, इसलिए रेडियो पाकिस्तान से इंटर्नशिप स्टार्ट किया है प्रोफेशनली। तो
0: नहीं, आपको दुनिया बिल्कुल याद रखेगी, जिस तरह दुनिया मरी को याद रखती है ना, पूरी दुनिया से लोग आते हैं मरी में घूमने फिरने के लिए और उस खूबसूरत वादियों को देखने के लिए। वैसे तो आपने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया, आपने सबको बुला लिया है,
4: सारे
0: हैं और इतने लोग इकट्ठे जाएंगे तो फिर अपना ही मजा। एक टूर प्लान ना कर लें इनके साथ मरी का?
4: बिल्कुल करें।
0: चलें, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ आप हैं और आप अपना इंट्रोडक्शन दें, नाम बताएँ।
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और आप सुन रहे हैं FM 101 लाहौर से। और आज स्टूडियो में 14 अगस्त के हवाले से ट्रांसमिशन चल रही है, हम एक हैं।
0: ज़बरदस्त, हम एक हैं और इस ट्रांसमिशन का आप भी हिस्सा हैं
5: जी।
0: तो कैसा लग रहा है रेडियो पाकिस्तान की इंटर्नशिप प्रोग्राम, कैसी जा रही है आपकी?
5: बहुत अच्छी और काफ़ी कुछ सीखा।
0: आपका पहला एक्सपीरियंस है?
5: हाँ जी।
0: इससे पहले कोई इंटर्नशिप कम्युनिकेशन के हवाले से, रेडियो के हवाले से?
5: नहीं, कोई भी।
0: कहाँ से पढ़ी हैं आप?
5: पंजाब यूनिवर्सिटी से।
0: पढ़ रही हैं अभी भी?
5: लास्ट सेमेस्टर है, थीसिस चल रहा है।
0: किस चीज़ में?
5: मैथ्स कॉम में।
0: मैथ्स कॉम के अंदर, चलें ज़बरदस्त जी, बेस्ट ऑफ लक। और जश्न आज़ादी, आप तो वैसे माशाल्लाह आपने सब्स पहना हुआ, आप तो आज ही तैयारी करके आ गई हैं जश्न आज़ादी की, है ना? तो आप करती हैं कोई झंडियाँ झंडियाँ लगाती हैं घर में कोई?
5: बचपन में लगाते थे और मुझे याद है 13 अगस्त को झंडे और झंडियाँ, और अम्मा कहती थी कि जो मर्जी कर लो सुबह तो बारिश ही हो जानी और ऐसा ही होता
0: और
5: था,
0: ऐसा ही होता हो थी। ऐसे ही, अच्छा हमारे बचपन भी ऐसे ही होता था, रात को झंडियाँ लगाई, पूरा सजा लिया, झंडा लगा, सुबह उठे तो बारिश हो गई, वो सारी भीग जाती, मौसम है ना इस तरह का, इस वजह से। आप लाहौर से हो?
5: हाँ जी।
0: लाहौर शहर से?
5: हाँ जी।
0: तो यहाँ पे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, अब कभी देखा है किसी को मोटर बाइक पे साइलेंसर निकाल के जा रहे होते हैं?
5: हमारे एरिया में तो अभी से बाजे शुरू हो गए,
0: बाजे शुरू हो गए हैं। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था बड़े मजे की, एक बच्चा आया, एक आंटी को जोर से उनके कान में बाजा मारा, आंटी ने उसी बाजे से उसको मारना शुरू कर दिया तो नीचे किसी ने लिखे था ये इसी काबिल है। तो ये मेरे ख्याल में एक दो दिन की एक्टिविटी होती है। तो आप तो नहीं बाजा बजाती?
5: नहीं।
0: पक्की बात है, आप अच्छी बच्ची हैं। चलें ज़बरदस्त जी, बेस्ट ऑफ लक। एक और हमारे साथ हैं जी बच्ची, और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन है हमारे साथ?
6: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैमा उमर है और FM 101 में, जैसे कि यकीनी बात है कि 14
0: अच्छा नहीं, आपने ना आपने ओपनिंग करनी है अपनी, जिससे एज ए आरजी ओपनिंग करता ना, पूरा एक्साइटमेंट के साथ, पूरे एक्सप्रेशन के साथ, लफ्ज़ों के साथ, जिससे एक्सप्रेस करते ना आप अपने लफ्ज, जिस तरह आप ओपनिंग कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। देखें ब्रॉडकास्टिंग में ना, जो मुझे पर्सनली, जाहिर बात आप सबको हमारे सीनियर्स ने बड़ा समझाया बताया, आपकी जो ओपनिंग है ना ये बड़ी जानदार और शानदार होनी चाहिए। ओपनिंग में मतलब आपके एक्सप्रेशंस, आपके लव्स, आपका बोलने का अंदाज़, ये बड़ा एक जानदार होना चाहिए। ऐसी आपकी जो क्लोजिंग है ना वो भी बड़ी शानदार होनी चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग बड़ी मैटर करती है ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, खासतौर पर रेडियो अगर एज ए आरजे काम करें तो। इसलिए जब भी आपने रेडियो पे ओपनिंग देनी है ना, पूरी ओपनिंग एक जानदार किस्म की होनी चाहिए, एक्सप्रेशंस के साथ, लफ्ज़ों के साथ आपने खेलना है बड़े खूबसूरत अंदाज से। चलें जी,
6: अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आपका प्रोग्राम
0: हम एक हैं, चलें
6: चलें, ओके ओके।
0: ऐसे मुझे भी प्रोग्राम का नाम नहीं पता, ट्रांसमिशन का नाम।
6: ओके, अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ मौजूद हूँ मैं उमर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज कुरान की आयत से करते हैं कि अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाते हैं, और ना तुम हिम्मत हारो और ना तुम गम करो, और तुम ही गालिब होगे अगर हो तुम मोमिन। आज हम बात कर रहे हैं योम आज़ादी की। आज हमारी जो ट्रांसमिशन है वो ख़ास तौर पर इसीलिए रखी गई है कि हम योम आज़ादी के ऊपर बात करें। तो जी जनाब, आप सब जानते हैं कि हम एक परचम के साए तले एक हैं। तो आज हम योम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे और सीखेंगे और आपसे भी पूछेंगे कॉल्स के ज़रिए कि जी आप लोग योम आज़ादी किस तरह से मनाते हैं, आप लोगों का बचपन कैसे गुजरा और बचपन के साथ आप लोगों की यादें कैसे वाबस्ता हैं।
0: अच्छा, आप बताएं आपका बचपन कैसा गुजरा।
6: ठीक है, अच्छा हमारे बचपन में जैसा कि सबने बताया है वही बचपन जो है, इसके बगैर आप मतलब लगता नहीं है कि हमने ज्यादा कुछ। तो हमारा ये होता था कि मेरे फादर जो हैं वो स्काउट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो होता यह था कि जब हमारा यौम आज़ादी का दिन आता था तो मेरे जो अब्बा हैं उन्होंने ना सवाल कुछ जमा करके रखे होते थे।
0: अच्छा।
6: और फिर हम अपने इलाके में खड़े हो जाते थे गली के घर के बाहर, और जितने भी हमसाए के बच्चे होते थे ना तो हम उन सबको इकट्ठा कर लेते थे और कहते थे कि अब जिसने जवाब दिया उसको ये चीज़ मिलेगी, उसको ये चीज़ मिलेगी। तो हमने एक ना बकेट बनाई होती थी और तो हम उसमें से ना फिर गिफ्ट देते थे जो अच्छा जवाब देता था।
0: अच्छा।
6: तो फिर एक लर्निंग कैपेसिटी भी देख लेते थे बच्चे की क्या है, और वो सीखने में भी मज़ा आता था, अच्छा इस दिन ये हुआ था, अच्छा इस दिन ये हुआ था। तो मेरा जो बचपन है ना वो इसलिए इस तरह से गुजरा है कि जो मेरे अब्बा थे ना वो 14 अगस्त वाले दिन खास तौर पर सवाल इकट्ठे करके फिर लोगों के साथ
0: बिल्कुल घर में पूरी एक्टिविटी होती थी और पूरा वो इन्वॉल्व होते थे। चले जबरदस्त
6: जी, खास तौर पर जी
0: बेस्ट ऑफ लक।
6: हां जी, बस एक और बात ऐड करना चाहूंगी। मैंने कुछ लाइंस लिखी थी जो मैं सुनाना चाहती हूं।
0: हमें
6: ये जो लाइंस हैं, जब पाकिस्तान बन रहा है उसको मेरा ख्याल है वो पोर्ट्रे कर रहा है, और जब जब हम ये लाइन सुनते हैं तो हमें वो जो है ना वो इमेजिनरी वर्ल्ड हमारे सामने आ जाती है।
0: इरशाद,
6: चला किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं, किसी से हारे जाएं, किसी से जीते जाएं, किसी जस्तजू की आस में कोशां रहें, किसी जोश की मंजिल से परवान चढ़ें, हमें जाना है आसमानों के उस पार, चल आ दिखा दें दुनिया को हम नहीं जहां से, जहां है हम से।
0: जहां है हम से। क्या बात है जी, बहुत खूब जबरदस्ती। और अभी हम बढ़ेंगे जनाब, एक और इंटर्नी हमारे सामने बैठी हैं और आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम जैसे एक्साइटमेंट के साथ बतानी है।
7: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट फातिन शाहिद। आपको बहुत खुश आमदीद करती हूं यौम आज़ादी के FM 101 ट्रांसमिशन पे। जी
0: वेरी नाइस, ज़बरदस्त, बहुत खूब। कैसी हैं आप?
7: मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं आप कैसे हैं?
0: पहले से बेहतर हूं। अच्छा, कैसा जा रहा है आपका इंटर्नशिप, कैसा एक्सपीरियंस है?
7: मैं वन वर्ड देना चाहूँगी, उम्दा।
0: अच्छा,
7: या
0: ज़बरदस्त।
7: मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मेरे फादर शुरू से ही ISPR में रहे हैं एंड ही लव टू टॉक, उनसे मुझे जीन्स मिल गई, आई लव टू टॉक।
0: आपको ना शाहिद की बेटी,
7: बिल्कुल एग्जैक्टली,
0: एंड ही टॉक्स वेरी वेल।
7: Yeah.
0: बड़ा खूबसूरत वो बोलते हैं। इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बाय द वे। अच्छा जबरदस्ती। अच्छा फातिन, मुझे बताइए कि जारी बात है फौजी फैमिली का तो एक्साइटमेंट ही और होती है
7: जी, बिल्कुल।
0: उनकी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, कोई ना कोई इवेंट्स चल रहे होते हैं, तो आपकी कैसे रही जश्न आज़ादी ओवरऑल?
7: वेल, अगर मैं आपको अपना बताऊँ, आर्मी से हट के मुझे सिर्फ छुट्टी का शौक होता था, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम अपने थोड़े से पीछे चले जाएं, बचपन में चले जाएं, तो ऑफ कोर्स जैसे हम सब ने बताया कि झंडियां लगाना, झंडा तो मैं आज भी लगाती हूँ अपनी छत पे जाकर। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा फीलिंग होती थी जो करनी है, बिकॉज यौम आज़ादी इट्स सच अ फीलिंग, हमें इतने स्ट्रगल्स के बाद, इतनी सैक्रिफाइसेस के बाद ये हमें मिला है, हमारे कायद की इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत है। एंड हर चीज़ का, जिस तरह हम सब ने कहा कि बत्तियाँ लगाना, झंडियाँ लगाना, झंडे लगाना, खाने पकाना, चीज़ें करना, वो पहले हम बहुत करते थे बचपन में, मैं भी करती थी, अब तो भूल गया, बचपन इतना पुराना हो गया।
0: इतनी पुरानी लग तो नहीं रही
7: लेकिन अब क्योंकि नया ज़माना शुरू हो गया, तो मैं भी अब नए ज़माने के साथ बस फ़ोन पे स्टेटस लगा दिया एंड दैट्स इट। शायद मैं इतनी पेट्रियाटिक नहीं हूँ, पर फिर भी आई फॉलो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्टिल दैट्स गोइंग ऑन।
0: बहुत खूब, ज़बरदस्त। और मैं ना एक लास्ट में आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करूँगा, बट मैं नहीं चाहूँगा कि सारे हैं, जो भी आना चाहे उसके अंदर, तो आप लोगों को इनाम मिलेगा जो मुझसे जीतेगा उस एक्टिविटी में।
7: वाओ,
0: अगर मैं जीतूंगा तो फिर आप सब मुझे इनाम देंगे। ज़बरदस्त जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर ऑल योर प्लान्स। और आप इस एक्टिविटी में भी हैं और मेरे ख्याल में अभी भी जारी रहेगा ये सिलसिला। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट कौन है जी हमारे साथ? जी आप चेहरा मुबारक तो ज़रा सामने करें ना, हम दीदार आपको सामने से करना चाहेंगे, या मैं चेयर को साइड पर कर लूँ? अच्छा चलें, आप इंट्रोडक्शन दें अपना।
8: अस्सलामु अलैकुम लाहौर, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मोमिन जमशेद और आप सुन रहे हैं रेडियो एफएम 101। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बहुत फेमस आरजे फरहान साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम फरहान साहब।
0: जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं आप? कर लें इंटरव्यू?
8: नहीं नहीं, आप
0: सवाल पूछें ना, आप पूछ सकते हैं।
8: क्या हाल हैं आपके?
0: बहुत अच्छे।
8: आप भी बताएं।
0: अच्छा, हाल आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझे कुछ हुआ हुआ है। सारे हाल पूछ रहे, क्या हाल हैं आपके, क्या हुआ था मुझे? वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, हाल पूछा आपने ना?
8: हाँ जी।
0: कोई शक है किसी चीज़ का?
8: नहीं नहीं नहीं,
0: डाउट है। आप लोग बार बार हाल पूछ रहे हैं, जो आ रहा है मेरा हाल पूछ रहा है, क्या हाल हैं आपके, क्या हाल हैं आपके?
8: नहीं नहीं, वैसे हम
0: वैसे मेरा सवाल है आपसे, आप अगर किसी से इंटरव्यू करें तो उससे आप बार बार ये पूछेंगे यार क्या हाल है आपके?
8: नहीं नहीं, बार बार नहीं पूछ।
0: क्या कहेंगे आप? सपोज आप, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या कहेंगे, क्या हाल हैं आपके?
8: नहीं, मैं
0: कैसा लगेगा आप किसी को, यार क्या हाल है आपके, आप ठीक हैं? माशाल्लाह सब ने मेरा हाल पूछा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब मेरे से हाल किसी ने पूछा
8: का।
0: अब जो बंदा हाल पूछेगा ना उससे मैं जो ना जुर्माना डालूंगा। देख लें, जो चले गए वो चले गए हैं, अब मेरा हाल ही। चलें बताएं, अब कैसा जाता है आपका जश्न आज़ादी, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या मोटर बाइक चलाते हैं?
8: हाँ जी चलाते
0: हैं। सलंसर फाड़ देते हैं?
8: नहीं नहीं नहीं, वो काम नहीं हम करते।
0: आवाज़ें साउंड?
8: नहीं नहीं नहीं।
0: बाहर निकलते हैं रोड पे शोर मचाते हैं?
8: नहीं,
0: ऐसा कुछ नहीं। क्या करते हैं आप यार, क्या जिंदगी है यार?
8: अगर मैं बचपन की बात करूं तो बेसिकली हम लोग स्कूल्स में
0: एक्टिविटीज़
8: करते थे। हम लोग 13 अगस्त को वाइस प्रिंसिपल से परमिशन लेके हम लोग पूरे स्कूल को सजाया करते थे। उसके बाद 14 अगस्त को बिल्कुल जैसे सबने बताया कि केक कटिंग होती थी।
0: अच्छा।
8: और हम लोग पूरा आप सजा के करते थे।
0: एक्टिंग का शौक है आपको?
8: नहीं, एक्टिंग नहीं, मैं बेसिकली
0: सिंगिंग करते हैं। जबरदस्त, मिली नगमे वगैरह भी तैयार किए होंगे आपने?
8: हाँ जी।
0: चले जबरदस्त है।
8: तो अब की अगर बात करें, जाहिर है ये एक इवेंट बिल्कुल एक ईद की तरह का एक आप समझ लें इवेंट हो जाता है। तो हम अब जो है हम लोग बेसिकली रिलेटिव्स आ जाते हैं हमारे घर पे, तो वो डिफरेंट खाने पकते हैं और इस तरीके से फिर हम लोग कजन्स वगैरह बाहर निकलते हैं और मनाते हैं।
0: बाहर निकलते हैं और सलंसर?
8: नहीं, करते हैं बेसिकली।
0: बाजा बजाए कभी?
8: बचपन में बहुत बजाया है, अब नहीं, अब तो काफ़ी टाइम हो गया।
0: कैसा लगता था किसी के कान में जाकर पों करें एकदम?
8: बहुत हमने डांटे भी सुनी हमारे लिए कहीं इस तरह तो चलता था उस टाइम पे, अब तो खैर नहीं
0: चलता था। क्या नाम क्या बताया आपने?
8: मोहम्मद मोमिन।
0: मोहम्मद मोमिन, ज़बरदस्त जी, बेस्ट ऑफ लक।
8: थैंक यू,
0: अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट कौन है जी हमारे साथ? वो भाई हमारे साथ हैं, आप हैं, थोड़ा सा आगे करना चेयर को।
8: था उस टाइम पे, अब तो खैर नहीं
0: चलता था। क्या नाम क्या बताया आपने?
8: मोहम्मद मोमिन।
0: मोहम्मद मोमिन, ज़बरदस्त जी, बेस्ट ऑफ लक।
8: थैंक यू,
0: अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट कौन है जी हमारे साथ? वो भाई हमारे साथ हैं, आप हैं।

0: चौथा महीना है जो हमारे साथ ये लोग हैं और इनसे इनके एक्सपीरियंस के हवाले से बातचीत चल रही है। इनसे पूछा जा रहा है कि जश्न आज़ादी के हवाले से इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और इसके साथ साथ इनका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर अब तक का जो रेडियो पाकिस्तान के साथ रहा है वो कैसा है। एक और दोस्त हमारे साथ हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है रेडियो होस्ट के तौर पर और फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे।
1: जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट मोहम्मद राहील रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर से। और अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
1: कैसे हैं आप?
0: कैसे हैं आप बताएं।
1: मैं बिल्कुल,
0: मैंने आपके आपके लफ्ज सुनाए, कैसे हैं आप? बोलने लगा था ना हाँ क्या। मैं जी बहुत बेहतर हूँ अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आप
1: लग भी रहे हैं सर, आप माशाल्लाह
0: आप लोगों को देख
1: चमक रहे हैं सर,
0: आप लोगों की वजह से। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस, माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोग सामने हो तो बंदा चमकता भी है धमकता भी है और हर तरह की उसके अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि जब आप स्टेज पर होते हैं ना तो स्टेज पर जो आपकी एनर्जी होती है ना होस्ट की, वो आपकी ऑडियंस होती है। माइक्रोफोन पे अगर इतने प्यारे चमकते धमकते सितारे हो तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है। तो इट्स योर एनर्जी, ये आप लोगों की एनर्जी है जो मेरे अंदर इस वक्त आई हुई है। आपके साथ रैपिड फायर ना करें,
1: कोशिश कर लेते हैं सर।
0: अच्छा चले, मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूँ। रैपिड फायर इज़ बेसिकली कि मैं आप लोगों से तेज़ी से क्वेश्चन करूँगा, उसके आपने जल्दी जल्दी आंसर करने हैं और आपने येस और नो में जवाब नहीं देना, हाँ और नहीं नहीं करना, और एक वर्ड को आपने दो दफ़ा रिपीट नहीं करना।
1: ओके
0: ठीक है ना, मैं आपसे सवाल करूंगा तेज़ी से, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा और आपने जल्दी जल्दी आंसर करना है और येस और नो में आपने जवाब नहीं देना।
1: और आंसर अगर मेरे पास ना हुआ फिर वो
0: खामोशी इख्तियार करेंगे तो फिर आप गेट से बाहर जाएंगे।
1: ओके सर
0: ठीक है, चले जी स्टार्ट करें जी। आप लोगों को समझ आएगी ना सबको? ठीक है जी, चले जी। अगर आप जीतेंगे ना तो आपको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा।
1: वो इनाम क्या होगा सर?
0: 5,000 रुपया मिलेगा।
1: माशाल्लाह, फिर तो एफर्ट पुट करूंगा मैं इंशाल्लाह सर।
0: चले करें फिर एफर्ट पुट।
1: जी सर,
0: आप लोगों ने गौर से इनको सुनना है, मैं इनसे सवाल करूंगा और आप लोगों ने, आप सब ने ना एक काम करना है, मैं इनसे, मेरा ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज हो गया, लेकिन आप लोगों ने इनको ना जरा गौर से सुनना है। मैं सवाल करूंगा और जब ये आउट होंगे ना तो आप लोगों ने मुझे बता देना कि ये आउट है। आप लोगों ने इशारा कर देना सब ने, ठीक है ना, इज आउट, वैसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक रैपिड फायर करने जा रहे हैं। हमारे सामने इस वक्त नाम क्या बताया आपने?
1: राहील।
0: राहील हमारे सामने है और एक छोटी सी एक्टिविटी है, इनाम 5,000 रुपया मिलेगा और मैडम नगमाना देंगे वो 5,000 रुपया। अच्छा चलो जी, रेडी राहील?
1: जी सर बिल्कुल।
0: रैपिड फायर है और रैपिड आंसर करना है,
1: कोशिश करते हैं।
0: ठीक है जी, चले जी, बिस्मिल्लाह रहमान। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर,
0: खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या नाम है आपका?
1: सर राहील।
0: क्या करते हैं?
1: मैं सर मैथ्स कम्युनिकेशन
0: पढ़ रहे हैं
1: यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से।
0: पढ़ रहे हैं?
1: बिल्कुल सर।
0: कब से?
1: तकरीबन 1.5 साल हो गया।
0: कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है पढ़ाई का?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर,
0: अच्छा जा रहा है,
1: बहुत मजा आ रहा है।
0: और क्या करते हैं इसके साथ?
1: सर और इसके अलावा मैं सिंगर हूँ।
0: गाना भी गाते हैं?
1: गाना भी गा लेते हैं, हल्का फुल्का।
0: अच्छा, हल्का फुल्के से क्या मुराद?
1: सही गा लेते हैं। ठीक है
0: ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप जा सकते हैं, है नहीं बोलना ना, आप जा सकते हैं।
1: बस
0: सर,
1: हो गया?
0: हाँ सर बस हो गया। आज नेक्स्ट है, 5,000 अभी आपसे लूंगा। आ जाए आप। हाँ जी जी, चलें जी जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या नाम है? अब मैं रैपिड फायर करेंगे।
2: मेरा अली अहमद नाम।
0: अली अहमद, अब मैं रैपिड फायर स्टार्ट कर रहा हूँ जी। अली अहमद आपका नाम है, लाहौर से हैं?
2: लाहौर से।
0: किस शहर से?
2: लेक सिटी।
0: लेक सिटी लाहौर है ये
2: जी।
0: जी अस्सलाम वालेकुम, आप आगे हो जाएं। जी नहीं बोलना, हाँ नहीं बोलना, यस और नो में आंसर नहीं करना। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: सर क्या हाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: खैरियत से हैं।
2: आप बताएं।
0: नींद में लग रहे हैं?
2: थोड़ा थोड़ा।
0: कितने कितने?
2: थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा सा है ना,
2: कम सोया था रात।
0: क्यों?
2: नींद नहीं आ रही थी।
0: क्या हो, किसी की याद आ रही थी?
2: नहीं, सोशल मीडिया।
0: नहीं सोशल मीडिया। आ जाए आगे, आ जाए आ जाए जल्दी आ जाए। नहीं सोशल मीडिया, आ जाए जल्दी आए जल्दी आए जी। अस्सलाम वालेकुम सर।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या हाल है सर आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: आप तो हीरो लग रहे हैं।
2: थैंक यू।
0: आपको किसी ने कभी बताया पहले?
2: कहते रहते हैं लोग।
0: कौन कहता है?
2: घर वाले भी।
0: घर वाले हीरो जाके जा पत्ती ला के आ, ये कहते हैं। ओ हीरो,
2: यही समझ लें आप,
0: यही समझ लें आप। नहीं
2: दोस्त यार भी नहीं,
0: अच्छे वाला हीरो। एक तो वो हीरो था ना यार, हीरो
2: नहीं नहीं
0: ठीक है,
2: एक्टिंग वाला हीरो।
0: अच्छा एक्टिंग वाले हीरो हैं। कौन सा हीरो पसंद है पाकिस्तानी आपको?
2: फवाद खान।
0: अच्छा वो क्यों?
2: मूवीज अच्छी होती है उनकी।
0: अच्छा प्ले करता है।
2: ऐसे ही है।
0: हाँ ऐसे ही है। सर अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: 5,000 रुपये मिलेगा आपको, जीतना चाहेंगे?
2: इंशाल्लाह
0: पक्की बात है। चलिए।

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। के निजकारी के अमल में आलमी शरफ याफ्ता सरमायाकारों की शमूलियत यकीनी बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जापान के साथ अपने देरीना शराकत दारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान और उर्दन ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए करीबी राबते और तआवुन का इरादा किया है। आज यौम इस्तेहसास कश्मीर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम की मजम्मत करना है। अफगानी जुल्म और होशरबा महंगाई से तंग अफगान शहरियों ने तालिबान रिजीम के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी है। दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स गुजश्ता रोज के स्कोर 103 रन 6 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
1: हाय, दिस इज FM 101।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोहर वगैरह में इकट्ठा होकर
3: यार मजा प्रोग्राम को खत्म नहीं करना, अभी बहुत सारी बातें करनी है और भी इंटर्न्स को शामिल करना, लेकिन वो क्या क्या शेर था यार, बड़ा मजे का शेर था, सुनाओ दोबारा से।
4: जो अभी सुनाया था?
3: हाँ, अभी जो सुनाया था।
4: अच्छा, मेरे सीनियर हैं फहद महमूद सोख्ता।
3: हाँ,
4: उनका बहुत खूबसूरत शेर है।
3: सोख्ता सर हैं, उन्हें सोख्ता ही पाले।
4: वो कहते हैं कि चंद लम्हों को तेरी निगाहों के सब जाविये मेरे रुख से जो टकरा गए।
3: अच्छा,
4: देखते देखते हम शिकस्ता बदन एक एक खुश नजर को दिली भाग गए।
3: वाकई ये खुद पसंदीदियत की भी इंतहा है कि भाग गए हम।
4: आगे वो कहते हैं, वो नेचर एंड नर्चर वाली बात। तुम बजा कह रहे हो हुनर चाहिए, बात फिर भी मुकद्दर की है हम सुखन। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन, बंद कमरों में क्या कुछ नहीं गा गए। फिर एक इनका इसी का बड़ा पसंदीदा एक मेरा शेर है।
3: पार्किंग में खड़ी थी बहुत गाड़ियां,
4: दिल हुआ खुश के अंदर बहुत यार हैं।
3: वाह,
4: ये तो हर एक को छूने से अकदा खुला, एसीओ में सभी फूल मुरझा गए।
3: वाह वाह वाह वाह वाह,
4: ये बहुत अच्छा शेर है मेरा।
3: ये अच्छा है, ये दोबारा से मुकरर।
4: पार्किंग में खड़ी थी बहुत गाड़ियां, दिल हुआ खुश के अंदर बहुत यार है। ये तो हर एक को छूने से एकदा खुला, एसीओं में सभी फूल मुरझा गए।
3: समझ आई गल? इस तरह होता है, पता चल जाता है बंदे को।
4: उन्हें समझ आ ही नहीं
3: है। जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ।
5: वो आपको टारगेट कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं
4: इन चीजों को।
5: जब खुद नहीं बोलेंगे, मैं भी कितना ही बोलूंगी,
3: इतना ही बोलेंगे। अभी तो वो आई हैं, अभी थोड़ी देर के तो हुई है, अभी आई हैं। आप तो मेरे से 14 साल, याद है तुम्हें ये लफ्ज, 14 साल से आप रेडियो कर रहे हैं, आप खामोश हो गए हैं। ज्यादा
5: आप डरे नहीं, आपके पीछे
3: एक छोटा सा ये क्या नगीना सा तुमने हाथों में, ये उंगली में अंगूठी की सूरत में, वो क्या शेर था, एक था ना कि
5: रहने दे नहीं आ रहा,
3: मतलब कि अंगूठी का जख्म जो है ना वो मतलब लग रहा है कुछ ऐसा था।
6: चलो छोड़ दो, रहने दो।
3: ठीक है, मैं तुम्हें पता है कि मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ, छोड़ भी देता हूँ फिर।
5: ओह माय गॉड,
4: ये मानी बात लग रही है।
3: नहीं, ये सच्ची है, ये सच्ची है, मेरी जिंदगी में सच्ची है, मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ चीजों से
6: और छोड़।
3: ये जो है ना, ये इश्क है, ऐसा लगता है कि पहले जब मैं माइक

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: to One Above, FM 101.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आजादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आजाद हुए थे और आजादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बरास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

guys.

0: सुनते रहिए FM 101।
1: पाकिस्तान दी अजीम तिब्बी इलाजगाह दवाखाना प्रोफेसर सुलेमान वालों तुहाडी मेजबान साइमा तुहाडी खिदमत विच सलाम ते पुरखलूस दुआवां दा हदिया पेश करदी है। उम्मीद करदी कि साडा इह प्रोग्राम तुहाडे ते तुहाडी पूरी फैमिली वास्ते सेहत भरी जिंदगी दा सबब बन रहे होणगे। मेरे सोने भैन भाओ, साइमा तुहाडी सेहतमंदी ते पुरसकून जिंदगी दी दुआ करदी है, लेकिन रब ना करे जे तुसी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ां दा दर्द या अमराज दे बाजपन दा शिकार हो ते तुहाडी बीमारी किसे भी इलाज तो ठीक नहीं हुई ते वक्त जाया ना करो ते फौरन ही पाकिस्तान दे मन्ने तने ते बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं जाती तौर ते मिलो। साडा पता ते फोन नंबर नोट कर लो। सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान मेन रावी रोड लाहौर। फोन नंबर 042-377-2710 यानी 042-377-2710। मोबाइल नंबर है 0300-414-2608 यानी 0300-414-2608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। जी सोने भैन भ्राओ, पता तुहानू मिल गया ते हुण मैं तुहाडी मुलाकात करानी आ पाकिस्तान तिब्बी फाउंडेशन दे चेयरमैन, यूनानी मेडिकल कॉलेज दे साबिक वाइस प्रिंसिपल ते अवार्ड याफ्ता गोल्ड मैडलिस्ट तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नाल। सुलेमान साहब वेलकम, खुश आमदीद ते जी आयां नूं।
2: सहमा जी शुक्रिया, मेहरबानी ते थैंक यू।
1: बहुत खूब, इहनूं कहिंदे ने नैले पे दैला। सुलेमान साहब
2: जी,
1: असीं अक्सर सुणने आ कि फलां बीमारी फलां वायरस दा नतीजा है या इह वायरल इन्फेक्शन है वगैरह वगैरह। सुलेमान साहब, अज प्रोग्राम दी इब्तिदा वायरस नाल ही ना करिए, लिहाजा साढ़े सुनन नूं जिहड़े वाले सामिन ने ना उहनां नूं पता लगे कि वायरस असल च है की बला।
2: सहमा जी, प्रोग्राम दी इब्तिदा किसी अच्छी चीज़ नाल कर दे, बहरहाल तुहाडी फरमाइश दे तहत अर्ज़ करांगा।
1: मेरी फरमाइश।
2: हां जी, कि वायरस वाकई इक बला है।
1: वाकई
2: सहमा जी, वायरस बहुत ही छोटे जरासीम हुंदे ने जिहड़े आम तौर ते खुरदबीन तों वी नज़र नहीं आंदे।
1: अच्छा,
2: इहनां नूं वेखण लई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होंगी है।
1: बिल्कुल
2: सहमा जी, एक आम वायरस का साइज कम अज कम 0.2 माइक्रोन होंगे है। माइक्रोन 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा होंगे।
1: अच्छा,
2: वायरस बहुत सारी खतरनाक बीमारियां मसलन खसरा, चीचक, लाकड़ा काकड़ा, कन पेड़े, वरमे दिमाग से हैपाटाइटिस वर्गी बीमारियों का सबब बनता है। सहमा जी, बस जरासीम मुतहरक होंगे ने ते बस गैर मुतहरक।
1: अच्छा,
2: ते परेशान कुन हकीकत है वे कि इन्हां दी अफजाइश ते पैदाइश बहुत जल्दी।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव एफएम 101।

0: 9 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan, the news read by Zahra Sikandar. First, the headlines. Prime Minister has reiterated Pakistan's commitment to continue its sincere efforts for peace in the region. Deputy Prime Minister, speaking at ministerial meeting on Jerusalem in Amman today, expressed grave concern over the deteriorating situation in the occupied Palestinian territory. Pakistan and Japan have agreed to explore new avenues of collaboration in diverse fields, including infrastructure, digital transformation, and sustainable economic growth. Yomi Istehsali Kashmir was observed today to condemn India's illegal and unilateral action of August 5, 2019.
1: News headlines.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
3: दिस इज FM 101.1.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: Of Pakistan. Tune into the one above, FM 101. 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान है, शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अदा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने आज अम्मान में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से मुतालिक वज़ारती इजलास से खिताब करते हुए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की बिगड़ती हुई सूरतेहाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान और जापान ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल तब्दीली और पायदार इक़्तिसादी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के नए मौके तलाश करने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 रुकनी कौमी टीम का ऐलान किया है, जो रवा माह की 15 तारीख से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में शुरू हो रहा है।
1: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें, जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो, ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेर तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: Back after the shocking commercial break.
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk.
3: We'll be back after the shocking commercial break.
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July.

All right, welcome back. It's 10:52 p.m. on the dial and 5th of August and 2026. Yo. और अगस्त का महीना जैसे ही आता है ना तो एक दफ़ा फ़ौरन से 14 अगस्त याद आती है, और 14 अगस्त की याद आती फ़ौरन से ट्रिगर होना शुरू होता है कि ओके जश्न आज़ादी है, आज़ादी का महीना है, और बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल होना शुरू होती हैं जो कि हमने नहीं देखी, बट स्टिल वी हैव लर्न फ्रॉम आर एल्डर्स या किताबों से कहीं ना कहीं से हमें मिल जाती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। पर हमने ज़ाहिर है पढ़ा भी है और कहीं ना कहीं हमने उसको लिखा भी है, अपने एग्ज़ाम्स में भी लिखते रहे, अपने जो नोट्स लिए उनमें भी लिखते रहे किताबों में, और उसके बाद पढ़ने का भी इतफाक़ होता है मुख्तलिफ कहानियाँ किससे। फिर आई हैव माय दादी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे बताती हैं एंड अराउंड 90, तो वो मुझे सुनाती हैं कि क्या था, कैसे कैसे कौन कौन से हालात देखे और किस तरह से बाद की जो जंगी हालात थे वो भी। एंड मैं समझता हूँ कि अभी ये पाकिस्तान रेडियो से जो ट्रांसमिशन हुई, जो अभी मार्का हक पे, वो भी मेरे लिए ऑनर है कि आई वॉज़ द पार्ट ऑफ दैट ट्रांसमिशन, जहाँ पे हम बैठ के अपने फौजी जवान जो थे पाकिस्तान अवाम उनको भी अपडेटेड रख रहे थे, वो हमने भी देखा। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट, वी कैन डिस्कस, और उसी की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि हाँ हमें वतन मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक चीज़ की कमी मैं महसूस करता हूँ, वो कमी ये है कि ये जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं चीज़ें, वो उस तरह से शायद इंतकाल पजीर नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। और आई वॉज वॉचिंग मूवी जॉन ऑफ आर्क और उसके अलावा नेपोलियन एंड अदर्स मैंने देखा, और फिर उसके बाद आई हैपन टू सी द फेस्टिवल, और बाहर के अगर यूरोप वाली साइड पे बात करें उनकी बड़ी बड़ी बैटल्स हुई, बैटल ऑफ वाटरलू थी नेपोलियन की, वो पूरा रिक्रिएट करते हैं उसको, रिक्रिएट करके पूरा परफॉर्म करते हैं उसको ना, परफॉर्म करते हैं। उससे होता ये है कि जो नस्लें हैं उनके जहनों में उतर जाता है, अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे हुआ था और फिर ये चीज़ हमने अचीव की, ये हमें नुकसान हुआ। वी ऑल्सो आर सपोज टू डू सच थिंग्स फॉर आर बिलव्ड कंपनी एंड बिलव्ड कंट्री, निकल गया माजर जी। एंड पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से जिस तरह भी सेलिब्रेट करें, अब आप मुझे ये बताएंगे कि आप किस तरह से बिफोर 14 अगस्त आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं और क्या आपके जहन में चलता है। और ये तो खैर मेरे लिए एक मौजू है ना, आप मौजू कोई भी बना सकते हैं। जो मेरा गुफ्तगू का होता है, हर दफ़ा मैं एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल आज मैंने यही पूछा है कि बिफोर 14th of August आप लोगों के जहन में क्या चलता है। लेकिन कैनवस मेरा बहुत बड़ा है, इसमें आप जिस तरह से दिल करता है रंग भर सकते हैं, जो दिल करता है बात कर सकते हैं, आपने अशार लिखने हैं अशार लिखें, आपने नज़्म गज़ल अफसाना किस्सा कहानी, एंड यू कैन आस्क मी एनी थिंग, कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, मैं हाजिर खिदमत ऑलवेज हियर टू आंसर एंड रिप्लाई। हाय कभी टूटे टूटे मैसेज भी आ जाते हैं दिलों के, ठीक है भेजें जो भी दिल करता है मुझे भेजें, आई विल रीड, आई विल रिस्पॉन्ड डेफिनेटली। और इसके अलावा फिर से दोहराता जाऊं, जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, आप मुझे ये बताएं इफ यू लव योर कंट्री एंड यू लिसनिंग, कुछ करें या ना करें, कोई बात करें या ना करें, आप अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एक SMS करेंगे, आप 101 लिखेंगे, स्पेस देके अपना नाम और पैगाम लिखें, पैगाम अगर नहीं लिखना 101 लिखें और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें और इसको भेज दें 4471 पे। और इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0422111 0412 1110 0001। आप मुझे कॉल कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सबके लिए मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम है वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच। गुलाब ने कहा, गुलाब है कौन सर जी, मैं आपका शो सुनती, अच्छा लड़की हैं आप, ठीक है, और आप बहुत नाइस हैं। हाँ माइक पे जो भी आता है ना वो नाइस ही बन के आता है, मैं भी नाइस बन के आता हूँ, एक्चुअली हु नोज़ के कैसा हूँ कैसा नहीं है,
ऐसे कैसे आपको अंदाज़ा हो गया? एंड थैंक यू वेरी मच रज़ा आलम, आपको मैसेज मिला हमें एंड मुझे मिला और आप सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। सेकंड टाइम यू आर लिसनिंग, फिज़ा कहती हूँ पूरा साल आपको सुनती रही हूँ। फिज़ा यार तुम्हारी हिम्मत है, किस तरह से बर्दाश्त किया? सुहेल अब्बास ने इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम। नुमान नज़ीर ने इस्लाम किया, इस्लाम नहीं किया, ही सेज़ हेलो भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, खुदा हमारे मुल्क की हिफाजत करे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप पूरी टीम को सलाम वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। एंड मूछों की तारीफ की सुहेल अब्बास ने, ला के दे दवा। बहुत से नली आए हैं, इस्लाम किया, पाकिस्तान जिंदाबाद, वालेकुम अस्सलाम। लाइफ इज प्लान्ड, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू डोंट प्लान, आई डोंट प्लान थिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं प्लान नहीं करता, मैं कहता हूँ अनप्लान्ड ही जान दे, देखी जाएगी क्या होगा। थैंक यू वेरी मच बहरल, आपने इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम। अपने बचपन की सेलिब्रेशन के बारे में बताएं। मेरे बचपन की सेलिब्रेशन के किस्से बहुत सारे हैं, मैं तो सुनाता ही रहूँगा आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे पास ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ हैं ना, मैं कह रहा हूँ तुझे कहना कि यार आप बहुत गलत इंसान रहे हुए। हम तो मतलब ठीक है, आगे चल के चीज़ों की समझ आना शुरू होती है एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे, लेकिन एक सेलिब्रेशन का पार्ट होता है, आप उम्र के छोटे हिस्से में होते हैं, उसमें आप और तरह से सेलिब्रेट करते हैं। यू डू प्रैंक्स, आप तो रिकॉर्डेड होते हैं, उस वक्त रिकॉर्ड नहीं थे होते। हाँ आई रिमेंबर, जितना मैंने ट्रेवल किया ना वो सारा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, इतना रिकॉर्डेड है मेरे पास डाटा, लेकिन वो सारी मेरी हार्ड ड्राइव यार गिर गई यार, पोर्टेबल, दिस इज़ द बैड थिंग। अक्सर सोचता हूँ उसमें कितनी प्यारी प्यारी मेरी तस्वीरें थी, बंदा पुरानी तस्वीरें ला के धोखा ही दे देता है, मिली नहीं, फिर तो मैं ज़रूर लगाता। आई एम रियली सैड अबाउट इट। बहुत पुठे पुठे काम करते थे, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हम 13 अगस्त की रात को ना हम तीन दोस्त तय कर लेते थे, खैर बट तो लाजमी मेरे साथ होता था, घर की छत पे खड़े होते थे शॉपर में पानी भर के, साड़ी सेलिब्रेशन पुठे तरीके नाल शुरू होती सी। और हम वेट करते थे, हाँ जी 12 बज गए, अब जो पहले गुजरेगा पानी का शॉपर उसके ऊपर गिरेगा। असी पानी दे शॉपर मारदे सी लोकां नूं। मैं सी एक न्यूज़ ब्रेक है, हेलो हेलो, न्यूज ब्रेक की दर से आई। Yes, things are not working. ओके शाह जी, अगर आप सुन रहे हैं काइंडली अंदर ज़रा तशरीफ़ लाइएगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे क्या, पैनल को थोड़ा सा इशू आ रहा है। राबिया शफक ने ज्वाइन किया, इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम। जमील ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कुछ प्ले करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। सेंस वी आर सेलिब्रेटिंग एंड व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग, आई वांट यू टू टेल मी व्हाट, हाउ डू यू सेलिब्रेट, और आपको क्या लगता है पहले, वैसे पहले और आज में आपको क्या लगता है, आपकी पहले और आज की सेलिब्रेशन में कितना फ़र्क आया? दोनों में आप मुझे फ़र्क बताएंगे और इसके लिए आप कॉल करेंगे और आप लोगों के मैसेजेस भी अभी रीड करता हूँ। मैं सुबह से एक गाना सोच रहा हूँ, मेरे जहन में आ नहीं रहा वो गाना कौन सा था, बड़ा ज़बरदस्त चला पिछले दिनों, ख़ासतौर पर मार्का हक के दौरान तो बहुत ज़्यादा चला वो गाना, और ख़ास तौर पे एयरफोर्स के लिए बना था। कैन यू टेल मी इफ़ यू गाइस आर लिसनिंग ऑन माय लाइव, बड़ा अच्छा गाना है। हाँ

0: आ गया। मैं ढूंढ रहा था, मैं कह यार ये गाना क्यों नहीं मिल रहा मुझे। हाँ यार, दिस इज द बेस्ट सॉन्ग, आई लव दिस ट्रैक यार, आई लिटरली लव दिस ट्रैक। डोंट गो एनीवेयर, ये गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं जी। पाकिस्तान एयरफोर्स को डेडिकेशन है, 11:02 हो गए और आज 5 अगस्त 2026 के सन एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। एंड सवाल तो मेरा जश्न आज़ादी के हवाले से है, इट इज़ अबाउट यू, हाउ डू यू फील एंड व्हाट यू फील, व्हाट यू डिड, व्हाट यू डू नाउ, क्या करते थे अब क्या करते हैं, क्या समझा आपने जश्न आज़ादी, क्या फ़र्क है कल की और आज के आपके आज़ादी की सेलिब्रेशन में, कुछ भी आ रहे थे। कैनवस बहुत बड़ा सा बाप के लिए, कोई भी बात
1: मुझे तू आजमा,
0: हैवी है, हैवी लेवल है, नेक्स्ट लेवल सॉन्ग, ओह माय गॉड, गूज बम्स आते हैं, बहुत मजा आता है यार इस गाने को सुन के, मैं बड़ा मजा आता है। वाह ब्यूटीफुल डेडिकेशन, हियर वी गो, डोंट गो एनीवेयर, आई विल कैच यू बैक आफ्टर द ब्यूटीफुल नंबर, इट्स 11:03 PM 5th August 2026,
1: this is Aadhar Docs. मेरा ये जोश दे सदा,
0: हाय उड़ा, I really wanna fly। कभी आपने ऐसे किया है? मैं अक्सर रात को ना सोते हुए दुआ करता था, या अल्लाह, मुझे बड़ा शौक था सुपरमैन बनने का, फैंटेसी है ना मेरी, बन तो सकता नहीं, मैंने सोचना, मैंने कहा या अल्लाह, आई रियली वॉन्ट टू फ्लाई ना यार प्लीज। रात को मैंने देखना ख्वाब में ना, मैं उड़ा होता था, एंड लिटरली ऐसे होता था सीरियसली, और मैं बड़ा खुश होता था कि चलो ऐसे चस्का ले लिया ना, ख्वाब में उड़े। और कभी कभी मैंने देखना, मैं उड़ तो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फिर मैं ऐसे नीचे नहीं था आया जाता, फिर उसकी टेंशन लैदा होंगे सी, ये नवा कट्टा खुल गया जी, पहले उड़न तो शौक सी, हूँ थले नहीं आया जा रहा, और मैं बड़ा खुश होता था कि चलो ऐसे चस्का ले लिया ना, ख्वाब में उड़े। और कभी कभी मैंने देखना, मैं उड़ तो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फिर मैं ऐसे नीचे नहीं था आया जाता, फिर उसकी टेंशन

0: All right, जी, welcome back. वक्त हो चुका है 11:09 और 5 अगस्त 2026 से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स और आपका मेरे साथ होता है बुधवार शाम में रात की शब 10 से 12 बजे तक. और आज के दिन हम बात कर रहे हैं, वैसे तो पूरा महीना है हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए एंड वी शुड सेलिब्रेट. मेरा ख्याल है हम सारों को करना चाहिए. और जिन लोगों के एतराज़ात हैं बाहैसियत इंसान, एतराज़ तो हर चीज़ पे होते हैं ना. वकास अहमद ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच वकास भाई फॉर लिसनिंग, आपका बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. देखें, एतराज़ात तो सारों के होते हैं, आप बहन भाइयों के आपस में होते हैं, इवन नम्मा अब्बा से भी बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफात होते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील, बट रिमेंबर दिस, मैं तो अपने आप को ये बताता हूँ, ना वो जो किड, मेरी अम्मा मेरे पैम्पर बदलने, मुझे बुखार होना लेके जाना. अभी ये परसों की बात है, शी वॉज टेलिंग मी ए स्टोरी. शी वॉज सेइंग के तुम्हें बुखार हुआ और तुम्हारी जो है दादी तुम्हें ले गई मेरे से. शी सेड के इसे ना खसरा निकलने वाला है और इसको अंधेरे कमरे में रखना है. वो पुराना ओल्ड फैशन किस्म के थॉट्स और इस तरह की बात है. इसे सुर्ख कपड़े में लपेट के रखना है, रोशनी इसको नहीं लगने देनी. और अम्मा मेरी कहती हैं ज़बरदस्ती मेरे से ले गई अब दादी तुम्हारी और अपने कमरे में उन्होंने लिटा दिया. लाइट्स ऑफ एंड एवरीथिंग वाज ऑफ, पंखा बंद, हर चीज़ बंद. कहती 2-3 दिन मैं गायब गायब आती रही देखने, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई चक्कर नहीं, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ मेरे से हैंडल तुम्हारी दादी. कहती हैं 3rd दिन जब मैं आई हूँ तो तुम बेड पे थे और तुम्हारे ना सांस उखड़ रहा था, चल नहीं था रहा ना, रुक रुक के. और मैंने जब तुम्हें उठाया तो तुमने गर्दन पीछे गिरा दी और शदीद किस्म का टेम्परेचर था, तुम्हें बॉडी जैसे बर्न हो रही थी. तो कहती हैं तुम्हारे अब्बा भी उसी टाइम घर आ गए, मैंने फिर फोर्सफुली लिया एंड वी वेंट टू सी द डॉक्टर और डॉक्टर ने कहा कि तुसी तो बच्चा मार देना सी. अम्मा के बकोल अब पता नहीं कितना होगा, 106 अम्मा कहती हैं, 106-105 इतना टेम्परेचर. और डॉक्टर ने चढ़ाई कर दी, उन्होंने कहा ये थोड़ी देर की बात थी और आपका बच्चा तो ख़त्म हो जाना था. फिर अम्मा कहती हैं हमने वहीं पे फिर नहला नहला के नहलाते खुश करते, फिर नहलाते फिर खुश करते और एफर्ट करते करते जब तुम्हारा टेम्परेचर 100 पे आया फिर मेडिकेशन हुई और 3 दिन लगातार फिर जाते रहे. कहती तुम्हें एडमिट तो करा नहीं सकते थे, माशाल्लाह बच्चे इतने थे, 6 भैन भरा सी, वी वर 6. एंड आई आस्क्ड हर, अच्छा मतलब आप 2-3-4 घंटे लेट होती, मैं तो लुढ़क गया था ना. मैं तो उत्थे बह के देख रहा था, अच्छा यार ये पाकिस्तान में सेलिब्रेशन चल रही है, अकेले अकेले ही मनाई जा रहे हैं, अच्छा मुझे तो मौका भी नहीं दिया इन्होंने. मेरा भी दिल कह रहा था यार मैं भी ऊपर से छापर छुपर फेंकता किसी के ऊपर, मैं भी किसी को तंग करता. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. आपके माँ बाप आपके लिए बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं लेकिन बाहैसियत इंसान बहुत सारी गलतियाँ उनसे भी होती हैं, आपको एतराज़ात होते हैं. तो इसी तरह से इस मट्टी ने हमें इतना कुछ दिया है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं लेकिन फ़र्क ये है यहाँ पे ये मट्टी, ये वतन ने कुछ नहीं किया हमारे साथ. ये वतन, ये मट्टी हमें सिर्फ देती है, इसमें कमी अगर आती है तो मेरी और आपकी तरफ से आती है. सो लव योर कंट्री एंड लिव फॉर योर कंट्री, ट्रस्ट मी. और लंबे जोड़े किस्से कहानियां मैं नहीं सुना रहा आपको. मौसम कह रहे हैं ऊपर से रेडियो कर रहे होते. हाँ ऊपर से रेडियो करता फिर मैं तानू ही सुनाना सी, फिर मैं हूरा सुना. कितना मजा आता ना. अब मेरी तो जड़ियाँ अपनियाँ है सी वही सुन लेंदियाँ, नाले दी भी सुन दियाँ होंदियाँ उदे अगे भी. यार फिर तो मैं कहता हूरों में फैन होती मेरी, हूरों में फैन फॉलोइंग होनी थी हैवी. एनीवेज जी, आप कोई भी बात कर सकते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से. आई विल बी टेकिंग कॉल्स एंड आई एम गोना रीड योर मैसेजेस फ्रॉम 4471. जिन लोगों के पास इंटरनेट की रसाई नहीं है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. आपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 1-0 लिखना है, स्पेस देनी है, कोई भी बात लिखें. अगर कुछ नहीं लिखना तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें और इसको भेज दें 4471 पर. सलमान चांडिया बलोच साहब ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच जी. वालेकुम अस्सलाम. फिजा कहती है शॉपर से आपका गहरा ताल्लुक है जो हर किसी पे शॉपर में पानी गिरा, गरीब बंदा शॉपर से छूटेगा। एनीवे इसके अलावा और कौन सा तरीका है पानी फेंकने का, मुझे बताएं और कौन सा तरीका। मैं ठीक हूँ सलवाल, आप बताओ। सुहेल अब्बास थैंक यू वेरी मच यार। अच्छा जी, पहला मैसेज मुझे आया था फातिमा का, आर्थोडॉक्स कोई किताब सजेस्ट करें पढ़ने का मजा आ जाए। अब मुझे ये बताएं आप पढ़ने किस तरह की किताब पढ़ना चाहती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं सजेस्ट करता हूँ। आप बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ सकती हैं, इट डिपेंड्स के इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक और या आगे एडवांस लेवल पे जाना चाहती हैं, आप किस तरह की किताबें पहले पढ़ चुकी हैं और कौन सी पढ़ना चाहती हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए ताकि आगे की तरफ बढ़े आप। कुछ मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिल जाएगा, फिर आप लोग मैसेज कीजिएगा और आई लर्न फ्रॉम यू गाइस। अच्छा, इकरा है फ्रॉम SAG, पता नहीं क्या लिखा है। सलाम किया आपने, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और फातिमा कहती हैं आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है, मेरी तरह आ रही है अच्छा, जाविया भी वैसे अच्छी किताब है, अगर आप लेके पढ़ना चाहें यू कैन स्टार्ट समथिंग अबाउट तसव्वुफ और उसमें। और फिजा कहती है डोरेमोन से टाइम मशीन लें, बचपन में वापस चलते हैं, है ना। कमल नाज हैं, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और अगेन कहती हैं शो बहुत अच्छा है लेकिन आवाज़ ठीक नहीं है, आप मुझे बताएं आवाज़ ठीक है। फाती लाहौर से, कैसे हैं, कैसे चल रही है जिंदगी। जिंदगी अच्छी चल रही है, जेड़ा वेला लंघ जाए कहते हैं चंगा होंदा, अच्छा है, अच्छा है, आई एम एंजॉयिंग इट। ज़ारा तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो, फराज दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, अच्छी बात है। अस्मा है इस्लाम मोहब्बत, वालेकुम अस्सलाम जी। चांद आए हाय चंदा कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। आज़ादी का मंथ आपको भी मुबारक हो जी प्यारे चांद, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं आप, है ना, मजदूर आदमी हो जी, दिहाड़ी तो जाना होता, की करिए, अपना ख्याल भी रखा कीजिए, बड़ा ख्याल रखते हैं आपने, आपकी सेहत आपकी सलामती बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे, थैंक यू वेरी मच। दीवानी आपकी, हाय अल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अस्मा पाकिस्तान जिंदाबाद, किसी ने लिख के भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, गुलाम हुसैन हैं सियालकोट से, सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और कहते हैं कश्मीर के हवाले से, कश्मीर हमारे भाई हैं कश्मीरी और सारे, बहुत सारी मोहब्बत है उनके लिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान देखे कश्मीर के लिए इतना कुछ करता आया है, और बिल्कुल वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमेशा से किया है और इसी तरह से करते रहेंगे। एहतशाम अली कहते हैं आपका क्या हाल है, मेरा हाल ठीक है, आप बताएं आपका क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: हेलो, वालेकुम अस्सलाम,
0: हाँ जी कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं।
1: अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ माशाल्लाह। आज आपका शो सुन रही थी तो मैंने कहा कॉल करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल मिल गई।
0: कुछ है ना वरना तुम मेरा शो ही सुन रहे हो
1: नहीं वैसे अक्सर सुनती रहती हूँ। अच्छा, जो लेकिन अच्छा, आज खुशी तौर पर सुन रही थी, वो जो कहते हैं ना दिल और धड़कन उनके साथ सुन रही थी।
0: खैर है, बंदे ने तो नहीं कहा कि आज शो सुनने नहीं तो लड़ाई हो जानी है
1: नहीं ऐसी बात नहीं है।
0: अच्छा फिर कैसी बात है,
1: बस ऐसे दिल किया।
0: ओके बिल्कुल ठीक,
1: जैसे कि आज आपकी बातें याद कर रही थी, जैसे मैंने पहले आपको कितनी बार कॉल की थी, जो मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग थी आपके साथ बात की थी कॉल पे, वो सारी डिलीट हो गई थी,
0: है ना,
1: तो कोई थी नहीं बस। हाँ तो भाई वो याद कर रही थी मैं,
0: जब आप फोन करती थी और कहती थी मैं बोल रही हूँ पूरा आरजे वाला स्टार्ट और पूरा है।
1: हाँ जी,
0: वॉइस छा गई आप,
1: थैंक यू।
0: कुछ कहेंगी आप, अच्छा। बताएंगी आप क्या शरारते करती थी 14 अगस्त में।
1: शरारत तो नहीं की कभी, लेकिन मतलब सेलिब्रेट जो होता था जिस हद तक
0: बहुत शरीफ है आप, इतने शरीफ क्यों है आप?
1: हाय अल्लाह, मैंने इतनी ज्यादा शराफत रख दी, मैं क्या करूँ?
0: इतनी शराफत लेके कहाँ जाएंगे आप? क्या ही कर रहा है आपने इतनी शराफत?
1: बस अपने पास, बस अपने पास ही रखूंगी।
0: चलो कभी दिल भर जाए तो बताना, ओएलएक्स कर लेंगे।
1: उधर एलईडी में जाके देखो
0: बाजी साडे नाल गल कर लो।
1: अच्छा, वो मैं ये बता रही थी, वो जैसे छोटी झंडियां होती थी ना और बड़ी झंडियां होती थी, तो उनकी जो गड्डियां मिलती होती तो वो लेकर आती थी मैं अपने छोटे भाई के साथ। तो फिर वो धागा लेकर ना, तो फिर आटा के अंदर थोड़ा पानी डाल के तो उसको लगाते थे,
0: लेवी बना के।
1: हाँ जी बिल्कुल, वो लड़ियां सी बन जाती थी, एक उल्टी झंडी करके एक सीधी झंडी करके वो वाली लाइन, फिर एक पूरी सीधी वो जो झंडी होती है उसकी लाइन, फिर एक उल्टी झंडी की लाइन, फिर एक छोटी झंडी, फिर एक बड़ी झंडी, मतलब इतना मुख्तलिफ डिजाइन करके ना झंडियों के साथ में, और भी बहुत सारी चीजें होती थी सजावट की।
0: आपने तो अपनी शादी पे भी झंडियां लगाई थी?
1: नहीं, जब 14 अगस्त नहीं था।
0: चलो इसके अलावा तो, बंदा खुशी की झंडियां लगा लेता, शादी मुबारक की झंडियां।
1: नहीं वो आजकल आपको पता है वो पैन वगैरह चले हुए, वो कोई जिसके ऊपर मोर बना होता है वो कोई थम लगाते हैं, उसका तो मुझे नाम भी नहीं आता है क्या है वो, कजनो वगैरह ने किया था। अच्छा। क्या सिस्टम होता है जिसके ऊपर थम लगाते हैं, वही चीजें थी बस। तो फिर जो सेलिब्रेशन होती है वो इसी तरह, और साथ में बेचिस मिलते थे वो होते थे, और काफी ज्यादा चीजें होती थी, और कपड़े वगैरह। लेकिन अभी मैं तो नहीं ऐसा कुछ करती हूँ, लेकिन जो मेरे घर के बच्चे हैं वो, मेरे भतीजा भतीजी, वो सब ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है साथ में। लेकिन बाजे वगैरह जो होते हैं ना उनसे मेरी जान जाती है, मैं कहती हूँ सब कुछ आप करो जो मर्जी करो, लेकिन ये बाजा ये
0: तूफान है, बदतमीजी नहीं होना चाहिए, बाकी आपको जो दिल करता आप सेलिब्रेशन।
1: हाँ लेकिन हाँ बस ये बाजे नहीं बजाने वाले।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप अपना नंबर देते तो सबके सबसे पहले मेरी कॉल होती, मैं तो जिम्मे चौकी लेनी सी, मैं सिर्फ फोन उठाता हूँ। शहीद सफदर सुलेरी कैसे हैं? असद भाई मैं ठीक हूँ, तो मैं सुबह बताऊंगा मैं कैसा हूँ, सुबह आना जरा इंटर्नशिप। सुबह के टाइम भी आजकल ऑन एयर आ रहे हैं जी, आज आया हूँ कल भी आऊँगा मैं इंशाल्लाह, इंटर्न्स के साथ आ रहे हैं। कवल नवाज, कवल नाज कहती हैं बेहतरीन अंदाज गुफ्तगु, बहुत शुक्रिया आपका, आपका हुस्न समात है यकीन जानिए। अगर इस बार झंडियाँ लगाई और बारिश आ गई तो फिर मोए मोए हो, यार ये बड़ा सीन होता था। हमारा घर था 2 मंजिला ही था, लेकिन एक साइड जो बड़ी छत थी ना वो नीचे थी, वो सिंगल स्टोरी थी, और बाकी दूसरी साइड ऊंची थी। उधर से झंडियाँ लगानी ना, और झंडियाँ लगाने के लिए बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़नी है, वो पत्थर बांध के फेंकना, और फिर उधर से मेरी सिस्टर ने पकड़ना फिर बांधनी, या फिर इधर से पकड़ाना उसने लेके जाना, फिर उधर से बांध के फिर तोड़ देनी, फिर इधर से बांधनी, वो एक लंबी एक्सरसाइज हुआ करती थी। और फिर बारिश हो जानी तो रोण का दिल करना, यार इतनी मेहनत की है और उसके बाद ये क्या यार। हाय हाय, सोहेल बास कह रहे हैं झंडियां आजादी पे लगाई जाती हैं, शादी में आजादी कहाँ है। अभी 14 अगस्त पे भी कुछ लोग शादी करते हैं, और मैं सोच रहा था जो 14 अगस्त वाले दिन शादी करते हैं वो बेचारे परेशान होते होंगे, आज मैंने जश्न आजादी मनाना है या नहीं बनाना, यानी कैद होने को सेलिब्रेट करना है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
2: मैं तमन्ना बात कर रही हूँ।
0: तमन्ना?
2: हाँ जी।
0: ओ तमन्ना, और क्या क्या बात है, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: मैं
0: सियालकोट से बात कर रही हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगे आप?
2: आप 14 अगस्त के बारे में बात कर रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं बात
2: मैं उस बारे में कहना चाहूँगी, जैसे आप कहती हो कि अभी आप क्या सोचते हो, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हमारे पाकिस्तान को, ये मेरी आवाज डबल क्यों हो गया?
0: बोले बोले।
2: हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान को फिर से आज़ाद करवाने की ज़रूरत है।
0: अच्छा जी, वक्त हो चुका है 11:25 और आज है जी 5 अगस्त 2026 के सैन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। मैं हूँ आज डॉक्स और प्रोग्राम है नाइट थेरापी, जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुध जुमेरात की शाम। एंड व्हाट आई वाज सेइंग अ बिट अर्लियर कि देखें, कमियाँ कोताहियाँ हर जगह होती हैं और तरक्की का सफ़र इसी तरह से तय होता है। अभी प्रोग्राम जो है ना जी, यहाँ पे बैठा हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे भी चला जाऊँगा तो मेरी तो यही बात हमेशा से रहेगी कि पाकिस्तान के बारे में बात करें, यहाँ किसी शो में या किसी प्लेटफॉर्म में आते हैं तो इसको गैर सियासी अंदाज में देखा करें। पाकिस्तान पहले है और बाकी चीज़ें बाद में हैं, बाकी हर चीज़ बाद में है। और इस तरह की चीज़ें मुझे फिर जो है ना आपकी म्यूट करनी पड़ती हैं, इसके लिए मैं माजत खाऊं। लेकिन बात वही है कि यार, कमियां कोताहियां हर जगह होती हैं, प्रोग्रेस इसी तरह होती है। इब्न खलदून को मैं पढ़ रहा था, इब्न खलदून को अगर आप भी पढ़ें ना, पूरी दुनिया में सोशल फिलॉसफी जो है उसकी चेंज पे वो रिकग्नाइज्ड है और बात भी होती रहती है कि तब्दीली जो आनी होती है, जो एक्चुअल होती है, जो प्रोग्रेस का सफ़र होता है, इट टेक्स टाइम। फ़ौरन ऐसे नहीं होता कि आपने यहाँ पे कुछ चीज़ हासिल की और उसके बाद आप आगे बढ़ा, एक्सेल कर गए और पहुँच गए। आज आपको बड़ी बड़ी दुनिया में बिजनेस के एम्पायर नज़र आती हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग नज़र आते हैं, उन्हें बड़ी डेडिकेशन के साथ वक्त दिया होता है, उनको कई दहाइयाँ लगी होती हैं। सो इट टेक्स टाइम, बहुत देर लगती है आते आते इस लेवल पे पहुँचते। तो खलदून ने ये कहा कि कम से कम 4 नस्लें लगती हैं एक सोच का जाविया बदलने में और चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ने में, कम से कम है। और आप यूरोप की तारीख देखें, आप बड़ी बड़ी अक्वाम जो है उनकी तारीख देखें, तो वहाँ पे भी वक्त लगा इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते। आज आपको बड़ा नज़र आता है कि निगाह जो आपकी चुंध्या जाए खीरा करती हैं उनकी तरक्की, लेकिन वो बड़ा एजिस का सफ़र है। आई रिमेंबर कि अगर हम चार्ल्स द ग्रेट की बात करें, शार्लमैन जिसे कहा जाता है, 572-70 बात है जी ईसवी की, जब मुसलमान आ चुके हुए थे और यूरोप में उस वक्त उसकी हुकूमत थी, बहुत बड़ी एम्पायर थी। पहली दफ़ा उसकी जो दरबार में क्लॉक, घड़ी भेजी गई मुसलमानों की तरफ से गिफ्ट के तौर पे, और जब उन्होंने घड़ी को देखा कि खुद ही चलती है, इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, तो उसके दरबार में मौजूद जितने उसके वज़रा थे उन्होंने शोर डाला कि कोई जादू टोना है, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। सो प्रोग्रेस टाइम लेती है, उन्होंने सदियां लगाई हैं आगे जाने में, फिर आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और अरूज व जवाल का भी एक फ़लसफ़ा है, तो इनको ना भूला करें। आपने और मैंने मिलकर चेंज करना है, आपने और मैंने कंट्रीब्यूट करना है। मुझे वो बात अपने उस्ताद मोहतरम की बड़ी अच्छी लगती है, वो अक्सर कहा करते थे कि एक बदल जाए तो निज़ाम बदल जाता है, एक बदल जाए तो सब ठीक होता है। मैंने अक्सर पूछना कि क्या होता है, तो वो पहले तो समझ नहीं आई, उन्होंने कहना वो बाद में जाके ही टोल्ड अस कि वो एक तुम हो, वो एक मैं हूँ, हमने अपने आप को चेंज करना है। ये बड़ा साइकोलॉजिकली अगर आप देखें ना, इल्मे नफ्सियात कहता है कि दो तरह के रीजंस होते हैं, जिस पे लास्ट टाइम भी मैं बात कर रहा था कि जो आपकी ज़िंदगी में ट्रबल खड़ी कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, वो अपने अंदर कम और बाहर ज़्यादा झांकते रहते हैं, तो उससे प्रोग्रेस नहीं होती। अगर मैं अपने अंदर झांकूँगा प्रोग्रेस तभी होगा। सो लव योर कंट्री एंड टॉक अबाउट इट पॉजिटिवली एंड टेल मी कि हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग, ताकि दूसरे इंस्पायर हों। जैसे आज सुबह मैंने बात की कुछ कॉलर्स आए, उन्हें मैंने कहा जी अच्छा आप फलां काम कर रहे हैं, ईद पे क्या डिस्काउंट लगा रहे हैं, किसी को कोई अपना जश्न आज़ादी पे कोई बेनिफिट दे रहे हैं। एक हमारे पास वो ट्रेलर आए थे सलीम साहब, उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं 200 का देता हूँ जी चलें। और एक हमारे पास हलवाई थे, वो आए बर्फ़ी वाले, उन्होंने कहा मैं 100 रुपये तक का दे सकता हूँ, वो मैं इस महीने में देता हूँ। दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन, दिस इज़ हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। इसलिए ज़रा हेलो वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तारिक भाई
3: जी? सुधीर देना, कैसे हैं? ठीक है,
0: फिट।
3: मेरी 14 अगस्त को बर्थडे है। आप शादी की बात कह रहे थे, शादी कैसे हैं?
0: कैसा लगता है पूरा मुल्क ही आपकी बर्थडे मना रहा होता है।
3: ऐसे ही है, और दूसरा ये कि ऐसे ही है, और दूसरा ये कि देखिए हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर गया माशाल्लाह। हमने इंडिया जैसी कौम को हरा दी है, फाइट में जीत गए हम, पूरी दुनिया में हमारा नाम है।
0: ऐसे ही है जी,
3: इतने ब्रिलियंट बच्चे माशाल्लाह आजकल आ रहे हैं, इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं कि देखिए कहां से कहां तक ले गए हम पाकिस्तान की कौम को।
0: ऐसे ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम वो चीजें नहीं देखते, ये मसला सिर्फ ये इज्तमाही तौर पे हमारे साथ है। आप पाकिस्तान की बात ना करें, आप अपने बात कर लें, मामलात जिंदगी की बात कर लें। हम अपनी जात के बारे में और दूसरों के बारे में भी वो चीजें पॉइंट आउट करते हैं जो हमें प्रॉब्लमेटिक लग रही होती है। हम जो अच्छी चीज़ है उसको नहीं देखते। इवन अगर बैठ के मैं भी अपने बारे में सोचता हूँ ना, कभी आप भी सोचेंगे, तो बहुत सारी जगह पे मैं भी अपसेट हो रहा हूँ यार, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। आई डेफिनेटली फॉरगेट के जो हो चुका है, क्या क्या मैंने अचीव कर लिया, आपने कितना कुछ अचीव कर लिया यार। आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, आप एटलीस्ट तसल्ली से खा पी के सोते हैं ना यार, भूखे तो नहीं सोते। बादशाह जैसी जिंदगी के लिए ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी कोई राया हो, बहुत बड़ा दरबार हो, बादशाह हो जैसी जिंदगी, तो यही आप सुकून से अपना खाते हैं सोते हैं, चिल
3: करते हैं। इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी हमें मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: वैसे बादशाह से कंपेयर करें, उन्हें इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बादशाह के कोल तो मोबाइल भी नहीं थी। बादशाह के कोल तो जहाज भी नहीं थी, लेकिन बादशाह कोल बहुत सारे जहाज होते सन, और दरबार च बैठे हुए।
3: हमारे काफी लोग नहीं आते हैं, साहिदा हो गई, महबूब साहब हो गए, अल्लाह भी रोती हैं,
0: मेरा ख्याल है वो आने की कोशिश करते हैं, शायद आ नहीं पाते।
3: मिस रोजी भी गायब हुई है। चलें, थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू तारिक भाई, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। थैंक यू वेरी मच,
3: थैंक यू सो मच।
0: अच्छा हाँ जी, आके कॉल लेते 042-111-0101 और बात करें हम कि आप 14 अगस्त से पहले क्या करते थे। मेरे पास तो है, मैं अभी आपको बताता भी। हेलो
4: बिस्मिल्लाह करा, वेलकम बिस्मिल्लाह जी, है तू जिन रहमत आए उस्ताद जी, मैं उन रहमत बिस्मिल्लाह करा, मैं सबके गच्छा में कुर्बान गच्छा सोने हो।
0: थैंक यू, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। लाला जी तुसा ने की हाल है?
4: ताजी मैं बीमार हाँ, बीमार हाँ, मेरे वास्ते दवा करे।
0: अल्लाह तुसा नी सेहत दे रहे जी।
4: ऐ मैं गाना गाना रहना, बीमारा नु शफा मिल जांदी है।
0: सुनाए
4: ताजी। पहले मैं तुहानु इत्थे है के अज आला जेड़ा है जनाब अपना माशाल्लाह दुआ करने के, अल्लाह ताला के दुआ करने के, एक ही पैगाम है मेरा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान,
0: इंशाल्लाह जी।
4: तो मैं शोदाई करबला को जिनको क्या नाम है, मैं जबरदस्त अंदाज में खराजे अकीदत पेश करता हूँ शोदा को
0: जी,
4: जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए। और हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम अपने खून का आखिरी कतरा तक जो है उनके लिए हम बहाने के लिए तैयार है।
0: बिल्कुल ठीक
4: इंशाल्लाह, ये पैगाम है मेरा। तो ताजी आपसे बात करना, एक शेर आपकी नजर है, जाता है मैं काट सकता हूँ?
0: जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
4: ओ बड़ी मेहरबानी, मेरे उस्ताद है ना जी साहब। शेर है कि कौन कहता है मैंने तुझे बुला रखा है डॉग,
0: कौन कहता है मैंने तुझे भुला रखा है डॉक्स,
4: डॉक्स मैं पता है शायर भी है ना।
0: हाँ।
4: कौन कहता है मैंने तुझे बुला रखा है डॉक्स, हमने हमने तो तेरी यादों को सीने से लगा रखा है
0: डॉक्टर। मुझे शर्म ही आ जाती जब ऐसी बातें करते।
4: आपको शर्म बहुत आती है, मैं छोड़ता हूँ, टाइम नहीं मिलता आपको, कॉल करता हूँ लेकिन मेरी कॉल नहीं मिलती। तो एक एक भैया आपकी नजर करना चाहता
0: हूँ।
4: कबूतर उड़ते बहके भी, कबूतर उड़ते बहके भी, कबूतर उड़ते बहके नहीं, उड़ते आ जा तू, डाक छोड़ते आ जा तू, डाक छोड़ते आ जा तू, चंद तारे भी ले गए नी।
0: वाह वाह,
4: बड़ी मेहरबानी उस्ताद जी आपका अंदाज जब आप मुझे बता देते, और मैं पता मैं सुबह से लेकर शाम तक वन वन में छाया हुआ हूँ आपकी दुआ से। ये आप मेरे साथ हैं और मैं आपके लिए हमेशा दुआ को।
0: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
4: ये गाता रहता हूँ के बीमारा शिफा मिल जाने।
0: आमीन जी, आमीन। थैंक
4: अगर आप टाइम देते हैं तो मैं दो लाइन में आपकी नजर कर दूं।
0: फिर कर दो जी, जी जी जी जी जी
4: साधु इजाजत है
0: जी,
4: मैं बीमार हूँ ना इसलिए। हाँ,
0: आप बीमार ना भी हो तब भी आप
4: जी जी जी जी। और साहब जी मैं गाना के नजर करना चाहता हूँ
0: जी, करें।
4: ये मेरा बड़ा हिट गाना हो
0: जी
4: गया
0: जी, सुनाए जल्दी जी, सुनाइए।
4: वन वन पे हिट हो गया है, वन वन पे भी मैं गाता हूँ ना
0: जी, सुनाइए सुनाइए
4: जी जी। इस्लामाबाद वन वन
0: जी जी, सुनाइए।

0: सही आपको कह रहा हूँ
1: सादे पोत्र
0: प्यार नाल ना सही गुस्से नाल दी देख लिया
1: आए
0: मारानू जवान मिल जानिए बारानू जवान मिल जानिए प्यार नाल ना सही आपको कह रहा हूँ ताजी
1: जी जी जी जी, जी
0: प्यार नाल ना सही गुस्से नाल देख लिया का बीमारू जब मिल जाती है ये लाइन आपकी नजर आता जी आगे डाक
1: जी
0: ये लाइन आपकी नजर है तेरा दीदार जना साड़ी मजबूरी है आपको कह रहा हूँ ताजी तेरा दीदार जना साड़ी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी
1: है आए, आए।
0: तेरा दीदार जना बड़ा ही जरूरी है वो रोज तेनू तकना साड़ी मजबूरी है प्यार नाल ना सही गुस्से नाल देख लिया कर बीमारू जवाब मिल
1: जाने बहुत शुक्रिया
0: जवाब मिल जाने
1: सर थैंक यू
0: सलाम एक मेरी बेटी है लाहौर से रक्षा बेटी को सलाम और मेरे उस्ताद है ये सलाहकार थे तेर अवान साहब उनको
1: जी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया सर
0: उस्ताद की अगर कोई गलती हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर माफ कर
1: थैंक यू
0: पाकिस्तान
1: कॉलर्स जिन्हें मैं नहीं कर सकता ना दे आर सच स्वीट पीपल तो क्या ओके ठीक है कोई नहीं खैर सबका दिल करता है ना यार अच्छा जी अस्मा है मैसेज 4471 पे चादा बहुत खूबसूरत मुस्कुराते हैं कितों खूबसूरत चेहरा अरे बहुत प्यारा लहजा हसीन बातें कमाल अल्फाज नहीं है मेरे पास कहते हैं जब बंदा मोहब्बत में अंधा हो जाए ना उसे गधा भी हसीन लगने लगता है ऐसे ही होता है बस इतना कहूंगी आप जैसा प्यारा कोई नहीं है ऐसे ही होता है वो ज़िया कहता होता है शुरू में सारे ऐसे ही कहते हैं अल्लाह पाक घर बुरी नज़र से बचाए आपको आमीन थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया मेरा चांद मेरा पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे आमीन जी आमीन एक बात पूछनी थी आपका नाम इतना प्यारा है तो आरजे डॉक्स क्यों रखते हैं बस ऐम ही दिल के वजाहत आरजे वजाहत नवाज आए हमारे सियालकोट के आरजे सलाम किया वालेकुम सलाम कैसे हैं वजाहत आप खैरियत से हैं ठीक हैं सब अच्छा चल रहा है नवाल हैं कहती हैं आवाज़ को ऊंचा करें ऊंचे ऊंची बोले आवाज़ ठीक नहीं आ रही अल्लाह अर्च को मसला तो नहीं आ रहा शाह जी चेक करो ज़रा तक ना जी इसने की प्रॉब्लम आई है और कितना ऊंचा करूं यार फटना शुरू हो जाती है फिर आवाज़ चले अभी ट्राई की है मैंने सलमा राशिद साहिबा हैं डीएचए लाहौर से मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम डॉक्स बेटा वालेकुम सलाम मैडम कैसी हैं आप खैरियत से हैं ठीक हैं आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर योर कॉल अगर आपकी मिल जाए ना कहती हैं लोगों से पूछो जो कहते हैं वतन ने हमें क्या दिया उनसे पूछे आपने वतन को क्या दिया दिस इज द वैलिड एंड द बेस्ट क्वेश्चन क्या आपने वतन को क्या दिया है और जो लोग अक्सर इस तरह की बातें कह रहे होते हैं बहुत वैलिड क्वेश्चन है पाकिस्तान जिंदाबाद मैडम दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग कह रहा आप आ जाती ना तो बड़ा मजा आता रफीक है फ्रॉम पिशावर सलाम सर वालेकुम अस्सलाम आई जस्ट अराइव्ड प्लीज व्हाट्स द टॉपिक टॉपिक है जिसने आजादी का महीना चल रहा है और इसमें पाकिस्तान के हवाले से बात चल रही है एंड आई वाज आस्किंग कि आप किस तरह से मनाते रहे हैं और अगर अब और कल में क्या डिफरेंस है इस पे अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की लेकिन कोई बात नहीं है और मैंने कहा अगर कोई बात नहीं है एटलीस्ट पाकिस्तान से अपने मोहब्बत का इजहार करें एंड टेल मी दैट यू लव योर कंट्री आप पाकिस्तान जिंदाबाद लिख के एटलीस्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे माला मुगल आई है हेलो आजय हाउ आर यू माला आई एम फाइन रजा आलम कहते हैं ये तो बाकियों को भी बीमार करना ऐसी बात नहीं है खबरदार अच्छा तो जिन्होंने अभी सुनना शुरू किया जी, कुछ अगर कहने को नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहें। और आई वुड लव टू रीड योर मैसेज। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एक सिफर एक स्पेस ने अपना नाम और पैगाम लिखें, इसको भेज दें 4471 पर। और इसके अलावा मेरी स्टैटिक पोस्ट है FM 101 लाहौर, सर्च कीजिए FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह मिल जाएगी। एंड RJ.DOX भी सर्च करेंगे, वहां पे भी पोस्ट मिल जाएगी। यू कैन हिट विद योर कमेंट्स, कुछ भी, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट। एंड एक मैसेज आया, मियां जी आई लव पाकिस्तान, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, मेहर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? लास्ट वीक आपका प्रोग्राम नहीं सुन पाई, वेडनेसडे को मेरा भतीजा पैदा हुआ था, बहुत मुबारक हुए, पूरा वीक बहुत बिजी रहा मेरे लिए। कॉलर तो मेरी तरह आपके दीवाने लगते हैं, क्या बात है मेहर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सुबह का टाइम होगा जी 12 से 1, मैं आऊँगा, और यहाँ अगर मैं लेट हो गया तो फिर 1 से 2 आऊँगा, लेकिन 12 से तकरीबन 4 बजे आपको मुख्तलिफ आर्जेस मिल जाएंगे, जहाँ भी मिलेंगे, रहमान भी मिलेंगे, मैं मिलूँगा, फरहान मिलेंगे, मुख्तलिफ आर्जेस मिल जाएंगे। और आयशा सुल्तान हमारी एक इंटर्न है, यहाँ पर मैसेज भी आ रहे हैं उनके, आप देख रहे हैं सुबह के शो ऑन एयर होता है या किस वक्त, तो हम भी खुशी से मेहमान बनते। हाँ ना, सुबह के टाइम आप लोगों के साथ ही चल रहा है ना, आयशा हमारी बहुत अच्छी इंटर्न है। अच्छा जी, डॉक्स आज पता चला आपका कितना बड़ा कैनवस है। अच्छा

बात ये है, कैनवस मेरा बिल्कुल बड़ा है, लेकिन उस पर मैंने आपको बड़ी कैटेगरी के लिए एक चीज बताई है कि आप अपने वतन के बारे में बात करेंगे या पाकिस्तान के बारे में कोई भी बात करेंगे तो मैं इसको टॉलरेट नहीं करूंगा, ना इसे ऑन एयर करूंगा। आप जो मर्जी सोचें, जो दिल करता है कहें, आई डू नॉट केयर अबाउट इट एट ऑल। आई केयर अबाउट माई कंट्री एंड दिस इज द मेन थिंग आई डू, और मेरे लिए इससे आगे बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है। जहाँ जहाँ तक मेरा पैगाम जा रहा है उन सब के लिए, ये बड़ा कैटेगोरिकली आई एम टेलिंग यू, और जिनको मेरी बात बुरी लगी है और जिनको कोई मसला है और जिनकी मैंने कॉल भी म्यूट की, उनके लिए भी बड़ा क्लियर मैसेज है। इफ यू वॉन्ट टू हेट मी, आई वॉन्ट यू टू हेट मी फॉर दिस। इफ यू डोंट वॉन्ट हेयर मी, प्लीज मत सुने मेरा शो। अगर आपको बुरा लगता है मेरा बिहेवियर, प्लीज, ऐसा ही हूं मैं इस मामले में, बड़ा क्लियर हूं मैं। पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा, सॉरी। और जो दिल करता है आप सुनाए, आपने आगे मुझे बातें सुनानी है, जब दिल करता है सुनाते रहे, मैं तो कहता हूँ मुझे सुना दे, SMS करके जितनी दिल करता है सुना ले। पाकिस्तान के बारे में टॉलरेट नहीं करूंगा, सुना। मतलब आप क्यों कहते हैं वो शर्म नहीं आती, ये ऐसे है जी, वैसे है जी, ये है जी, वो है जी। बड़ी वैलिड बात की है मैडम सलमा जी ने, आपने दिया क्या है, उठा देते हैं क्वेश्चन, ये फलां चीज ऐसे है, फलां चीज ऐसे है। भाई टेल मी व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, आपने आज तक क्या दिया, कितनी टेक्नोलॉजी बना के देती है, कौन सी ऐसी चीज दी है जिसपे एतराज करने के लिए अल्फाज है, कुछ काम करने के लिए है, कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं है। सो आपको फिर कोई इख्तियार नहीं है कि आप इस तरह की बात करें, सिंपल सी बात है। आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, मैं तो ऐसे ही। पाकिस्तान के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं, सिंपल। मलिक अबू बकर भाई, आज तो जब्त का OST यार, जब्त का OST आज के टेम्पो पे जाएगा। शहीद की जो मौत है। Don't go anywhere, this is RJ Docs। वक्त हो चुका है 11:45, 5 अगस्त 2026 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आपका मेरे साथ होता है बुधवार जुमेरात की शाम। बुधवार जुमेरात की शाम 10 से 12 बजे तक। Yeah, a beautiful dedication. I'll catch you back after this dedication.

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:51 और आज है 5 अगस्त 2026 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक, और इसके बाद रहमान आपको ज्वाइन करेंगे। अभी यहाँ पे मैं जो है ना फेसबुक के पैगाम पढ़ना चाहूँगा जो स्टैटिक पोस्ट पे मेरी आ रहे हैं, वो लास्ट टाइम मैं मिस कर गया और मुझे इसका बहुत दुख हुआ जो बाद में मैंने रीड किए। चाहे वो जितने भी आए, आई शुड ऑल्सो रीड दैम एंड नाउ लेट मी रीड दैम। बुरी बात है, चलो खुल जाओ सिम सिम। हेलो हेलो हेलो, साहब रफीक साहब लाहौर से मैसेज करती हैं, माइंड थेरापिस्ट। हेलो गाइंस गाइंस, अच्छा साहब रफीक साहब साहिबान इस्लाम किया, वालेकुम सलाम। आज डॉक्टर 14 अगस्त को का महीना, बहुत अगस्त का महीना बहुत पसंद है। चाइल्डहुड से कॉलेज टाइम यूनिवर्सिटी टाइम तक ड्रेस ग्रीन एंड वाइट पहना, झंडियाँ भी लगाते थे दीवार पर, दिया जलाते थे, कैंडल भी जलाई जाती थी। ये बात आपने याद कराई ना, चीज़ें भी बनती थी 14 अगस्त की खुशियाँ एकेडमी स्टूडेंट्स के साथ सेलिब्रेशन करनी। बिल्कुल सही कहा है। आई रिमेम्बर के हम घर के ऊपर जाके, मैं और मेरी बहनें, हम सारी ना घर के ऊपर जाते थे और कैंडल्स लगाया करते थे रात को, पाकिस्तान का झंडा लगाना और उसके इर्द गिर्द कैंडल्स लगानी, कुछ लोग दिया जलाते थे और पूरा वो जगमग सीन होता था। गली मोहल्लों में तो आज भी इस तरह का सीन चलता, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सोसाइटीज़, मॉडर्न सोसाइटीज़, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं ना, वहाँ पे इस तरह को पता नहीं चल रहा होता। आसमा कहती हैं, चांद कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसे मेरी मोहब्बत को डिग्रेड कर सकते हैं? 4 साल से आपको सुन रही हूँ, मैसेज अब किया है, इसका मतलब ये नहीं, स्टार्ट में मोहब्बत तो हमेशा से थी, आप प्यारे तो हमेशा से लगते हैं, आप ने बताया नहीं आज डॉक्स कहलवाने की वजह। मुझे नाम अच्छा लगता था, मैंने बहुत दफ़ा बताया कि यूनिवर्सिटी में चैट रूम बनाया हुआ था, हम सारों ने कंप्यूटर स्टडीज़ करते थे, तो वहाँ पे पैराडॉक्स का वर्ड था एक, नेक यूज़ करता था, तो दोस्तों ने डॉक्स कहना शुरू कर दिया चैटिंग में, आई लव दैट नेम, सो मैंने फिर वही यहाँ पर आज डॉक्स रख लिया। और बिल्कुल आपकी मोहब्बत की मैं वो कदर करता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था इंसान को जो बंदा पसंद हो ना, वो उसे सबसे अच्छा लगता है, चाहे वो जैसा भी हो। सो मेरा तो ये कहना है। अभी आपकी मौजूदगी में देखें, एक मुझे मैसेज भी आया जिन्होंने कहा आप ऐसे, आप वैसे, आप ये, आप वो, आपने मेरी कॉल म्यूट की, तो नफरत करने वाले भी होते हैं ना। और फिर लिखा हेट यू ऑलवेज, ओके फाइन, नो वरीज, आई डोंट माइंड इट, इफ यू डोंट लव माय कंट्री आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक and I won't care at all. Marina Bilal ka message hai Facebook pe, kalb e momin hai, salam kiya, wa alaikum salam sir, kaise hain? I'm fine, Nazir Khoso hai, thank you very much, kalb e momin dil Pakistan, hum sab ki shaan Pakistan, love you Pakistan, bilkul aisi hai ji, we love our country, without our country there is no point of living. Raza Chaudhary sahab ne salam kiya, wa alaikum salam sir, kaise hain Raza sahab, aap khairiyat se? Shamsi listener club ki taraf se Kawal Naz sahab ne salam kiya hai ji, दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी मुस्कुराहटों को सलाम करते हैं, बन जाए आपकी ज़िंदगी नेमतों से जन्नत, ये दुआ हम सुबह शाम करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, जीवे जीवे पाकिस्तान। रियाज भट्टी साहब शाहदरा से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जला के रखना कमाल ये है, जरा सी लर्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, लबों पे अपनी वो मुस्कुराहट सजा के रखना, कमाल ये है। वाह वाह, बहुत अच्छा। वसीम अवान साहब, उनका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। रजा साहब, बहुत अच्छी पोइट्री भेजी आपने, थैंक यू वेरी मच जी। एंड आगे भी देख लेते हैं, रियाज भट्टी साहब हैं, फिर कवलनाथ साहिबा हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के पैगामात मैंने कहा शामिल करूं, आप लोगों के नाम भी होने चाहिए, पैगाम भी होने चाहिए। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
1: मैं साजिदा बात कर रही
0: हूं। कैसी हैं साजिदा आप? खैरियत से? ठीक हैं?
1: हाँ जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं?
0: मैं भी ठीक हूँ जी।
1: और शो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप।
0: अच्छा, थैंक यू वेरी मच।
1: हाँ जी,
0: बहुत
1: शुक्रिया। आपने तो एकदम से बचपन में लेके चले गए हैं, बचपन की यादें वो सारा
0: मेरे सामने एक मैसेज है, अली अब्बास है, कहते हैं आज डॉक्स आज लास्ट शो तो नहीं कर रहे, बस कर पगले रुलाएगा क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद। है ना? है ना, लास्ट को ही याद समझ यार, मैं नहीं आऊंगा कल से। कल से आपका काम पता क्या अली, 10 से 12 जो है ना बुध जुमे रात को नहीं सुनना, आपने समझना डॉक्स का लास्ट शो था। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रही है साजिदा?
1: मैं कह रही हूँ बचपन में मैं तो ना 14 अगस्त को अच्छे से मनाती थी इस दिन को।
0: अच्छा जी।
1: तो जैसे झंडिया लाने, बैज लगाना और मुंह पे कलर लगाने।
0: हाँ, मुंह पे रंग लगाना, झंडे बनाने, मैं खुद बनाया करता था।
1: हाँ जी बिल्कुल, और
0: मैं अपने दोस्तों के मुंह पे भी बनाया करता था।
1: और पूरा झंडा बत्ती जो बैज लगाना, वो घर में भी ना झंडिया भी लगाते थे और वो रूले होते थे वो लगाते थे दरवाजों के सोनों पे।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ,
1: पूरे घर को सजाते थे, पूरा यानी सारी रात सजाते रहते थे।
0: हाँ,
1: और सुबह बारिश हो जाती थी,
0: सुबह बारिश हो जाती थी।
1: मामा ने डांटना आप ना करो बारिश हो जानी है, एक तो बारिश का डर, ऊपर से मेरे भांजे वगैरह ना फाड़ देते थे बच्चे।
0: हाँ,
1: उनको भी बचाती थी झंडिया।
0: तो
1: कहती थी ये 14 अगस्त वाले दिन ये निकाल दो फिर चाहे फाड़ देना।
0: हाँ,
1: तो बड़ा वो ना तंग करते थे बच्चे।
0: खैर मेरे तो भी पांजे पुंजे नहीं सी, ऐसी तो एंजॉय कर दे रहे हैं। अभी भी मेरी रूटीन ये है कि मैं अभी झंडा लगा लेता हूँ, मैं चढ़ता हूँ, चढ़ के चढ़ा झंडा लगा दी दा।
1: और
0: मेरे भांजे आते थे,
1: और आपने नाम का पौधा,
0: भांजे आते थे ना, अभी भी अगर आ जाए तो भांजियां तो खैर मेरी आती हैं, वो तो पीछे पड़ी रहती हैं झंडियां लगानी है, वो लगा लगू लेती हैं, मेरे से जिद करके लगवा भी लेती हैं। भांजे आते थे तब हम ज्यादा करते थे, अब वो बड़े हो गए ना, हूं अपने घर ही रहते ने। चले जबरदस्त,
1: हम सबको चाहिए अपने नाम का एक एक दरख्त लगाना, पौधा लगाना।
0: ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, अपने नाम का एक एक पौधा लगाना चाहिए।
1: हमारा मुल्क ग्रीन होगा तो बीमारियां भी कम होगी।
0: हम अपने नाम का पौधा नहीं लगाते, हम पता क्या करते हैं, किसी तना और दरख्त पे जाके ना किसी का नाम जरूर लिखाते हैं अपने नाम के साथ। कोई अच्छा दरख्त नजर आता है ना किसी की याद में, हम बैठे होते हैं, हम क्या करते हैं उस दरख्त के ऊपर पहले अपना नाम लिखते हैं, फिर आगे किसी और का नाम लिख देते हैं।
1: अगर किसी की याद ना आए तो फिर नहीं लिखते।
0: नहीं फिर कौन लिखता जी, कोई नहीं लिखता। चले थैंक यू वेरी मच साजिदा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। हेलो, साजिदा जी की कॉल गई। ओके, मरीना बिलाल आपका सारिम है, सलाम भाई, हाउ आर यू? आप बताएं सारिम कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक हैं, बखैर आगले संगा हाल ले हाल, अच्छे हैं, अच्छे हाल हैं, आप बताएं आप कैसे हैं। और थैंक यू वेरी मच जी। चले मैंने जानबूझ के ना आज बातें नहीं की, थोड़ा सा आपको छेड़ा कि आप लोग बात करते, और पाकिस्तान जश्न आज़ादी से पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरे जहन में बहुत सारी प्लानिंग चल रही होती थी। हम लोग अपनी गली से जाया करते थे, और गली से जाने के लिए हम चंदा इकट्ठा करते थे, पैसे इकट्ठे करने, हाँ भाई थोड़े थोड़े जाके सारे गली वालों का दरवाज़ा खटखटाना, और फिर जो है ना हमने पैसे इकट्ठे करने और उसके बाद फिर चीज़ें लेके आनी, हमने वो लड़ियाँ होती थी वो लेके आनी, हमने जाके झंडियाँ लेके आनी, और फिर एक्साइटमेंट ये होती थी रात सारी जो है ना गली में हमने लगे रहना, पूरी अपनी गली को सजाना। ये उस वक्त हुआ जब हमने तकरीबन मैट्रिक कर लिया था, लेकिन उसके अंदर से ना कुछ पैसे खा पी लेते थे हम, फिर हम याशी भी कर लेते थे, रोटी भी तो खानी होती है ना, फिर मुसारिफ में तो ये चीज़ें आ जाती हैं, क्यों जी रहमान पायन नहीं आते चंदा चंदा के मुसारिफ में। पौधे जरूर लगाए फराब जाल साहिबा कह रही हैं, खासकर कराची नीड्स इट मोस्ट, अ गुड मैसेज, वेरी गुड मैसेज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नीला जी? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं
2: जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, पता लग रहा है कि 14 अगस्त का जो है ना महीना शुरू हो चुका है
0: ना।
2: हाँ जबरदस्त, बहुत,
0: मैंने कहा जी फील पहले डेवलप होनी चाहिए,
2: बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, और ये फील हमेशा रहनी चाहिए अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए,
0: बिल्कुल।
2: और ये जो कहते हैं जी पाकिस्तान ने क्या दिया, भाई बिल्कुल ठीक बात है कि आप लोगों ने क्या दी है, आपके पास तो बड़े मौके हैं दी, बहुत मौके हैं, अपने अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ हर वक्त करते रहे,
0: और मुल्क के लिए करना यही है ना, अगर आप बड़ी कोई इन्वेंशन साइंसदान नहीं है, आप फलसफी नहीं है, तो आपके हम वतन तो है ना, उनकी मदद कर सकते हैं आप, तो आप मुल्क के लिए ही काम कर रहे हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों के काम आते हैं।
2: एग्जैक्टली, तो ये होना चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि सबको मेरी तरफ से एडवांस जश्न आजादी मुबारक, और हम लोग भी बड़ा मनाते थे ऐसे ही झंडियां इकट्ठी करने, मैं तो रॉक्स झंडियां बाद में जब उतार, अगले दिन ना मैं से उतार होती थी, वापस करो वापस करो, तो मैं उतार उतार के तो सारी संभाल संभाल के, और फिर मैं प्रेस करती थी उनको,
0: बिल्कुल सही है,
2: प्रेस करके तो मैंने इकट्ठा कर करके रखती थी ना, पहले हम लोगों ने वो बनानी ना, वो उसकी आटे की वो बना के पतली पतली सी, और डोरी बीच में लगा के झंडियां जोड़नी, फिर लगानी, फिर मेरी कजने इकट्ठी हुई थी, हम इकट्ठे होते थे, फिर एक दिया जलाते रखते थे, एक मोमबत्ती, एक दिया एक मोमबत्ती, हम ऐसे पूरी दीवार सजाते थे,
0: बिल्कुल सही,
2: पूरा टेरेस भरते थे झंडियां लगा लगा, उस तो अल्लाह ताला साढ़े ते हर हो रहमत कर देने, ऊपर से बारिश आ जाती थी,
0: बारिश वाला बड़ा सीन होता था, सही कह,
2: बड़ा सीन होता था, फिर स्कूल वालों ने बुलाया होता था, हम स्कूल जाते थे और वहां पे भी हम पूरा मिली,
0: 14 अगस्त को स्कूल जाना मुझे भी बहुत बुरा लगता था, एक दिन तो छुट्टी कर लेते,
2: आप देखिए हम लोग जाते थे ना तो 14 अगस्त को बारिश जरूर होती होती थी, तब मुझे याद है,
0: मतलब लाजमी हो जाती थी, थोड़ी बहुत हो गई, थोड़ा सा कुछ
2: नहीं, एक दफा तो इतनी ज्यादा हुई असद के, हम लोग वापसी पे ना हम लोगों ने जूते शॉपरों में डाले,
0: शॉपरों के जूते से मुझे याद आ गया ये किस्सा, मैं सुना के बस इजाजत लूंगा, रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं, रहमान साहब भी आज दूसरी दफा
2: है, मैं कह रहमान की 14 अगस्त मना रहे हैं,
0: हां रहमान साहब आ जाओ, तुम भी आ जाओ, पाइना आ जाओ
2: जी, बता रहे थे आप कुछ,
0: कम टू द आहो रहने दो,
2: मैं कह रहमान की 14 अगस्त मना रहे हैं,
0: हां रहमान साहब आ जाओ, तुम भी आ जाओ,
2: जी बता रहे थे आप कुछ,

0: अंग्रेजी अंग्रूजी और ये वो, फिर बताना भी होता मैंने क्या पहना है और क्या नहीं पहना। पिंड से बारिश हो जानी, तो बारिश हो जाए तो फिर पानी खड़ा हो जाता है, कीचड़ बन जाता। तो दादी कहती है उन्हें अपनी जुत्ती हथा च पाई तो नंगे पैर टुरी जा रही है। क्या है? मैं कहा जुत्ती मेरी बड़ी महंगी है, खराब हो जाएगी। बाजी स्लीपर पैरों च पा लास्ते ने। और वो आगे से दादी मेरी बड़ा हंस के सुनाती है, कहती है वो जो बंदा था ना वो नाम सी बूटा, बूटा बूटे पा, बूटे ने उन्हें कहा कि बाजी ये जो स्लीपर है ने पैरों च पान वास्ते ने, कहा मेरे भाई बूट। दादी हमें सुनाती है कि बारहों आई सी बड़ी अपने वालों मुहजब हो गई ना, उन्हें बूटा नहीं कहा, उन्हें कहा भाई बूट। मेरी स्लीपर बड़े महंगे आए ने, पैर तो उप जाएंगे, जुत्ती दोबारा सही नहीं होनी।
1: आप हमें पैर जख्मी हो जान होते। तो नहीं, हम लोग भी ना शॉपरों में जूते डाले हुए हैं, सर पे शॉपर डाले हुए हैं, और अपने कपड़े ना वो पांचे उठाए हुए गिट्टों तक ऊपर और जा रहे हैं पानी में निकलते हुए, इंजॉय कर रहे हैं और साथ में नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद,
0: पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है,
1: जबरदस्त, बड़ी बड़ी।
0: थैंक यू वेरी मच अनिला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
1: बोल रहा हूँ
0: जी जी, बोले बोले बोले, थैंक यू वेरी मच।
1: मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा

0: से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान।
1: बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच नीला
0: जी,
1: थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वक्त हो चुका है 12:08 और यहाँ पे मैं इजाजत लूंगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच। इंदाज रहमान आ चुके हैं और अभी ये आपके साथ हैं, डोंट गो एनीवेयर, इनको सुनिएगा जी। और आपकी अभी तक टांग जो है उसका मसला हल नहीं हुआ, छिपकली आपकी टांग के अंदर घुस चुकी है, बस मैं तो आपसे यही कहूंगा कि चुप कर जा, कुछ बोली ना, जो होंड दे होंड दे। कल मिलते हैं जी 10 से 12 बजे, ओके, वेल एंजॉय इंशाल्लाह टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।

0: 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सुबह काजिब है फिजा में जुगनुओं की रोशनी का शायबा है, और जबां पर कच्चे पक्के ख्वाबचों का जायका है। ये सुहाना वक्त जिसमें सब्ज आंचल ओढ़कर चलती हवा भी खुशबुओं के दामनों पे पांव रखती, और दरख्तों के धुले पत्तों शगुफ्ता टहनियों से राज की सूरत गुजरती जा रही है। ये सुहाना वक्त तुझसे गुफ्तगू का वक्त है, लेकिन अभी तक फोन की घंटी पर एक संगीन खामोशी का पहरा है। घड़ी की सुइयां सीने में खंजर की तरह चुभने लगी हैं, वक्त कांटे की तरह हलकूम में अटका हुआ है। बस एक हेलो सुनने के लिए। बस एक हेलो सुनने के लिए। हाँ, लज्जत एहसास से कुर्ब यार में डूबी हुई बस एक हेलो सुनने के लिए। जिस्मो जान का हर मसाम अब मुंतजर है, लेकिन ऐ जाने जहां क्यों खामोशी है, क्यों ये धड़कन सीना खाली की मेहराबों में टेलीफोन की घंटी की सूरत थम गई है। क्यों तुम्हारे हाथ की पोरों तक आकर मुझसे बात करने की तमन्ना जम गई है। इन गुलाबी पत्तियों जैसी सुबक पोरों में मुझसे बात करने की तमन्ना को जगा। डायल घुमा जाना कि सीने में अटकी हुई धड़कन चले, घंटी बजे फिर देर तक और दूर तक शबनमों से तर सावन गिरे। डायल घुमा जाना।

प्रोग्राम में शामिल रहती हैं बहुत सी बातें, और आप तो जानते हैं हर बात का आगाज एक ख्याल से होता है। ये ख्याल ही तो है जो अल्फाज के ताने बाने को जोड़ता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ख्यालात से होते हुए अल्फाज का रूप धार लेती हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मंजिल तक पहुंचने की जुस्तजू में नामुकम्मल अधूरी यौलीदा दामन रह जाती हैं। इनमें आंसुओं की वो कतारें भी शामिल हैं जो मन के कैनवस पे किसी खास का धुंधला शख्स बनाती हैं, मिटाती हैं। और हर वो ख्याल जो दर्द की शिद्दत की कैफियत में खुदी तक पहुंचा देता है, अपने आप से मिलवा देता है, हकीकत का रास्ता दिखला देता है, इस प्रोग्राम में शामिल रहता है। आज के प्रोग्राम में भी बहुत सी बातें शामिल रहेंगी। कोई ना कोई टॉपिक होगा जो किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ ख्यालात मुख्तलिफ सिलसिलों तक लेता हुआ जाएगा हमें, और हो सकता है कि उस एक टॉपिक की वजह से हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर पाए, उस एक सवाल की वजह से हमारे दरमियान मुलाकात हो पाए, हमारे दरमियान बात हो पाए। सो आपने कहीं जाना नहीं है, मैं बस एक कलाम आपके लिए प्ले कर रहा हूं प्रोग्राम के आगाज में। मेरा दिल चाह रहा है काफी लंबे अरसे के बाद छाप तिलक सुनने को। आबिदा परवीन और राहत फतेह अली खां की खूबसूरत आवाज और

रात का दरमियाना पहर, बिल्कुल दरमियान में है हम इस वक्त। होना ऐसा ही चाहिए। ये राइट और लेफ्ट वाली साइड पे जो लोग खड़े हैं, डरना नहीं चाहिए। सिराते मुस्तकीम सबसे बेहतर है। ये जो दाई साइड वाले हैं, ये कैसे दाई साइड वाले हैं, और ये जो बाई तरफ हैं, क्यों डरना कि ये बाई तरफ हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा है आपका, सिर्फ समझने की जरूरत है। अपनी जात को पहचानने की जरूरत है। मुझे लगता है आप अपनी जात को पहचानने की तरफ मेरे साथ मिलकर कदम जरूर बढ़ाएंगे। राहत फतेह अली खां और आबिदा परवीन साहिबा।

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

बहरहाल दोस्तों, सारे आलम में अजीब सी एक शोर की कैफियत है। ऐसा लगता है कि जैसे बाहर भी हर तरफ आवाजें ही आवाजें हैं। कहीं पे काम करने वालों की आवाजें, कहीं पे लोगों की आवाजें, मोबाइल की आवाजें, हंसी, गुफ्तगू, मुलाकातें, मसरूफियत, ये सब ऐसी चीजें हैं जो सारे दिन हमारे रूटीन का हिस्सा होती हैं और एक ऐसा शोर पैदा करती हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें अपने मन की आवाज, हमें हमारे अंदर की आवाज सही से सुनाई नहीं देती है, हम तक पहुंचती नहीं। लेकिन ये जो रात का समय होता है ना, ये जो रात का वक्त होता है, खास तौर पे ये दरमियाने रात का वक्त, ये बड़ा अजीब वक्त होता है। ये जो रात है ना, ये इंसान को अपने सामने लाकर खड़ा कर देती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि सबसे ज्यादा बातें रात को हमें समझ में आती हैं। सबसे ज्यादा एहसासात जब शोर की कैफियत नहीं होती तब हमें आ लेते हैं। दिन की रोशनी में बहुत कम है कि हमारे एहसासात हमारी जबान तक पहुंच पाए। जब अंधेरा होता है, आंखों को कुछ इधर उधर नजर नहीं आता, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस वक्त इन दो मॉनिटर्स के अलावा मुझे पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और इनकी ब्राइटनेस इतनी स्ट्रांग है कि मेरी आंखों को चुंधिया दे रही है, और बहुत अच्छा है कि मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे नजर नहीं आता तो मुझे बहुत ज्यादा नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे आप सब लोग बहुत आराम से, बगैर किसी डिस्टॉर्शन के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी परेशानी के, मुझे आराम से सुन रहे हैं। रात में ये बड़ी खासियत है, अंधेरे में ये बड़ी खासियत है। कुछ बातें रात को ज्यादा याद आती हैं, कुछ चेहरे, कुछ लहजे, कुछ जुमले, लोगों के रवैये, और कुछ ऐसी बातें भी जो हमने कभी किसी से कही नहीं है। ये सब बातें रात को बहुत ज्यादा समझ में आती हैं। बहरहाल, आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं अधूरी बातें, यही वो जगह है जहां हम मुकम्मल बातें करने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को परफेक्ट जाहिर करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जिंदगी खुद भी तो कहां मुकम्मल होती है, खुद भी कहां परफेक्ट होती है। कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो बयान से बाहर होते हैं, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग हमसे दूर नहीं जाते, वो सिर्फ हमारे अंदर एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हम बार बार जाकर खामोश हो जाते हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि आज की रात हम उसी खामोशी के करीब बैठें। लेकिन ये जो खामोशी है ना, ये जो आज का टॉपिक है, ये कोई आम नहीं है। ये वो खामोशी है जो अक्सर गुस्से के बाद पैदा होती है, वो लम्हा जब इंसान के पास कहने को बहुत कुछ होता है मगर वो कुछ भी नहीं कहता, वो सामने बैठे शख्स को बस देखता है, फिर नजरें चुरा लेता है, लब खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, अल्फाज जहन में होते हैं मगर जबान से अदा करने का मन नहीं चाह रहा होता, और फिर इंसान कह देता है मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा। बाज़ औक़ात ये एक जुमला नहीं होता, ये एक पूरी की पूरी अंदरूनी जंग होती है।
क्योंकि गुस्सा हमेशा चीखता नहीं है, कभी कभी गुस्सा खामोश भी हो जाता है। गुस्सा हमेशा हाथ नहीं उठाता, कभी कभी आंखें फेर लेता है। बाज़ोकात गुस्सा आवाज बुलंद करके अपनी वक्त साबित करने की कोशिश नहीं करता। गुस्सा कभी कभी बिल्कुल खामोश हो जाता है और यही खामोशी जो गुस्से के अंदर हमें महसूस होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान की सबसे मुश्किल सूरत हाल होती है। नफ्सियाती तौर पर भी और मुख्तलिफ कैफियात की सूरत में भी इसको बयान किया जा सकता है। हम आम तौर पर यही समझते हैं कि गुस्से में इंसान ना बहुत ज्यादा बोलता है, चीखता है, शिकायत करता है, इल्जाम लगाता है, लेकिन हर इंसान का नर्वस सिस्टम गुस्से का जवाब एक ही तरह नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है किसी का जिस्म लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, किसी का भागने के दिल चाह रहा होता है और किसी का जिस्म जैसे रुक जाता है। आवाज अंदर ही कहीं फंसी रह जाती है, आंसू बाहर की तरफ आंखों से बाहर नहीं गिरते, वो अंदर की तरफ गले में अटक जाते हैं। फिर रुंधा हुआ गला, आवाज रुधी हुई महसूस होती है। आवाज ऐसा लगता है जैसे कहीं अंदर फंस गई है, सही से बाहर निकल ही नहीं पाती। अल्फाज बिखरे हुए महसूस होते हैं, जहन एक ही वक्त में हजारों बातें सोच रहा होता है, मगर जबान बिल्कुल गंग होती है, एक भी लफ्ज अदा नहीं कर पाती। ये खामोशी बाज़ोकात कमजोरी नहीं होती, ये जहन का अपने आप को बचाने का एक तरीका भी हो सकती है। इंसान का दिमाग खतरे के लम्हे में हमेशा मुख्तलिफ अंदाज से काम करता है। कभी कभी वो बिल्कुल खामोश नहीं रह पाता, वो किसी ऐसे को तलाश करने की कोशिश करता है जो उसकी खामोशी को पढ़ पाए, जो उसकी जो आवाज गूंज नहीं रही उसको सुन पाए, खामोशी में भी उसकी आवाज को सुन पाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान लड़ पड़ता है, लेकिन कभी कभी वो बचकर निकल भी जाता है, कभी कभी खुद को साकत कर लेता है, बिल्कुल बिल्कुल साकत। वो लहरें जैसे साकत हो जाती हैं, समुंदर एकदम साकिन हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब तूफान आना हो, जब कोई बहुत बड़ा सानेहा होना हो, तब भी साकिन हो जाया करता है सब कुछ। हवा बड़ी मधुर और ठंडी ठंडी ऐसा लगता है चल रही है, लेकिन रुकी हुई होती है उस लम्हे। बहरहाल ऐसा नहीं होता हमेशा कि गुस्से में खामोशी के साथ बैठा हुआ इंसान बेहिस हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है कि जो इंसान गुस्से के अंदर खामोश बैठा है, उसके अंदर जज्बात की एक पूरी कायनात टूट रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना कुछ कहना चाहता हो लेकिन उसे समझ ही ना आ रहा हो कि आगाज कहां से करना, शुरू कहां से करना है। हो सकता है, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि वो ये बात जरूर जानता हो कि अगर उसने इस लम्हे बोलना शुरू किया तो वो कोई ऐसी बात कह देगा, कुछ ऐसा बोल देगा जिसे बाद में तीर वापस नहीं आ सकता, कमान से निकला हुआ इसी तरह से अल्फाज वापस नहीं ले पाएगा, वापस नहीं आ पाएंगे, और शायद इसलिए वो खामोश हो जाता है। वो अपनी जबान को रोक लेता है ताकि ये जो रिश्ता है ना, जो उसके लिए सब कुछ है, मुकम्मल तौर पर टूट ना जाए, उससे जुदा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना अदा हो जाए जो बाद में बहुत भारी हो जाए, जिसका बार उठाना मुश्किल हो जाए। यहां खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती, ये बाज़ोकात सेल्फ कंट्रोल बन जाती है,
वो जो एक ब्रेक होता है ना वो बन जाती है। इंसान का बाज़ोकात एक्शन एक छोटा सा फासला पैदा कर देता है और फासला इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि मीलों सदियों फिर नूरी सालों की मुसाफत पे चला जाता है, लाइट ईयर्स, जिसको तय करने का अभी तक साइंसदान कोई ठोस मुशाहिदा नहीं कर पाए, तजुर्बा नहीं कर पाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ब्रेक होती है, ये जो फासला होता है, ये रिश्ते को बचा भी लेता है। वो जो गुस्से में खामोश बैठा है, जिसको उकसाने पर भी वो बोल नहीं रहा है, वो खामोश है, चुप है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो बचाना चाहता है, रिश्ते को बचा लेना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है, यस, ऐसा भी हो सकता है।

मुझसे ना एक लड़की बहुत दिनों से फरमाइश कर रही है, बार बार बार बार फरमाइश करती है और मुझसे कहती है कि आपने मेरी फरमाइश पूरी करनी है या नहीं करनी है। और ऐसी सूरत हाल में वो ऐसा भी करती है कि धमकियां भी बाज़ औक़ात दे देती है कि फिर मैं सुनूंगी नहीं, फिर मैं प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनूंगी, फिर प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगी, मैं मैसेज नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। तो चलें,

भले दिनों की बात है, भली सी एक शकल थी, ना ये कि हुस्ने ताम हो ना देखने में आम सी, ना ये कि वो चले तो कहकशां सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब, फिजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छांव थी, वो सर्दियों की धूप थी, न मुद्दतों जुदा रहे न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता वफा पे जिद, न ये कि इज़्ने आम हो, न ऐसी खुश लिबासियां कि सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लुफी कि आईना हाया करे, न इख्तलात में वो रम के बदमजा हो ख्वाहिश है, न इस कदर सपुर्दगी के जिच करे नवाजिश है, न आशकी जनून की कि जिंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन की दोस्ती खराब हो। कभी तो बात भी खफी, कभी सुकूत भी सखुन, कभी तो किश्ते जाफरा, कभी उदासियों का बन, सुना है एक उम्र है मुआमलाते दिल की भी, सुना है एक उम्र है मुआमलाते दिल की भी, विसाल जा फिजा तो क्या फिरा के जा गुसल की भी, सो एक रोज क्या हुआ वफा पे बहस छिड़ गई। सो एक रोज क्या हुआ वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूं वो मेरी जिद से चिड़ गई, मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरज हवस कहे, शजर हिजर नहीं कि हम हमेश पाबा गिल रहे, न ढोर है कि रस्तियां गले में मुस्तकिल रहे। मोहब्बतों की वुस्सतें हमारे दस्तों पा में हैं, बस एक दर से नस्बतें सगाने बावफा में हैं, मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं, तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं, न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे जौम ही, जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी, सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी।

0: लेकिन ऐसी जगह जहां पे आप ज्यादा पावरफुल नहीं हैं और दूसरा भी नहीं है, या फिर आप बहुत पावरफुल हैं लेकिन फिर भी आप खामोश हो। क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या वजह है खामोश होने की? कभी कभी इंसान गुस्से में खामोश हो जाए तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है, क्यों खामोश हो जाता है, बोलता क्यों नहीं, बताता क्यों नहीं? टेलीफोन लाइन पे आपकी कॉल्स जो है वो मैं रिसीव करने वाला हूं। आपको मौका देने वाला हूं कि आप अपने मन की बात मुझ तक पहुंचा पाएं, अपने दिल की बात मुझे सुना पाएं। लेकिन अगर टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, इस प्रोग्राम के टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यकीन करें, मैं पहले से माजरा चाहता हूं, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं टॉपिक के ऊपर बात करूं आपसे। बहुत अरसा हुआ आपसे टॉपिक के ऊपर सही से खुलकर, जैसे मैं बहुत ज्यादा आपसे बात किया करता था, और ऐसा बहुत अरसे से नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं चाह रहा हूं आपसे टॉपिक पे खुलकर बात हो। लेकिन इख्तिताम पे आप जानते हैं अधूरा छोड़े जाता हूं, मुकम्मल नहीं करता टॉपिक को। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0421100101, हमारे और आपके दरमियान राब्ते का नंबर है। जब इंसान गुस्से में खामोश हो जाए तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है, किस वजह से वो खामोश हो जाता है, ये मैंने आज आपसे सवाल पूछा। टेलीफोन लाइन पे आपकी पहली लाइव कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या है जनाब?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत करम है जी। कौन बात कर रहे हैं
1: जी? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, पेशावर से।
0: जी अली भाई, क्या कहना चाहेंगे?
1: मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी कॉल पहले मिल गई।
0: हाँ, ये कहा जा सकता है। सलामत रहें, सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच।
1: अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे और जिंदगी दे।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
1: आपको दे कि आप हमेशा प्रोग्राम करते रहे।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: गुस्से में इंसान खामोश हो जाना, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा फायदा है।
0: दुनिया का सबसे बड़ा फायदा है इसमें?
1: बहुत बड़ा फायदा है।
0: अच्छा।
1: अगर जो बंदा गुस्से पे कंट्रोल कर ले, और आपने अगर कभी इस चीज को नोट किया है या नहीं, लोग जो सुन रहे हैं, अगर कोई बंदा गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है और आप उसे जवाब नहीं दे रहे, वो और भी चिल्लाएगा, और भी शोर करेगा। वो सोचेगा कि यार ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, उसे और गुस्सा आएगा। तो खामोशी में जो है ना, इसमें बहुत बड़ा फायदा है। हमारे नबी करीम ने भी फरमाया है, हज़रत अली अलैहि सलाम ने।
0: ऐसा नहीं हो सकता कि, बात को आपकी काटना नहीं चाह रहा, लेकिन जब वो ये सोच के गुस्सा और ज्यादा कर रहा है कि ये बोल क्यों नहीं रहा, तो उसको ये बताया नहीं जा सकता कि अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं, तो अभी मैं जवाब नहीं देना चाह रहा, ताकि उसकी गलत फहमी दूर हो जाए कि ये खामोश इस वजह से नहीं है कि मैं, मेरी बात इसको सुनाई नहीं दे रही, ये खामोश इस वजह से है कि इस वक्त मैं गुस्से में हूँ, शायद उसका गुस्सा जाहिल हो जाए, चला जाए।
1: जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बाजे वो ऐसे होता भी है, आप खामोश हो जाएं तो दूसरा बंदा भी सोचता है कि यार मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ तो वो खामोश है, तो छोड़ो बस, दफा करो,
0: छोड़ दो।
1: कैसे भी हो जाते हैं, हाँ छोड़ो, वो नहीं बात कर, अपनी वो मेरे उस जो गुस्सा है, जो मेरे अंदर जो लावा उबल रहा है, उसका कोई वो नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो बस ठीक है, तुम भी इग्नोर कर लो, खत्म बात। तो उसमें फायदा हो जाता है, क्योंकि बात बढ़े ना तो अच्छा है, अच्छा है। और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल बता रहा था आपको, कि कहते थे कि कहते सबसे बहादुर आदमी कौन है। तो हजरत अली अलैहि सलाम से पूछा जब, तो उन्होंने कहा, कहते सबसे बहादुर आदमी वो है जो गुस्से पे कंट्रोल कर ले,
0: कंट्रोल कर ले। बहुत खूबसूरत बात।
1: दूसरा आदमी अगर बात कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो कर रहा है, और तुम खामोश हो, जवाब नहीं दे रहे, वो कर रहे, तुम उससे बहादुर हो।
0: बहुत खूबसूरत अली, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।
1: तो गुस्से पे जितना भी कंट्रोल करें अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि बाजे लोग ये होते हैं जिसके बस में नहीं होता कुछ, नहीं कर सकता कुछ, तो वो आखिर में यही सोचते हैं कि यार मेरे

0: कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करता है, वो कहता है यार अल्लाह तो देख रहा है, मैं हक पे हूँ, हूँ या नहीं हूँ, वो जात देख रही है, वो जाने और उसके काम जाने, वो ही समझेगा इसके साथ।
1: यहाँ मसला बहुत बड़ा पैदा हो जाता है, क्योंकि उसने सुपुर्द कर दिया अपने एहसासात को तख्लीकार के सुपुर्द, अब तो ये जिम्मेदारी हो गई।
0: तो बस बाजे लोग जो जिसके बस में नहीं होता वो ऐसे ही सोचते।
1: बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू वेरी मच,
0: अल्लाह आपको खुश, अल्लाह
1: हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। 4471 पर अस्का नूर हमारे साथ हैं, कह रही हैं प्लीज बेवफाई पर कोई पोएट्री सुना दें, उस बेवफा की याद दिलाता था बार बार, कल आईने पे हाथ उठाना पड़ा मुझे, भूले से मेरी समत कोई देखता ना था, चेहरे पे एक जख्म लगाना पड़ा मुझे, ऐसे बिछड़ के उसने तो मर जाना था हसन, उसकी नजर में खुद को गिराना पड़ा मुझे। ये आपके लिए अस्का नूर। अच्छा, टेलीफोन लाइन पे दूसरी कॉल, सवाल मैंने आपसे क्या पूछा है, बाज़ोकात इंसान गुस्से में खामोश क्यों हो जाता है, क्या चल रहा होता है आखिर उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: जीते रहिए जनाब, वालेकुम अस्सलाम, खूबसूरत।
1: अरे मोहतरमा परवीन साहिबा, कैसे मिजाज हैं आपके, आप खैरियत से हैं?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मोहतरम?
1: अल्लाह का बहुत करम, बहुत बहुत एहसान
2: है माशाल्लाह, आवाज से भी सुभान अल्लाह।
1: जी मैडम,
2: बहुत अच्छा ही रखे, बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया रहमान, बहुत अच्छा डॉक्टर से बहुत अच्छा प्रोग्राम करके गए आज।
1: जी जी,
2: दो चार बातें तो उनकी भाई बहुत ही मजा, आज वाकई मैं बहुत मुतासर हूँ, सच्चे सच्चे पाकिस्तानी और हम भी हैं बिल्कुल। आज आपका ये बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मेरे साथ तो अजीब मसला है ना रहमान, जब कोई आके ना मेरे साथ कोई गलत बात करे या कोई भी ऐसी बात हो जाएगी जिसमें लड़ाई झगड़ा और गुस्सा आ जाए, मुझे वैसे गुस्सा बहुत कम आता है, बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन कभी अगर मुझे बहुत शदीद गुस्सा है ना तो मेरी आवाज़ तो बंद हो जाती है, मुझे रोना
1: रोना आता है, ठीक है, आवाज बंद हो जाती है, गुस्सा अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए,
2: हद से ज्यादा गुस्सा आ गया, वो भाई बंदा या बंदी जो भी है सामने, उससे बोला ही नहीं जाता और मैं बेतहाशा रोने लगती हूँ। अच्छा जी, वो होते होते वो चलो ये हो गए, दूसरे घर वाले आ गए, वो तो चले गए या चली गई जो भी थी, उसके बाद मुझे इतना अफसोस होता है कि अल्लाह मियां ये मुझे क्या हो जाता है, मुझसे बोला क्यों नहीं जाता, मुझे तो ये बोलना था।
1: बाद में इंसान को सब जुमले याद आ रहे होते हैं कि मैं ये बोलता तो कमाल हो जाना था, वहीं पे सारी बात खत्म हो जानी थी, उसके मुंह पे इस बात का ऐसा थप्पड़ लगना था, उसको पता चल जाना था,
2: पता चल जाता वाकई दिल बाद में मैं अपने आप को फिर कोसती हूँ कि या अल्लाह मुझे हो क्या जाता है। अच्छा, कई दफा मेरे साथ हुआ है, जब भी हुआ है कि जब मेरे साथ वाकई ना इंसाफी हो रही थी, वरना मैं खामखा नहीं किसी से ज्यादा लगती, दरगुजर छोड़ो, अल्लाह का भी यही फरमान है, कहने दो जो कह रहे हैं, ये कोई कोई बात होती है ना दिल में लग जाती है बुरी तरह, कांटे की तरह या सुई की तरह, तो फिर गुस्सा नहीं जब्त होता और फिर ये हाल होता है, तो अल्लाह जी मैंने कहा अल्लाह ये क्या मुसीबत है, उसी वक्त मेरी आवाज बंद हो जाती है, मुझे
1: कभी कभी बंद टूट भी जाता है और फिर वो बहा के ले जाता है सारी चीजें।
2: हाँ जी हुजूर वाला, आप लोगों की जैसी बातें करना हमें कहाँ से आए, हम तो बस कर लेते हैं, मिल जाती है तुम्हारे प्रोग्राम में कॉल, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी होती है। तुम्हारा अफसाना मैंने आज दोबारा पढ़ा, आ गई मेरी किताब।
1: अच्छा,
2: मैंने पढ़ा, मुझे इतना मजा आया ना रहमान, सुना हुआ भी था तुमसे वही के वही हरूफ और तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, इतना मजा आया मैंने पूरा पढ़ा, अब मैं बाकी के भी पढ़ूंगी सारे फिर बताऊंगी।
1: अरे बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, सलामत रहे।
2: तुम्हारी वजह से एक बड़ी प्यारी किताब आई मेरे हाथ में,
1: बहुत अच्छे अफसाने हैं इसमें,
2: बहुत ही इतना मजा आया मुझे पढ़ने में ना, मैं सुन भी रखा था अभी तुम्हारा लहजा, वो तार चढ़ा और कहीं रुकना और कहीं तेज बोलना, सब कुछ वही जहन में घूम रहा था और मैं उसे पढ़ रही थी, बहुत मजा आया। तो जीते रहो, और भी कोई अच्छी किताबें हो तो मुझे बताना नाम।
1: बिल्कुल जरूर, एक एक करके जो पढ़ता जाऊंगा बताता जाऊंगा।
2: हाँ, एक किताब बहुत अच्छी है वो है मेरे पास ना, मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, बहुत मोटी है, वो है अलीपुर का एली।
1: जी पढ़ी हुई है वो भी मैंने,
2: पढ़ी है तुमने, कितनी लाजवाब है सच में, लेकिन उसमें से पूरी किताब तो पता नहीं महीनों लग जाएंगे।
1: जी बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी इंशाल्लाह।
2: बहुत बड़ी बहुत मोटी किताब है, लेकिन जिनको पढ़ने का शौक है ना अगर वो पढ़ेंगे उनको बड़ा मजा आएगा।
1: जी जी ऐसे ही,
2: बहुत अच्छी किताब है।
1: एम ए राहत की काला जादू पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
2: अच्छा
1: जी, काला जादू किताब का नाम है, एम ए राहत।
2: अच्छा, एम ए राहत साहब, सही सही, ٹھیک ہے ٹھیک ہے,
1: چلیں بہت شکریہ پروین صاحبہ, سلامت
2: رہیں. بہت شکریہ, تمہارا بھی خوش رہو رحمان, اچھے اچھے رہو. وہ جو ڈاکٹر صاحب کے نام ایک نظم کی تھی, ایک میں نے بڑی اچھی ڈھونڈی تھی, لیکن چلو ابھی نہیں بنی.
1: چلیں سنا دیں سنا دیں,
2: ابھی تو میں نے اس کو بند بھی کر دیا کتاب.
1: چلیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, پھر کبھی سن لیں گے.
2: ہاں ان شاء اللہ,
1: بہت شکریہ.
2: وہ جو بھی کوئی ہیں سب جیتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, تم بھی اور تمہاری فیملی کے ساتھ.
1: بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اسکا نور ہمارے ساتھ ہے. سر آپ کو کبھی پیار ہوا ہے؟ یک طرفہ پیار اینڈ ایج ڈفرینس, آپ اس کے لیے تڑپ اتنی تڑپ رہے ہیں, پھر سامنے والا بے خبر, کوئی پرواہ ہی نہیں, حوصلہ افزا بات بتا دیں. ہاں پیار کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے, ہم نے کچھ درجے بنائے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کچھ درجے بنائے ہوئے ہیں. جیسے دین کے اندر مذہب ایک درجہ ہے, انسانیت سب سے افضل ہے. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پیار ہوتا ہے اس میں تڑپ ہوتی ہے, اس میں جواب کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جواب مل جائے مجھے, میرے سوال کا جواب مل جائے مجھے. اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں, اپنے دل کی کیفیت بتا دیں, اس کے بعد آپ کو پھر پتا چل جائے گا, آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا. بنت آدم ہمارے ساتھ ہیں. سر what do you say about یک طرفہ اینڈ ایج ڈفرنس, یہ پھر کوئی اسی طرح کا سوال. ایج ڈفرنس اچھا ہے نا, ایج ڈفرنس ہوگا تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا. بائی دی وے ذرا کھل کر مجھ سے سوال پوچھیں تاکہ پھر آپ کو سوالے سے جواب دیا جائے. ٹیلیفون لائن پہ ایک اور کال ہے اور سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے, کبھی کبھی انسان غصے میں خاموش ہو جاتا ہے, اس کو اتنا غصہ آتا ہے لیکن وہ خاموش ہو جاتا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے, کیوں خاموش ہوتا ہے. السلام علیکم. جی
3: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: جی کون بات کر رہے ہیں؟
3: محمد حبیب بات کر رہا ہوں دبئی سے.
1: جی حبیب بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, کیا کہنا چاہیں گے؟
3: شکریہ سر, ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں؟
1: جی اللہ کا بہت کرم, بہت احسان ہے. جی جی جی بتائیے گا مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ.
3: بس ہماری طرف سے سارے لسنر کو, سننے والوں کو پیار بھرا سلام.
1: بہت شکریہ, وعلیکم السلام.
3: آپ کو سلام, اللہ سب کو خوش و خرم رکھے.
1: بہت شکریہ,
3: سب کو خوشی کرم والا معاملہ فرمائے.
1: بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ میرے بھائی,
3: میں بھی دعا میں یاد رکھیے.
1: بہت شکریہ, اللہ ہمیشہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ حافظ, اللہ حافظ. السلام علیکم بھائی, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, آپ کا پتہ نہیں کچھ لکھا ہے, آغوش گانا سنا دیں. اچھا معظم شادرہ لاہور سے, میں کوشش کرتا ہوں. ٹیلیفون لائن پہ ایک اور کال, ہم پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں, بیچ میں ہم اپنی بھی بات کریں گے, ٹھیک ہے نا, کہ غصے میں انسان اکثر خاموش کیوں ہو جاتا ہے, کیا ہمیشہ خاموش رہنا اچھا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس پہ بھی بات کریں گے. السلام علیکم. جی
0: جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے رحمان بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں جی آپ؟
1: جی اللہ کا کرم ہے جی, احسان ہے شہزاد صاحب,
0: بڑی مہربانی, بہت اچھا ماشاء اللہ آپ کا شو ہے, اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں بہت اچھا موضوع ہے یہ. لیکن غصہ جو آتا ہے نا برداشت کرنے کے حد تک ٹھیک ہوتا ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: جب جب جب یہ غصہ بولتا ہے نا تو پھر بہت مسئلہ خراب ہوتا ہے.
1: ایسے ہی ہے,
0: تو برداشت ہم تو کرتے ہیں, جو ہمارے سے اوپر ہوتے ہیں نا,
1: ہاں
0: وہ ہم سے غصہ کرتے ہیں, ان کا حق بھی بنتا ہے, وہ برداشت کرنا پڑتا ہے.
1: صحیح ہے,
0: تو ہمارے بڑے ہیں, وہ ہمارے غلطی سے مجھے روکیں گے, تو ٹھیک ہے ان کا غصہ ٹھیک ہے,
1: اچھا
0: بولنا چاہیے. ہاں جو دوسری بات ہے نا, کہ بعد میں انسان کا جو ذہن ہے وہ چلتا ہوتا ہے, جب غصہ کوئی ہوتا ہوتا ہے نا, ذہن کام کرتا ہوتا ہے, وہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ یار یہاں سے بولا نا تو بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی,
1: ठीक है,
0: इसलिए खामोश रहता है कि आगे बात ना जाए, इधर ही खत्म हो जाए, इसलिए वो बर्दाश्त करता है।
1: बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, सलामत रहें।
0: बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती रखे।
1: आमीन सुम आमीन, थैंक यू वेरी मच, आपके लिए भी बहुत सी दुआएं, अल्लाह हाफिज। जी आर बिस्मिल हमारे साथ हैं, बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, माशाल्लाह लिखा है आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मरीना बिलाल हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
1: हमीद गुल साहब कैसे मिजाज हैं आपके, आप खैरियत से हैं, आप ठीक ठाक हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह
1: जी। हमीद गुल साहब, इंसान बाज़ोकात जी, अल्लाह का बड़ा करम, बहुत एहसान, बाज़ोकात इंसान जो है वो खामोश क्यों हो जाता है गुस्से में, क्या चल रहा है?
4: मैं आपको मैशर अफरीदी के तीन शेर सुनाऊंगा।
1: जी सुनाइएगा,
4: तीनों तीनों में जवाब मिल जाएगा।
1: जी जी सुनाइएगा।
4: पहले में तंबीर है, दूसरे में इशारा है, तीसरे में आपके सवाल का जवाब भी है, और क्या खूबसूरत बात भी है।
1: ठीक है,
4: मैशर अफरीदी ने कहा था कि आप बड़ी खूबसूरती से बात बनाते हैं। तो मैशर अफरीदी ने कहा था कि इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाएं,
1: इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाएं। ये मेरी तारीफ थी या तज़हीक थी?
4: ये आपकी तारीफ है सर।
1: फिर ठीक है, फिर ठीक है, ओके जी। हमीद गुल साहब,
4: सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं।
1: आहा, अच्छा अच्छा।
4: और इतने सन्नाटे पिए हैं मेरी समात ने कि अब आप गुस्से की बात करें, इतने सन्नाटे पिए हैं मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं,
1: सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं,
4: निशाने लग जाएं।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
4: क्या गहराई है सब्र में।
1: वाह वाह,
4: आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं,
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दोबारा मुकर्रर, दोबारा अता कीजिएगा।
4: बड़ी मेहरबानी के इतने सन्नाटे पिए हैं मेरी समात ने कि अब,
1: इतने सन्नाटे पिए हैं मेरी समात ने कि अब
4: सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं,
1: सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। बहुत खूब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
4: और उसमें एक शेर है
1: जी,
4: लेकिन ये शेर गुस्से दबाने के लिए भी है और गुस्से का इजहार भी है इसमें। क्या खूबसूरती से
1: जी,
4: मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किसे,
1: हाँ मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे,
4: मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दुबाने लग,
1: ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दुबाने लग जाएं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
4: ये बात ये है, वो मेरे एक अपने एक शेर है कि मैंने एक हदीस के से मुस्तार लिया इस ख्याल को, कुरान की आयत से कि ऐब से जब कोई नहीं खाली,
1: ऐप से जब कोई नहीं खाली,
4: आदमी चुप रहे तो बेहतर है,
1: आदमी चुप रहे तो बेहतर है। और बहुत खूब आपने कहा है ये शेर, बहुत वजन है।
4: अगर आप जब आप चुप रहते हैं बाज़ोकात आपको बड़ा फायदा होता है उसमें।
1: जी बिल्कुल सही।
4: मैंने बल्कि कहीं मैंने ये भी कहा था किसी शेर में कि दो कदम पीछे हटा मैं वार करने के लिए,
1: दो कदम पीछे हटा मैं वार करने के लिए,
4: नहीं सॉरी मैंने बैर से आउट कर दिया, दो कदम पीछे हटा वार करने के लिए।
1: ठीक है,
4: दो कदम पीछे हटा वार करने के लिए, उस कुछ ऐसे लगा वाकई मैं डर गया।
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
4: सलामत रहे, बारिश हो रही है हमारे यहाँ।
1: अरे वाह वाह वाह, सावन की पहली बारिश है, फोन करो या खुद आ जाओ, सलामत रहे, थैंक यू वेरी मच।
4: पहली तो नहीं है खैर,
1: अब मेरे लिए तो पहली ही है। बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब, सलामत रहें,
4: थैंक यू, थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल है, और मैंने सवाल आपसे ये पूछा है कि बाज़ औकात इंसान गुस्से में खामोश क्यों हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी।
5: जी वालेकुम सलाम, सर कैसे हैं?
1: जी अल्लाह का बहुत करम जी, बहुत एहसान है।
5: सर गुस्से की बात आप कर रहे हैं तो मैं अपनी बात करूँ, जब गुस्सा अगर कोई शख्स आपका नुकसान कर देता है तो अगर हम उसको देखते रहें तो गुस्सा आता रहता है, तो तो गुस्से से पीछा छुड़ाने के लिए कि अगर आपको गुस्सा है तो आप उस शख्स से दूर हो जाए।
1: सवाल मैंने कुछ और पूछा है, सवाल मैंने ये पूछा है कि गुस्से में बाज़ औक़ात इंसान खामोश क्यों हो जाता है, क्या आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई है?
5: जी सर, खामोश सर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सर अगर हम गुस्से में हम कुछ ऐसे अल्फाज सुना देते हैं सामने वाले को कि हमें बाद में फिर पछताना पड़ जाए, तो इससे बेहतर है कि हम खामोश ही हो जाए।
1: ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच
5: जी। सर सलामत रहे। और सर फराज अहमद की शायरी अगर आपकी इजाजत हो।
1: जी सुनाइएगा।
5: वो बेवफा है तो मत कहो बुरा उसको, हुआ सो जो हुआ खुश रखे खुदा उसको।
1: अच्छा,
5: नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, फराज मिले कहीं तो पलट कर ना देखना उसको।
1: अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत, सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाज़ औक़ात जो खामोशी होती है वो अच्छी नहीं होती। कभी कभी ये जो खामोशी होती है ये इंसान को अपने अंदर ले जाती है और कभी कभी दूसरे इंसान को सजा देने के लिए इस्तेमाल भी होती है। दोनों में जो फर्क है ना वो बहुत बारीक है, बहुत छोटा सा है। एक खामोशी कहती है मैं अभी बहुत जज्बाती हूं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं बेहतर अंदाज में बात कर सकूं। लेकिन दूसरी तरफ खामोशी एक और बात कह रही होती है, मैं तुम्हें खामोश रहकर तकलीफ देना चाहता हूं ताकि तुम मेरी तकलीफ समझो। ये अलग अलग सिचुएशंस में आपके सामने रखने वाला हूं। टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल है, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
6: अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम।
6: साजिद जी हूं लाहौर से।
1: जी साजिद,
6: कैसे सर? ठीक ठाक है। पहले यही तो टॉपिक था, आपने पहले कुछ महीने ये मसला रखा था, तो एक कॉलर ने कहा कि जी बीमार जो बंदा होता है ना उसकी सलीकें जो होती हैं वो खत्म हो जाती है, वो खामोश हो जाता है, आगे उसको बोलने का हौसला भी खत्म हो जाता, ताकत भी उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं।
1: अच्छा,
6: जो दानिशवर लोग होते हैं ना जिनमें अल्लाह ताला ने कुछ जज्बा रखा है, जो समझदार लोग हैं वो खामोशी अख्तियार करते हैं। ये हर बंदे की बात नहीं है कि या मैं हूँ या आप हैं, जब गुस्सा हर बंदे को आता है,
1: बिल्कुल आता है,
6: तो उस पे कंट्रोल करना हर बंदे की बस की बात नहीं।
1: बिल्कुल ठीक है।
6: मैंने तो हम बहुत कुछ यहाँ पे आके कि मैं खामोश हो जाए बंदा, बहुत सारे रिश्ते टूटों को मतलब टूटने से बचा लेता है, लेकिन उस टाइम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो बहस जो होती है, अभी देखिए तलाक का रेशो बहुत ज्यादा है, उसकी क्या वजह? गुस्से का आ जाना, इस बात में आ जाना बहुत गलत फैसला इंसान कर बैठता है। अगर उससे ना हो तो फिर तो मामले खत्म हो जाते हैं। अब एक मेरा मैं थोड़ी बात दूसरे फले जाना चाहता हूँ। एक मेरा दोस्त था
1: जी,
6: वो जब भी बैठता था उसने कोई ऐसी उल्टी बात कह देनी, दो तीन दफा कही, और मैं उसको दोस्त बैठे थे, मैंने उसको कुछ नहीं कहा।
1: अच्छा,
6: मैं उसके साथ खामोश हो गया हूँ काफी अरसे तक। मैं उसके साथ वो बातें करे, मैं दूसरी तरफ अपने चेहरे को दूसरी तरफ ले जाता था, तो वो ना मुझे उसने मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया, वो बुलाना चाहे फिर भी मैंने बात करना छोड़ दिया।
1: अच्छा,
6: तो बुलाना भी नहीं, ये बताइंदा कि इसके साथ तलाक खत्म करते हैं।
1: ठीक है,
6: उसने बड़े भाई को कहा कि साजिद को क्या हो गया, मेरे साथ बात नहीं करता। जब उसने मेरे साथ बात की, मैंने तफीम भाई बात ये है कि आपकी वजह से मैं इसकी इज्जत करता हूँ, जब ये बात करता है सोसाइटी में बैठ कर गलत बात करता है।
1: अच्छा,
6: इससे बेहतर है कि इसके साथ में तलाक जो है ना वो वाइंड अप कर दूं।
1: ठीक है,
6: इसलिए वो उसने मेरे साथ माजरत की कि यार साजिद मुझे आपने इतना अरसा आपने बताया नहीं, कोई माह गुजर गए, 6 माह तक आपने बात नहीं की और बात सुनी में आपने टाल दी। तो ये होता है खामोश हो जाना, गुस्से पे कंट्रोल कर जाना, बहुत सारे रिश्तों को बचा लेता है।
1: बहुत शुक्रिया साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंच गया।
6: تھینک یو سر، اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ، اللہ حافظ. گلاب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. امل حبیب کہہ رہی ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں. نوشین رشید ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہی ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹیلی فون لائن پہ ایک اور کال ہے. سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے، انسان غصے میں خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا چل رہا ہوتا ہے اس کے من کے اندر؟ السلام علیکم جی.
7: رحمان بھائی کیا حال ہے
1: جی؟ اللہ کا بہت کرم، بہت احسان ہے جی.
7: سر آپ کی جو ٹانگ کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہوا ہے؟
1: میرا دراصل آپریشن ہوگا، اور وہ نی کا آپریشن اسے کہتے ہیں، نی کا آپریشن ہوگا. اس میں وائر ایک میری ٹوٹ گئی ہے، دراصل وہ جوائنٹس میں آ کے بار بار رک جاتی ہے اور سٹک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی نی جو ہے چلتے ہوئے، لیکن الحمدللہ ابھی ٹھیک ہے. ابھی یہ موسم تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ زخم میں انفیکشن ہو سکتا ہے، تو اس لیے مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. وہ جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں، بہت ہزاروں لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں لیکن میں بتا نہیں پایا، تو آج مجھے یاد رہ گیا تو میں نے بتا دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. کیا نام ہے؟ آپ نے نام کیا بتایا تھا اپنا؟
7: میں نام بتایا ہی نہیں ہے سر، میرا نام رضوان صدیق ہے، پیرا سے.
1: جی رضوان بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
7: سر جو بیسیکلی جو غصے کا اظہار ہے نا، وہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ 60% جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو 60% اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے.
1: 60% اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہوتا ہے اس غصے میں،
7: اور بعض دفعہ بندہ اپنا ہی نقصان کر جاتا ہے.
1: ٹھیک ہے، یعنی خاموش جو ہوتا ہے انسان، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نقصان نہ ہو کسی کا بھی.
7: جی سر
1: ٹھیک ہے،
7: بھی اور اپنا بھی. اچھا سر یہ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ یک طرفہ محبت کے بارے میں،
1: ہاں جی،
7: ایک اور سوال تھا اسی کے سے ریلیٹڈ.
1: جی
7: جو کی جانے والی محبت کو تو بدلا جا سکتا ہے.
1: کیا
7: کی جانے والی محبت کو؟ ایک ہوتا ہے نا جو کی جاتی ہے محبت کسی سے،
1: جی
7: وہ تو بدلی جا سکتی ہے، کسی اور سے بندہ کر لیتا ہے، لیکن جو محبت ہو جائے اس کو کیسے بدلا جائے؟
1: جو کی جاتی ہے محبت آپ کہتے ہیں کہ وہ بدلی جا سکتی ہے، لیکن جو ہو جائے اسے بدلا نہیں جا سکتا، یا اسے کیسے بدلا جائے؟
7: یا اسے کیسے بدلا جائے؟
1: یہ جو وقت ہے نا، یہ میں بھی جواب دیتا ہوں آپ کو اس کا آن ایئر، آپ سنیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ. یہ وقت جو ہے نا، یہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. یقین کریں محبت کی بھی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں انسان کے اوپر. انسان کے اندر جو ہارمونز اتنے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے من کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو ایک خاص جگہ پہنچ کر، ایک خاص موڑ پہ پہنچ کر یہ احساس عطا کر دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. تو بعض اوقات وہ آپ کے ذہن سے، آپ کے من سے ہٹ بھی جاتا ہے. لیکن یہ اس محبت کے ساتھ ہوتا ہے جسے فائدہ چاہیے ہوتا ہے، جس کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے لیے کوئی بیک اپ رکھتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اور جو آپشنز نہیں رکھتے، جو بیک اپ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ اس طرح کے سوالات نہیں ہوتے، اس طرح کے خیالات نہیں ہوتے. خود ہی دوسرے انسان کی سچائی ان کے سامنے آ جاتی ہے، خود ہی ان کو کوئی ایسا عطا کر دیا جاتا ہے جو ان سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے. ٹیلی فون لائن پہ ایک اور کال ہے. سوال میں نے آپ سے کچھ اور پوچھا ہے، یہ تو میں نے اس سوال کا جواب دیا. سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ بعض اوقات انسان غصے میں خاموش کیوں ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ السلام علیکم جی.
8: وعلیکم السلام رحمان انور بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟
1: اللہ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے میرے بھائی.
8: आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से।
1: जी आसिफ, क्या कहना चाहेंगे?
8: ये खामोशी जो है ना रहमान भाई,
1: हाँ,
8: किसी को सुना देने के बारे में कहूँगा मैं। अगर कोई तुम्हारा नहीं बन पा रहा, कोई कोई झगड़ा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप एक दफा सिर्फ एक माह खामोश करो, अपने आप को अलग करके खामोशी अख्तियार करो। अगर वो बंदा तुमसे मुखलिस हुआ तो वो आपके मिनटे करेगा, तो मुझे माफ कर।
1: ठीक है,
8: खामोशी एक ऐसा जख्म है ना जो भरता नहीं है। बाकी बात यह है कि खामोश रहना बेहतर है गुस्से की हालत में।
1: ठीक है,
8: क्योंकि उस वक्त बंदा उस जज्बाती वो होता जो मुंह में आता बक देता है।
1: ठीक है, ठीक है,
8: आप ही सीखा है।
1: ठीक है, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।
8: ठीक है, ओके, अल्लाह
1: हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। 4471 पर हमारे साथ अनायतुल्ला हैं, अनायतुल्ला संजरानी फ्रॉम चोटी जरीन। सर, कुछ दुख, कुछ दर्द, कुछ उदासियां बंदे की जाती हुआ करती हैं। पता है, हम चाह कर भी किसी से बयान नहीं कर सकते, ऐसा क्यों होता है? आपने अपने सवाल के अंदर जवाब दिया है कि ये जाती हुआ करते हैं, इसलिए बयान नहीं कर सकते हैं। वैसे बयान करना चाहें तो आप अपने साथ बयान कर सकते हैं, सामने शीशे में देखकर। गुस्से में बाज़ औक़ात इंसान खामोश क्यों जाता है, सवाल ये पूछा है। टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी।
9: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: जी कौन बात कर रहे हैं?
9: रहमान भाई, लाहौर शादबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ।
1: जी नवीद भाई, क्या कहना चाहेंगे?
9: सबसे पहले तो मैं दिली आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाई को तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए।
1: बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, सलामत रहे, आबाद रहे।
9: मेरी दिल से यही दुआ है सर, जहाँ जहाँ तो देखो मुश्किल में है, हॉस्पिटलों में है, घरों में है, अल्लाह ताला अपने नबी के सदके हर एक को गया के खजाने में से शफा अता फरमाए।
1: बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी क्या कहना चाहेंगे?
9: सर मैं यही कहना चाहूँगा कि गुस्सा जो है ना, ये तो समझने के शैतान की वरगलाने वाली बातें होती हैं। कोई
1: हाँ,
9: शैतानी जो कहते हैं ना, कोई
1: आप कभी गुस्से में खामोश हुए?
9: सर मैं बेसिकली जो मर्जी बात हो ना, मैं तो ज्यादा ये नहीं कि मेरा 100 से 95% मैं कहता हूँ कि यार गुस्सा करना ही नहीं चाहिए।
1: नहीं, अगर कोई आप पे करे तो क्या आपको गुस्सा आए किसी की बात पे, तो क्या खामोश हो जाते हैं आप? या आता ही नहीं है आपको गुस्सा?
9: मैं तो समझ लें कि कोई अगर गुस्से में हो भी तो मैं तो मुस्कुरा के उसका उसका गुस्सा खत्म कर देता हूँ सर।
1: ठीक है,
9: ऐसी चीज है कि जो अगले का भी गुस्से को जो है ना खत्म हो जाती है। वो अगर फिर जब अलग होगा सोचेगा तो फिर तो यही होगा ना उसको, ब्रेन में ये बात आएगी यार मैं गुस्से में था, मैं इसे ये कह रहा हूँ, ये आगे से मुझे हंस के ये जो आप दे रहे हैं।
1: तो
9: गुस्से में और मुस्कुराहट में सर मान का फर्क है भाई।
1: ठीक है नवीद भाई, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे।
9: अगर कोई गुस्से में कोई बात कह भी दे तो उसको यही कहते हैं यार
1: सही कहा आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया
9: सर, बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा, जहां जहां तक मेरी और आपकी बात जा रही है सब सुनने वाले को मिलकर सलाम।
1: वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। 4471 पे पैगाम है, भाई जब मैं गुस्से में आता हूँ मैं घर अम्मा को कहता हूँ मैं कराची जा रहा हूँ। मुअज्जम शादरा लाहौर से। एक दफा मैंने वैसे ऐसा सोचा था कि मैं कराची चला जाऊं, सोचा था मैंने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अहरफ़ तसल्ली तेरे मशकूर हैं लेकिन, डॉक्टर राबिया के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ चुके हैं कि जी आपने अभी तक अपनी पोस्ट पर लगाया हुआ शेयर नहीं पढ़ा। ऐ हर्फ तसल्ली तेरे मशकूर हैं, लेकिन ये खैर है कहने से बहुत आगे का दुख है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अब्सॉर्व करने में टाइम लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। माहजबीन हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान। वालेकुम अस्सलाम माहजबीन, कैसी हैं आप, खैरियत से? आतिफ अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो सर, लिसनिंग फ्रॉम यूएई अबू धाबी, थैंक यू वेरी मच। गुलाब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सर, अमल के मैंने मैसेज पढ़ लिया, अस्सलाम वालेकुम कहा था आपने, वालेकुम अस्सलाम। नौशीन का भी मैसेज पढ़ लिया, गुलाब कह रहे हैं वेरी नाइस शो सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साइम बट हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, मैं 12 साल बाद रेडियो सुन रहा हूँ, लाहौर से किसी को जवाब देने से, अच्छा लाहौर से किसी को जवाब देने से बेहतर है खामोशी, एक चुप सौ सुख। जब आप किसी को उसकी बात का जवाब नहीं दोगे तो अपना फैसला अल्लाह पाक पर छोड़ दोगे, तो अल्लाह इंसान को ज़रूर दिखाता है, बेहतर यही है खामोशी, सामने वाले इंसान को खामोशी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। ठीक है, अच्छा आपका जो आपकी तरफ से जो आपने कहा है ये तकलीफ देने के लिए आपने कहा है, ठीक है। इस्लाम गुज्जर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमान सर, वेलकम बैक, एक दो गुजारिशात थी, पहली ये कि अगर मुमकिन हो तो सर ज़िया अंजुम वाला शेर हजार सलीबे, नहीं मेरे जहन में नहीं है वो, अपने मुनफरद अंदाज में जरूर पढ़ें। दूसरी ये कि आप भी अपने शो रिकॉर्ड करके अपलोड किया करें जैसे सर ज़िया अंजुम करते हैं, यकीन करें आपका अंदाज़ गुफ्तगू, आवाज़ और म्यूज़िक सिलेक्शन बेहद खूबसूरत है, शायद आपको ख़ुद भी अंदाज़ा ना हो कि आपका अंदाज़ सुनने वालों को कितना पसंद आता है, आपने बता दिया तो आज मुझे पता चल गया, थैंक यू वेरी मच। इस्लाम हमेशा सलामत रहें, आबाद रहें, मैं ज़रूर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, फिर मैं बताऊँगा यहाँ पर लाइव तो आप वहाँ पर जाके सुन पाएंगे। ताहिरा मसूद साहिबा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। खामोशी को अना का मसला ना बनने दें वरना मसला बढ़ जाता है, हमीद गुल साहब कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात है। गुलाब हमारे साथ हैं, क्या बात है आपकी, आरजे रहमान अनवर जबरदस्त कमाल, थैंक यू वेरी मच। आयशा खान हमारे साथ है, तुम्हें याद करना छोड़ दिया दिल ने, दिमाग से लड़ना छोड़ दिया, तुम पर यकीन था जब से तुम्हें यकीन तोड़ा, हमने किसी पर यकीन करना छोड़ दिया, ठीक है। ताहिरा मसूद साहिबा ने परवीन शाकिर साहिबा की एक गजल हमें भेजी है, तरिया जाम कोई फूल खिलाने आए, वो मेरे दिल पे नया जख्म लगाने आए, मेरे वीरान दरीचों में भी खुशबू जागे, वो मेरे घर के दरो बाम सजाने आए, उससे एक बार तो रूठूं मैं उसी की मानंद, और मेरी तरह से वो मुझको मनाने आए, इसी कूचे में कई उसके शनासा भी तो हैं, वो किसी और से मिलने के बहाने आए, अब ना पूछूंगी मैं खोए हुए ख्वाबों का पता, वो अगर आए तो कुछ भी ना बताने के लिए आए, जब्त की शहर पनाहों की मेरे मालिक खैर, गम का सैलाब अगर मुझको बहाने आए, खूबसूरत।

बहरहाल 1:45 एक ट्रैक शामिल कर रहा हूं और इस गाने के फौरन बाद वापस आऊंगा।

1:52 हो चुके हैं और टाइम जो है वो बिल्कुल करीब पहुंच गया है आपसे इजाजत लेने के हवाले से। शीशे की दूसरी तरफ वसीम अहमद साहब मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे बाद 2 से लेकर 4 बजे तक आपके साथ गुंचा शौक में बहुत सी बातें करेंगे, आपको शायरी सुनाएंगे।

बहरहाल हम गुस्से के हवाले से बात कर रहे थे और बातें बहुत सारी हैं जो अभी रह गई हैं। टेलीफोन कॉल की वजह से बहुत सारी बातें रह जाती हैं दरमियान में कहीं। लेकिन कभी कभी इंसान गुस्से में जब खामोश हो जाता है, उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी से हमदर्दी, किसी से मोहब्बत हद दर्जे की होती है तो इंसान खामोश हो जाता है, या फिर जब उसको ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा, हम उसके पहला हिस्सा नहीं हैं, हम उसकी खुशी की मोहब्बत की पहली वजह नहीं, तो इंसान खामोश हो जाता है। वो फिर जवाब नहीं देता, वो सवाल भी नहीं करता, बस खामोश हो जाता। लेकिन वो साथ रहता है। ऐसी खामोशी बाज़ औकात बहुत ज्यादा चुभती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि इंसान का दिल चाहता है कि दूसरी तरफ से भी गुफ्तगू की जाए, दूसरी तरफ से भी बोला जाए। बाज़ औकात दोनों ही गुस्सा नहीं कर रहे होते, लेकिन कोई ऐसी बात हो जाती है जो इखलाक के दायरे में बहरहाल होती जरूर है, लेकिन इखलाक के दायरे से बाहर नहीं जाती। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान बेवजह भी किसी छोटी सी बात के ऊपर भी अपने अंदर कोई ऐसी बात उसे महसूस होती है कि ये बुरी चीज है, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, तो इंसान खामोश हो जाता है और गुस्सा होता है उसके अंदर, जो उसको खामोश रहने पर मजबूर कर देता है। और फिर जब भी सवाल पूछा जाए तो दूसरी तरफ से बाज़ औकात ये भी जवाब मिलता है कि बोलकर क्या ही हासिल हो जाएगा, क्या ही मिल जाएगा। लेकिन अगर उस वक्त बोल दिया जाए, जब इंसान कूल है, जब इंसान काम है, जब गुस्से में नहीं है, जब जज्बात में नहीं है, तो फिर चीजें जो है वो सॉर्ट हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, मामला हल हो सकते हैं। इस टॉपिक को अधूरा छोड़े जा रहा हूं, दोबारा कभी वापस आऊंगा इस टॉपिक के साथ, तो इसको नई राहें मिलेंगी, इसके नए नुक्ते सामने वाजे होंगे, खुलकर सामने आएंगे। इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है। कोई बात बुरी लगी हो तो तिफल मकतब समझ कर ये सोच कर कि अभी सीखने के अमल में हूं, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशले राह होती है तो यहां पे आने का, प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाता है। आखिर में जाते हुए कुछ नाम जो हैं वो शामिल करता जाऊंगा। अलाउनूद अल इशराफ हमारे साथ हैं, मोहम्मद तारिक हमारे साथ हैं, हिना अहमद बहुत शुक्रिया, मरीना बिलाल, ताहिरा मसूद साहिबा, एम सुलेमान, मोहम्मद अरशद गोंदल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मियां जमील बशीर हमारे साथ हैं, नादान साहिब हमारे साथ हैं, लियाकत अली बहुत शुक्रिया, मास्टर महबूब अहमद बहुत शुक्रिया, कल्ब मोमिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तेरी ख्वाहिश की कसम, मुस्तकिल दुख ने तबीयत ही बदल डाली है, झूठे मूठे किसी बहलावे से हम भला कब थे बहलने वाले, तेरे जीवन की कसम। हिजर और मौत ने तोड़ा है हमें, छोटी मोटी किसी वीरानी से हम भला कब थे बिखरने वाले।
तुझको मालूम है हम तेरी खुशी की खातिर गम के आदाब भुला बैठे हैं। तेरी आंखें हों या सांसें हों या तन्हाई हो, हमको एक बहते हुए जख्म ने मोहताज बना डाला है, वरना हम कब थे भला बच के गुजरने वाले। हमने इस बार ये सोचा है कि हम तेरे लिए तेरे अंदाज से चाहेंगे तुझे, तुझसे ही मशवरा मांगेंगे तेरे बारे में, बादशाहों की तरह रखेंगे इस बार मोहब्बत का भरम। हमने ये सोच लिया है इस बार हार और जीत को इस खेल में रखना ही नहीं, गैर मशरूत मोहब्बत की तरह डालेंगे। जिस कदर अश्क हमारी किसी बुनियाद में है, जिस कदर हिजर नसीबों में मिला है हमको, जिस कदर शामिल अहवाल है बेचैनी सी, जिस कदर सीने में आबाद है एक हसरत व यास, जिस कदर एक खलिश और है एक और खलिश के अंदर, तेरे उजड़े हुए दिल पर कुर्बान, तेरे मजबूत इरादों की थकन और थकन के साए दर्द को दिल में समोने के लिए काफी हैं, तेरे हर सब्र की बीमार हंसी के आंसू शाम की मांग डबोने के लिए काफी हैं, शाम की मांग डबोने के लिए काफी हैं।

रात का दामने सदचाक भिगोने के लिए काफी है, चांद को छूने की ख्वाहिश में जला बैठे हैं पूरे अपने, और सितारों से गले मिलने के सपनों से हमें तोड़ के वीरानों में ला फेंका गया। हम तो जैसे भी हैं बर्बाद हैं दिल के हाथों, अब ये सोचा है कि बस रखेंगे तुझको आबाद, तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तेरे अंदाज से चाहेंगे तुझे, गैर मशरूत मोहब्बत की तरह डालेंगे हम तुझे, चाहेंगे बेचैन हवाओं की तरह। मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हामी नासिर।

0: listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से ये आवाज़ है आपके अपने मेज़बान वसीम अहमद की। तमाम खूबसूरत समातों को मेरा मोहब्बत भरा, प्यार भरा, खलूस भरा सलाम कबूल हो। मदन सामईन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से चंद अहम बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तारीख चेंज हो चुकी है रात के 12 बजे के बाद, मगर हम 5 अगस्त की बात करेंगे। हर साल 5 अगस्त को पाकिस्तान में योम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत इसलिए है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने अपने आईन की दफा 370 और दफा 35A को खत्म कर दिया था। इन दफात के तहत जम्मू कश्मीर को एक खसूसी आईनी हैसियत हासिल थी, जो कि इन दफात को खत्म करने के बाद जो है वो खत्म हो गई, बल्कि खत्म कर दी गई। इन दफात के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की जो खसूसी हैसियत खत्म

कर दी गई, उसके साथ साथ उनके जो हकूक थे जो वो भी सल्ब कर लिए गए और इलाके की इंतजामी साख्त में भी तब्दीली कर दी गई। पाकिस्तान के मौकफ के मुताबिक इस इकदाम के नतीजे में कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक बुरी तरह मुतासर हुए, सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, मुवासलाती जराए पर पाबंदियां आयद की गई, शहरी आजादियों को महदूद कर दिया गया और आबादी के तनासब में तब्दीली के खदशात भी पैदा हुए। इसी पस मंजर में पाकिस्तान हर साल योम इस्तेसाल कश्मीर मनाता है ताकि कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया जा सके, उनके हक खुद इरादियत की हमायत की जा सके और मसला कश्मीर को आलमी बरादरी की तवज्जो का मरकज बनाया जा सके। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीरी अवाम की मुश्किलात आसान फरमाएं, उन्हें अमन, इज्जत और इंसाफ नसीब करें और इस खत्ते में पायदार अमन कायम हो, और हम ये भी कहेंगे कश्मीर इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान और भारतीय जुल्मों सितम जो हैं वो बिलाखिर ख़त्म होंगे, नीस्तो नाबूद होंगे।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا

मौसम सामयिक एक दफा फिर दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहता हूँ और प्रोग्राम आपका जाना बेजाना गुंचा शब। मगर आपको जैसा कि पता है कि अगस्त का मुबारक महीना है और मुबारक इसलिए कि इसमें हमने आज़ादी हासिल की। आज हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक अजीम जद्दोजहद है। बेशुमार कुर्बानियों और लाखों मुसलमानों के ख्वाब की ताबीर का दिन है और 14 अगस्त 1947 में बरसीर के मुसलमानों ने कायदे आजम की वलवला अंगेज क्यादत और उनके अफकार की रोशनी में एक आज़ाद वतन हासिल किया जहां वो अपने दीन सकाफत और रवायात के मुताबिक आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां हम सब आज़ादी का सांस ले रहे हैं, जहां हम सब अपनी आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न आज़ादी हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कोई मामूली नेमत नहीं, इसके हसूल के लिए लाखों लोगों ने अपने घर बार छोड़े, जानों का नजराना पेश किया और बेशुमार मुश्किलात बर्दाश्त की। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन कुर्बानियों को कभी फरामोश ना करें और उन कुर्बानियों को हमेशा याद रखें और अपने आप को उन लोगों के नक्शे कदम पे रखें जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, बेशुमार जद्दोजहद की। हकीकी जश्न आज़ादी सिर्फ झंडे लहराने, इमारतों को सजाने या आतिशबाजी करने का नाम नहीं बल्कि वतन से मोहब्बत, कानून की पाबंदी, ईमानदारी, मेहनत, दयानतदारी और कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा भी है। जब हर शहरी अपने फराइज दयानतदारी से अंजाम देगा तो पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। आज के दौर में हमें नफरत, तासुब और तकसीम से बचकर इत्तेहाद, रवादारी और भाईचारे को फरोग देना होगा। यही वो रास्ता है जो हमारे वतन को मजबूत, खुशहाल और पुरअमन बना सकता है। आइए इस जश्न आज़ादी के मौके पर हम सब ये अहद करें कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपना पॉजिटिव जो हमारा किरदार है, मस्बत किरदार है, उसे अदा करेंगे, हमेशा अदा करते रहेंगे, माहौल को साफ सुथरा रखेंगे, कौमी इमलाक की हिफाजत करेंगे, तालीम को फ़रोग देंगे और अपनी आने वाली नस्लों को अपने वतन से मोहब्बत का दर्स देंगे। ये दुआ हमेशा जारी और सारी रखिए कि हमने अपने वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हमा वक्त तैयार रहना है और अपने वतन की तरक्की के लिए हाथों में हाथ लेके, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है ताकि हम एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क के फर्द बन सकें, शहरी बन सकें और हमारे वतन का झंडा हमेशा सर बुलंद रहे, आसमान पे लहराता रहे, सूरज चांद सितारों की तरह चमकता रहे इंशाल्लाह।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا

वो मेरे पास है क्या पास बुलाऊं उसको, वो मेरे पास है क्या पास बुलाऊं उसको, दिल में रहता है मगर कहां ढूंढने जाऊं उसको, वो मेरे पास है क्या पास बुलाऊं उसको, दिल में रहता है कहां ढूंढने जाऊं उसको, आज फिर पहली मुलाकात से आगाज करूं, आज फिर पहली मुलाकात से आगाज करूं, आज फिर दूर से ही देख के आऊं उसको, आज फिर पहली मुलाकात से आगाज करूं, आज फिर दूर से देख के आऊं उसको, कैद कर लूं उसे आंखों के नहा खानों में, कैद कर लूं उसे आंखों के नहा खानों में, चाहता हूं कि किसी को ना मिलाऊं उसको, उसे दुनिया की निगाहों से करूं मैं महफूज, वो वहां हो के जहां देख ना पाऊं उसको, कैद कर लूं उसे आंखों के नहा खानों में, चाहता हूं कि किसी को न मिलाऊं उसको, उसे दुनिया की निगाहों से करूं मैं महफूज, वो वहां हो के जहां देख ना पाऊं उसको, चलना चाहे तो रखे पाँव मेरे सीने पर, चलना चाहे तो रखे पाँव मेरे सीने पर, बैठना चाहे तो आंखों पे बिठाऊं उसको, बैठना चाहे तो आंखों पे बिठाऊं उसको, वो मुझे अपना, वो मुझे इतना सुबक लगता है, वो मुझे इतना सुबक लगता है, कभी गिर जाए तो पलकों से उठाऊं उसको, मुझे मालूम है आखिर तो जुदा होना है, मुझे मालूम है आखिर तो जुदा होना है, लेकिन एक बार तो सीने से लगाऊं उसको, याद से उसकी नहीं खाली कोई लम्हा, याद से नहीं खाली उसकी कोई लम्हा, फिर भी डरता हूं कहीं भूल ना जाऊं उसको, मुझे मालूम है आखिर तो जुदा होना है, लेकिन एक बार तो सीने से लगाऊं उसको, याद से उसकी नहीं खाली कोई लम्हा, फिर भी डरता हूं कहीं भूल ना जाऊं उसको, आज तो धूप में तेजी ही बहुत है वरना, आज तो धूप में तेजी ही बहुत है वरना, अपने साए से भी शहजाद बचाऊं उसको, वो मेरे पास है क्या पास बुलाऊं उसको, वो मेरे पास है क्या पास बुलाऊं उसको, दिल में रहता है कहां ढूंढने जाऊं उसको। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से ये आवाज है आपके अपने मेजबान वसीम अहमद की। तमाम खूबसूरत समातों को प्रोग्राम गुंचे शब में मेरा बहुत बहुत मोहब्बत भरा, खलूस भरा सलाम कबूल हो। यकीनन सभी लोग खैर खैरियत से होंगे, और जो मेरे रेगुलर लिसनर हैं वो भी मेरे प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, और जिन्होंने आज बाई चांस रेडियो को ट्यून इन किया और मेरी आवाज़ उनके समातों तक पहुंची, तो उनको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं, उन सभी लोगों के साथ जो कि मेरे रेगुलर लिसनर भी हैं और मेरे प्रोग्राम को, सभी प्रोग्राम को बहुत प्यार से खुलूस से सुनते हैं। तो दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। प्रोग्राम आपको पता है कि ज़्यादातर हम इसमें बल्कि बेस करता है पोइट्री के ऊपर, शायरी के ऊपर,
तुम्हारी ये ख्वाहिश होती है कि आप लोग भी अपनी खूबसूरत पोएट्री लेके प्रोग्राम में शामिल हों, अपनी खूबसूरत आवाज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल करें। और अगर आपके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है, आप उसे शामिल करना चाहते हैं, तो आप वो भिजवा दें। अगर आप खुद शायरी करते हैं और इस और समझते हैं कि वो इस सिपाही की शायरी है कि उसे रेडियो पे नशर किया जाए और लाखों लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उसे भी ज़रूर भेजिएगा, हम उसे भी अपने प्रोग्राम में ज़रूर जगह देंगे। सबसे पहली बात, अगर आप इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। रात का आखिरी पहर चल रहा है और नींद जो होती है वो नींद तो खैर हर जगह भी आ जाती है, फिर भी नींद का गलबा तारी होने में देर नहीं लगती। तो बातें करते रहिए, हमारे प्रोग्राम को भी सुनते रहिए और उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फेसबुक पे आप आ सकते हैं www.facebook.com/fm101lahore। इसके अलावा आप हमें SMS कर सकते हैं। आपने क्या लिखना है, 101L, बल्कि आप सिर्फ 101 लिखिएगा, उसके बाद स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, पैगाम, अपनी पसंद का शेर, अपनी बात, अपनी फरमाइश। वैसे ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, मगर फिर भी आप लिख दीजिए, अगर मेरी क्यू शीट में शामिल हुआ या फिर मेरे प्रोग्राम के साथ मैच कर गया तो मैं ज़रूर प्ले कर दूंगा। और उसे आपने सेंड करना है 4471 पे, यानी 4471 पे। 101 लिखिए, अपना पैगाम लिखिए, भेज दीजिए 4471 पे, 4471 पे। टेलीफोन नंबर आपका जाना पहचाना 0421100001। पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 00 यानी 0092 जरूर मिलाइएगा, 0092 उसके बाद 42 उसके बाद 1110000101। मैं इंग्लिश में बता देता हूं ताकि आपको और ज़्यादा, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूं। 0092 लिखिएगा, उसके बाद 42 लिखिएगा, यानी टाइप कीजिएगा, मिलाइएगा, उसके बाद 1111000101। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर से हमें कॉल करेंगे तो आपने क्या करना है कि 042 लाहौर का एरिया कोड है, उसके बाद आपने हमारा टेलीफोन नंबर मिलाना है 1111000101, और आपकी कॉल हम तक पहुंच जाएगी। कैसे पहुंच जाएगी, छम से पहुंच जाएगी। अभी आपकी ऑफ एयर कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करूंगा, उसके बाद आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करूंगा। तो जनाब, सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? रात के ये खूबसूरत पहर हमारे आपके दरमियान मौजूद है। चांद को मैं देखते हुए आ रहा था, घट रहा है, 13वीं 14वीं 15वीं, गुजर गई, 14वीं का चांद भी गुजर गया, मगर अभी इतना नहीं घटा, अभी उसमें मतलब लगता है कि बड़ा चांद है, रोशनी है, यानी चांदनी है और हम तक पहुंच रही है। हम बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो चांद के अंदर अपने महबूब के चेहरे को तलाश करते हैं। चांदनी रात की अपनी ही एक खूबसूरती है, एक लाजवाब सा, दिलनशी सा, एक दिलगुदाज सा एहसास होता है चांदनी को देख के। तो जनाब, अगर आप भी चांद की चांदनी को देख के, कौन है जो जिसके ऊपर असर नहीं होता, जिसके ऊपर चांद की चांदनी का जादू नहीं चलता? मेरे ख्याल सभी लोगों पे चांद की चांदनी का जादू चलता है। और मज़े की बात यह कि अक्सर लोग ये कहते हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं वो एक दूसरे को ज़रूर कहते हैं कि रात को चांद को देखना, इतने बजे तुम भी देखना, इतने बजे मैं भी देखूँगा, तो हम एक दूसरे के चेहरे को देखेंगे। क्या बात है जनाब, कैसी कैसी चीज़ें जो हैं, कैसे कैसे ख्यालात जो हैं, ये मोहब्बत करने वाले क्रिएट करते हैं, बना लेते हैं और महसूस भी करते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें भी हमने आपसे करनी हैं, कुछ हमने आपके लिए खूबसूरत से गाने, आपको पता है कि मैं कोशिश मेरी होती है कि ऐसा गाना प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँ जिसको सुने बहुत अर्सा हो गया हो, और आप जब उसको सुने तो आप उसको इंजॉय करें, भरपूर तरीके से इंजॉय करें। उसके साथ साथ आपके लिए बेशुमार, यानी बहुत सारी पोइट्री मेरे पास मौजूद होती है और उसे मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा शामिल करने की कोशिश करता हूं और उसमें कामयाब भी हो जाता हूं। आम तौर पे मैं कामयाब भी हो जाता हूं। एक छोटा सा टॉपिक भी होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज के टॉपिक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ,

कि हाँ ज़िंदगी की बहुत बहुत अहम बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, खुशी और गम। हर शख्स की ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। आप इसके बारे में बातचीत करेंगे, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे, हम दोनों मिलके, हम सब मिलके डिस्कशन करेंगे। क्या खुशी और गम दोनों आरजी हैं, आप क्या कहते हैं? क्या खुशी भी आरजी होती है और गम भी आरजी होता है? फिर उसके बाद रस्ता ही रस्ता है, हंसना है ना रोना है, ऐसी कैफियत होती है। मगर कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो हमेशा गमगीन दिखाई देते हैं। अगर खुशी और गम आरजी हैं तो वो लोग कौन हैं जो कि हमेशा गमगीन दिखाई देते हैं, उदास दिखाई देते हैं? क्या उनका गम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता? क्या खुशी इतनी ज़्यादा नहीं आती कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस खुशी को एंजॉय कर सकें, उस खुशी को साथ लेके चल सकें? 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन से आवाज़ है आपके अपने आरजे वसीम अहमद की, और इस वक्त आप नेटवर्क पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और नेटवर्क पे मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ जहाँ भी एफ एम 101 के स्टेशन हैं वहाँ पे मेरी आवाज़ आपकी समातों तक पहुँच रही है। तो तमाम इंजीनियर्स जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को उठाए हुए, सबका शुक्रिया, सबको सलाम पेश करता हूँ। उसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम को लाइव जो स्ट्रीमिंग है उस पर भी सुन सकते हैं। एफ एम 101 के ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करके वहाँ पर रेडियो पाकिस्तान के तकरीबन सभी स्टेशन को आप इंजॉय कर सकते हैं, और साथ एफ एम 101 लाहौर को भी। और इसके साथ साथ आप हमारी जो वेबसाइट है www.radio.gov.pk, इस पर जाके भी लाइव स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, आपके पार्टिसिपेशन, आपके जो शामिल होना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे लिसनर्स रात के इस पहर में भी मेरे प्रोग्राम को सुन रही होती हैं और भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो जिन्होंने हमें याद किया वो है मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वेलकम कहा है और कहा है कि जी हम आपके बगैर नहीं रह सकते, आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में बस की है। बिल्कुल ऐसे ही है मोहम्मद शहजाद, आपकी मोहब्बत भी हमारे दिलों में हमेशा बसी रहती है। इसी तरह से हमारी बहुत अच्छी लिस्टनर है, हमारी बहुत अच्छी कॉलर हैं अनीला जी। तो अनीला जी को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को सुना है और उन्होंने तारीफ़ की है। बहुत शुक्रिया आपका अनीला जी, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इसी तरह से आपके जैसे जैसे मैसेजेस मुझ तक पहुँचते जाएंगे, मैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल करता चला जाऊँगा। मगर शर्त ये है कि आपने जाग तो रहे हैं, शायरी भी सुन रहे हैं, कुछ अपने दिल की बातें हमारे मुंह से सुन के हैरान हो जाते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स अपने मुंह से बात कर रहा होता है तो वो हमारे दिल की बात कह रहा होता है। कभी कभी हम ये सोचते रह जाते हैं कि जनाब ये बात तो मैं कहने वाला था, इसने मुझसे पहले कह दी। इसी तरह से कभी कभी हम इजहार मोहब्बत करने वाले होते हैं और अभी हम इजहार करने वाले होते हैं कि दूसरी तरफ से मोहब्बत का इजहार हो जाता है, तो अपने आप को बहुत लक्की समझते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इजहार जो है वो सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी इजहार मोहब्बत सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है या करना ज़्यादा अच्छा लगता है? इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है कि कोई आपसे इजहार मोहब्बत करे, उसको आप ज़्यादा लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, या अगर आप इजहार मोहब्बत करते हैं किसी के साथ तो इसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं? क्या समझते हैं कि हम आपने बाजी ले ली या उन्होंने बाजी ले ली? इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, आप भी कीजिएगा, आपको हम अपने प्रोग्राम में हमेशा वेलकम कहते हैं। ख्वाबों की देख भाल में आंखें उजड़ गईं। लोग ख्वाबों को बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, सोचते हैं, बुनते हैं। हम भी सोचते हैं, हम भी बुनते हैं। ख्वाब देखना इंसानी फितरत है, चाहे वो पूरे हों या ना हों, मगर ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है और उनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, उनको पूरा करने के लिए कोशिश करना भी बहुत ज़रूरी है। ख्वाबों की देखभाल में आंखें उजड़ गईं,
तन्हाइयों की धूप ने चेहरा जला दिया।

ख्वाबों की देखभाल में आंखें उजड़ गईं, तन्हाइयों की धूप ने चेहरा जला दिया, लफ्जों के जोड़ने में इबारत बिखर चली, लफ्जों के जोड़ने में इबारत बिखर चली, आईने ढूंढने में कई अक्स खो गए, लफ्जों के जोड़ने में इबारत बिखर चली, आईने ढूंढने में कई अक्स खो गए, आए ना फिर वो लौट के एक बार जो गए, आए ना फिर वो लौट के एक बार जो गए, वो दिन वो वक्त वो रुत वो मौसम वो सरकशी, आए ना फिर वो लौट के एक बार जो गए, आए ना फिर वो लौट के एक बार जो गए, वो दिन वो वक्त वो रुत वो मौसम वो सरकशी, ए गर्दिशे हयात ए रफ्तार माहौसाल, क्या जमा इस जमीन पे होंगे ना फिर कभी, जो हम सफर फराक की दलदल में खो गए, पत्ते जो गिर के पेट से रस्तों के हो गए, क्या फिर कभी ना लौट के आएगी वो बहार, क्या फिर कभी ना लौट के आएगी वो बहार, क्या फिर कभी ना आंख में उतरेगी वो धनक, जिसके वफूर रंग से झलकी हुई हवा करती है आज तक एक जुल्फ में सजाए हुए फूलों का इंतजार, लम्हे जमाने हिज्र के फैले कुछ इस तरह, रेगे रवाने दश्त की तमसाल हो गए, ऐ दश्ते पुरसराब में भटके हैं इस कदर, इस दश्ते पुरसराब में भटके हैं इस कदर, नक्शे कदम थे जितने भी पामाल हो गए, अब तो कहीं पे खत्म हो रास्ता गुमान का, शीशे में दिल के सारे यकीन बाल हो गए, जिस वाके ने आंख से छीनी थी मेरी नींद, जिस वाके ने आंख से छीनी थी मेरी नींद, उस वाके को अब तो कई साल हो गए, ख्वाबों की देखभाल में आंखें उजड़ गईं, तन्हाइयों की धूप ने चेहरा जला दिया। 101 FM की आवाज़ आपकी समातों तक पहुंच रही है और जनाब हमेशा की तरह एक टॉपिक भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद होगा और उसे भी हम डिस्कस करेंगे, और बात हम जो इस वक्त कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि जब हम किसी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो सिर्फ इजहार जो है वो काफ़ी नहीं होता, इजहार काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके लिए उसको करके प्रैक्टिकली करके दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है।

जिंदगी में कुछ लोग किताब की तरह होते हैं, हर बार जितनी बार भी हम उन्हें पढ़ते हैं, एक नया मतलब, एक नई सोच हमारे सामने आती है, उनका एक नया चेहरा हमारे सामने आता है, एक नई चीज हम समझ पाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल एक किताब की तरह होते हैं, एक बात अच्छी किताब की तरह वही हमारे दिल में बसे रहते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल अखबार की तरह होते हैं, एक दिन में ही पुराने हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। तो दिल की किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर हम दिल की किताब को पढ़ना जान लें तो यकीन मानिए कि जिंदगी की खूबसूरतियां हमारे सामने आ जाती हैं, और जब जिंदगी की खूबसूरती सामने आती है तो फिर हमें पता चलता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और फिर जब जिंदगी की बात आती है, जिंदगी की खूबसूरती की बात आती है, तो फिर जिंदगी के, दुनिया के जो खूबसूरत नज़ारे हैं, जो खूबसूरत चेहरे हैं, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, जो हमारे दिल में उतर जाते हैं, हमारी रूह में उतर जाते हैं, वो हमें और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत चीज़ है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी कदर की जाए, उतनी ही कम है उन हवाओं की, उन फिज़ाओं की, जिनको हम हमेशा उन लम्हों में अपने साथ महसूस करते हैं, जिन लम्हों में हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार जवान होता है, उनको हमेशा महसूस करते हैं, चाहे कितनी ही सदियां क्यों ना गुजर चुकी हों।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: आपने बहुत ही मेलोडियस और खूबसूरत गीत सुना माला बेगम और मसूद राना की आवाज़ में, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा कोई एक आधा गीत ज़रूर ऐसा शामिल करूं जिसको सुने आपको बहुत अरसा हो चुका हो या पहली दफ़ा आप सुन रहे हो। तो यकीनन इस खूबसूरत गीत को आपने पसंद किया होगा। आवाज़ों के साथ साथ मैं आपको फिल्म का नाम भी बताऊँ, लव इन यूरोप फिल्म का नाम था। आप सुन रहे हैं 101 FM अपने मेज़बान वसीम अहमद के साथ, और रेडियो लिस्टर्स मज़ीद कुछ बातचीत आपसे करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक शेर मुझे याद आ गया इस गाने को सुनने के बाद। वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नज़र तुम मेरा महबूबे नजर तो देखो। तो जो हमने बात की थी कि आपको इजहार करना ज्यादा अच्छा लगता है या कोई आपसे इजहार करे वो ज्यादा अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, इस बारे में भी जरूर बात करेंगे। और आपके जब मैसेजेस हम तक पहुंचेंगे तो हम उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहते कि कुछ लोग हैं जिन्हें हम बहुत दिल के अंदर हमारे बसे होते हैं, हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं, हमेशा हमारे दिल में बसे रहते हैं और हम उन्हें भूलने की कोशिश बहुत करते हैं। अजीब बात है ना, हम जिन्हें भूलने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं वही सबसे ज्यादा याद आते हैं। जो हमें शख्स बहुत ज्यादा अजीज होता है, जिससे हम सच्चे दिल से मोहब्बत प्यार करते हैं, उसी को हम जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं या कोई वजह आ जाती है, कोई मजबूरी आ जाती है, कोई भी वजह आ जाती है जिससे वो हमसे दूर चला जाता है, हमें वो मिल नहीं सकता, हम उसे मिल नहीं सकते, हम उसे पा नहीं सकते, वो हमें पा नहीं सकता, मगर हम उन्हें भूल भी नहीं पाते। और जितना हम भूलना चाहते हैं उतना ही वो याद आते रहते हैं। और यादें जो होती हैं वो हमेशा हमेशा दिल को उदास करके जाते हैं, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत यादें क्यों ना हो, हमेशा दिल को उदास करके जाती हैं। हमेशा आंखों में हम देखें यादों को सोचने के बाद, हमारी आंखों में आंसू जो होते हैं वो हमारी पलकों में कहीं ना कहीं आंसू का 1, 2, 4, 5, 10 कतरे, कभी कभी तो दरिया बह जाते हैं आंखों में से। कहने वाले कहते कि मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत खामोशी से किसी की खुशी की दुआ करते रहने का नाम है। कुछ लोगों के लिए हम दुआ करते रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं होते, हमारा साथ नहीं दे पाते, मगर उनकी मोहब्बत हमारे दिल में हमेशा बसी रहती है और हम कभी भी उन्हें भूल नहीं पाते, भूलना चाहें भी तो नहीं भूल पाते। सीमा जी की कॉल हम तक पहुंची और सीमा जी के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और उन्होंने कहा कि जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। कोशिश कीजिएगा कि ये गज़ल प्रोग्राम में शामिल हो जाए, मैं कोशिश करूँगा। जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आप रात के इस पहर में मेरे प्रोग्राम को सुन रही हैं और प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं जबकि आपकी तबीयत भी नहीं ठीक। तो आपके लिए बहुत सारी दिल की गहराइयों से दुआएं कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, बल्कि तमाम बीमार लोग सबके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जनाब कुछ आपके पैगाम जो कि बहुत थोड़े से हैं, और मगर फिर भी आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप हौसला अफजाई करते हैं, और रात के इस पहर में जब नींद बहुत ज़्यादा गहरी होती है और उस वक्त जागना और प्रोग्राम को सुनना भी एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपका बहुत मशकूर होता हूँ कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं। तारा मसूद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं फेसबुक पे, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तायरा मसूद, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मलक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, ये हमारे बहुत अच्छे बहुत प्यारे लिसनर हैं और बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, कहते हैं कि बहुत उमदा प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से तायरा मसूद ने कहा है कि एक इन्होंने भेजी है हमें, पोइट्री भेजी है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे प्रोग्राम में शामिल करूँ, सही तरह से पढ़ पाऊँ। और रहे जुनून में जो घायल था एक मुद्दत तक, रहे जुनून में जो हायल था एक मुद्दत तक, खिलाफे अक्ल मेरा दिल था एक मुद्दत तक। कभी मैं जब्त की हद से गुजरने लगता था, कभी मैं कुछ लिखने में कुछ पढ़ने में कभी मैं जब्त की हद से गुजरने लगता था, कभी मैं सब्र का कायल था एक मुद्दत तक। गिला न कर कि तेरा हाल दिल नहीं समझा, मैं अपने आप से गाफिल था एक मुद्दत तक। बहुत अच्छे। गिला न कर कि तेरा हाल दिल नहीं समझा, गिला न कर कि तेरा हाल दिल नहीं समझा, ओके ओके ओके, मैं अपने आप से गाफिल था एक मुद्दत तक। गमे हयात की शिद्दत ने कर दिया तन्हा, मगर न रौनक के महफिल था एक मुद्दत तक। न और बात कि उसने नहीं की कदर मेरी, मैं एक शख्स को हासिल था एक मुद्दत तक। बहुत बढ़िया। मुझे वो देख के अब रास्ता बदलते हैं, मैं जिनकी आखिरी मंजिल था एक मुद्दत तक। बहुत अच्छे, क्या बात है। मुझे वो देख के अब रास्ता बदलते हैं, मैं जिनकी आखिरी मंजिल था एक मुद्दत तक। न जाने क्यों मुझे हर बात उसकी सच्ची लगी, मैं जिस निगाह में बातिल था एक मुद्दत तक। कहो ना तुम कि मुझे आग ही नहीं गम की, शरीके नालाए बिस्मिल था एक मुद्दत तक। जो कर रही है मेरा आज आशियां बर्बाद, उन आंधियों के मुकाबिल था एक मुद्दत तक। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद जमाने ने मुझको तोड़ दिया, मैं अपने जोम में कामिल था एक मुद्दत तक। ये जब्त मुस्तकिल ऐसे नहीं मिला मुझको, मैं ख्वाहिशात का कातिल था एक मुद्दत तक। हर एक बड़े को मैं आकिल समझता था, बहजाद कुछ इसलिए भी मैं जाहिल था एक मुद्दत तक। बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा मसूद साहिबा, प्रोग्राम में आपने खूबसूरत पोइट्री भेजी। और मुंडा सियालकोटी वसीम अवान की तरफ से आपको और आपकी टीम को और सबको सुनने वालों को इन्होंने सलाम किया मुझे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर सियालकोट जिंदाबाद। क्या बात है मलक वसीम अवान मुंडिया सियालकोटिया, ठीक हो गया। और जनाब इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह अहम ऐलान इन्होंने लिखा है जी, मलक वसीम अवान मुंडा सियालकोट की सालगिरह 18 अगस्त को सियालकोट में भराई जाएगी। क्या बात है जनाब, तो फिर हम आ जाएगा टिकट कटवा ले सियालकोट का। इसी तरह से इन्होंने रियाज भट्टी को, जुल्फकार अली बुखारी रावलपिंडी वाले को सलाम भेजा, बहुत सारी दुआएं तमन्नाएं, बहुत शुक्रिया। फौजी हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं, फौजी आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हुमैरा प्रोग्राम में शामिल है, हुमैरा आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने के लिए। कह रही हैं कि आपके प्रोग्राम का हमें इंतज़ार रहता है, आप जब आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और जो पोइट्री आप सुनाते हैं वो बहुत ही बढ़िया होती है। और बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातों का और तमाम पसंदीदगी का। और अगर आप SMS करना चाहते हो, आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए आपने क्या करना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम पैगाम लिखना है और उसे सेंड कर देना है 4471 पे। ओके जनाब, अब हम ऐसा करेंगे कि एक पोइट्री प्रोग्राम शामिल करेंगे, उसके बाद आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। अगर आप हमारे साथ कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई खूबसूरत पोइट्री सुनाना चाहते हैं तो आप सुना सकते हैं, आपको हम वेलकम करेंगे। टेलीफोन आपका जाना पहचाना, टेलीफोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, टेलीफोन नंबर है 1111-000101 और शुरू में आपने 042 मिलाना है और फिर आपसे हम बातचीत भी करेंगे और आपको पोइट्री भी सुनाएंगे। आज के पहले क्वार्टर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वसीम साहब, मैं मोहम्मद सलमान भट्ट लाहौर से बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है
1: जी? शुक्र लगा मोहम्मद सलमान भट्ट, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
2: मेरी पहले भी आपसे बात हुई है दोपहर वाले प्रोग्राम में।
1: दोपहर को तो मैं आया नहीं था, मैं रात को ही आया हूँ आज।
2: नहीं जो वो आप,
1: अच्छा अच्छा पंजाबी का प्रोग्राम,
2: मैंने आपसे वादा किया था ना, आपसे रात को 2 से 4 मैं नहीं सोता।
1: बहुत शुक्रिया।
2: सुबह वो फास्ट फूड का काम करते हैं, सुबह आते हैं तो मैं इंतजार करता हूँ, नमाज पढ़ के सोता हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चले बड़ी मेहरबानी आपकी। क्या कहेंगे
2: वही आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, अब हम तो इस उम्र से निकल गए हैं।
1: अच्छा,
2: अब नहीं,
1: आपकी उम्र लड़ाई झगड़े वाली आ गई है।
2: नहीं, अब ये है कि वो आपकी भाभी की है, 14 अगस्त को सालगिरह, और ये जश्न आजादी भी 14 अगस्त को ही है, बस ये।
1: अच्छा,
2: दिमाग मोल डालेंगे,
1: ठीक हो गया। चले, बहुत शुक्रिया सलमान, जीते रहे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, जब आप आए तो कोई पोइट्री कोई शायरी जरूर लेके आए और उसे हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्या खुशी और गम दोनों आरजी हैं? आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि दोनों आरजी हैं या इनमें से कोई चीज मुश्किल भी है? 0422111001 इज द नंबर टू डायल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
1: हमीद गुल साहब, आपके पिछले प्रोग्राम में गैर हाजिरी लगी, आपको ना जुर्माना होगा, आप मुझे ना एक बहुत खूबसूरत सी नज़म सुनाएंगे।
3: चले, मैं आपको ताज़ा नज़म सुनाऊंगा।
1: कैसे, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं?
3: आप ठीक हैं सर, कोई बड़ा जुर्माना पाओ आज।
1: सुनाइए प्लीज।
3: देखिए, ये इत्तेफाक है। मतलब देखें, कबीर अथर एक शायर हैं, बड़े खूबसूरत लहजे के
1: जी।
3: वो अभी आप, मैंने कहा जुर्माना डालें, तो वो मतलब देखें क्या खूबसूरत आया। ये कहते हैं कि रोजो शब यू ना अजियत में गुजारे होते, रोजो शब
1: यू ना अजियत में गुजारे होते,
3: चैन आ जाता अगर खेल के हारे होते।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
3: और खुद से फुर्सत की मुयसर नहीं आई वरना, खुद से फुर्सत की मुयसर नहीं आई वरना, हम किसी और के होते तो तुम्हारे होते।
1: ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, हम किसी और के होते तो तुम्हारे होते। वाह।
3: हाँ, और तुझको भी गम ने अगर ठीक से बरता होता, तेरे चेहरे पे खदो खाल हमारे होते।
1: बहुत अच्छे।
3: और खुल गई हम पे मोहब्बत की हकीकत वरना, खुल गई हम पे मोहब्बत की हकीकत वरना, ये जो बेफायदा लगते हैं खसारे होते।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
3: और एक एक भी मौज अगर मेरी हिमायत करती,
1: वाह,
3: एक भी मौज अगर मेरी हिमायत करती, मैंने उस पार कई लोग उतारे होते।
1: एक भी मौज अगर मेरी हमायत करती, मैंने उस पार कई लोग उतारे होते।
3: कई लोग उतारे होते, अच्छा। बड़ी मेहरबानी। और लग गई और कहीं उम्र की पूंजी वरना, लग गई और कहीं उम्र की पूंजी वरना, जिंदगी हम तेरी दहलीज पे हारे।
1: ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: और इसका मतलब है कि खर्च हो जाते इसी एक मोहब्बत में कबीर, खर्च हो जाते इसी एक मोहब्बत में कबीर, दिल अगर और भी सीने में हमारे होते।
1: वाह, दिल अगर और भी सीने में हमारे होते, बहुत बढ़िया।
3: एक ही होता है ना,
1: बहुत बढ़िया।
3: ये अलग बात है, मेडिकल साइंस कहती है खाने चार होते हैं।
1: हाँ, ये तो है। बिल्कुल ठीक है।
3: मैं आपको एक ताज़ा नज़म सुनाता हूँ अपनी
1: जी।
3: अच्छा, मैंने इसको अनुवाद नहीं रखा, लेकिन मैंने 10-12 साल पहले लिखी थी।
1: अच्छा,
3: लेकिन मैंने एक प्रोग्राम में पढ़ी, उसके बाद मैंने इसका अनुवाद भी रख दिया कि हवा हम राज है मेरी। हम और आप हवा पे बात कर रहे हैं, हवा के ये बारह, देखिए को अनुवान है, हवा हम राज है मेरी
1: जी।
3: एक बड़ा अजीब सा ख्याल है कि मौका है वारदात पर मुझे एक गुमशुदा ख्वाब मिला है।
1: वाह।
3: मैं मौका है वारदात की जात चाहूंगा आपसे।
1: वाह।
3: मौका है वारदात पर मुझे एक गुमशुदा ख्वाब मिला है, एक गुलाब मिला है।
1: वाह।
3: ऐसा लगता है कोई जल्दी में इसे छोड़ गया, या कहीं रख के शायद भूल गया।
1: हाँ।
3: या कहीं रख के शायद भूल गया, ये निशानी मुझे कातिल तलक ले जाएगी।
1: हाँ।
3: ये निशानी मुझे कातिल तलक ले जाएगी, हवा हमराज है मेरी, मैं ढूंढ लूंगा उसका पता।
1: वाह।
3: हवा हम राज है मेरी, मैं ढूंढ लूंगा उसका पता, मैं तलाश कर लूंगा वो काली आंखें वो सुर्ख डोरे।
1: वाह वाह वाह वाह, वो काली आंखें वो सुर्ख डोरे,
3: वो सुर्ख डोरे, बस एक बार मुझे उसकी उंगलियों के निशान मिल जाएं, बस एक बार मुझे उसकी उंगलियों के निशान मिल जाए, नाकाम हसरतों को जुबा मिल जाए।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
3: मौके वारदात पर मुझे एक गुमशुदा ख्वाब मिला है, एक गुलाब मिला है।
1: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
3: ये वैसे जुर्माना छोटा था।
1: सही बात है, अब गैरहाजिरी ना किया करें आप।
3: नहीं मैं आपको सही बात,
1: हम उदास हो जाते हैं,
3: मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही।
1: अच्छा अच्छा,
3: ऐसी कुछ खांसी सी थी मुझे
1: जी। सही बात है, अब गैरहाजिरी ना किया करें आप।
3: नहीं मैं आपको सही बात,
1: हम उदास हो जाते हैं,
3: मैं मेरी

0: आपके साथ शेयर किया आपकी फेसबुक पे।
1: जी जी चले मैं अभी उसको पढ़ूंगा। हाँ मिल गया मुझे, मिल गया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके जी, हमीद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, खूबसूरत शायर, खूबसूरत लबो लहजा, खूबसूरत बातें और आवाज़ में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि उसका अंदाज़ा आपको भी बखूबी हो चुका होगा। और जनाब अली हसन ने हमें अस्सलाम वालेकुम कहा है शेरपुर से, तो वालेकुम अस्सलाम अली हसन। कुछ और भी लिख देते भाईजान तो हम उसको भी ज़रूर पढ़ देते। अला यार पंदरानी बलोच फ्रॉम जैकवाबाद, इन्होंने हमें एसएमएस किया है, किसी माली ने लिखा था दीवार बे के फूल तोड़ना मना है, बे लिखा हुआ है दीवार पे या बे के फूल तोड़ना मना है, काश के खुदा उसके दिल पे भी अच्छा पे, किसी माली ने लिखा था दीवार पे के दीवार पे, किसी माली ने लिखा था दीवार पे कि फूल तोड़ना मना है, काश के खुदा उसके दिल पे भी लिख दे कि दिल तोड़ना मना है। ओए होए होए हो, क्या बात है। दुनिया का दस्तूर है कि कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग वही रहता है, बस मेहमान बदलते रहते हैं। ओह हाँ हाँ, क्या बात है। अल्लाह यार खूबसूरत बात की आपने, दुनिया में कोई आता है कोई जाता है, महफिल जो है वो उसी तरह कायम दायम रहती है, उसी तरह से लोग रौनकें लगी रहती हैं, वो जो लोग पहले थे वो नज़र नहीं आते, जो लोग अब हैं वो भी नज़र नहीं आएंगे, मगर वो उसी तरह से रौनकें लगी रहेंगी, उसी तरह दुनिया के मेले जो हैं वो चलते रहेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने की, तो दिल को जो लोग तोड़ते हैं वो भी कमाल करते हैं, जो दिल को तोड़ते हैं वो भी कमाल करते हैं। तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप भी एसएमएस कीजिए, अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार कीजिए, और उसके लिए आपने क्या करना है, 101 लिखना है, उसके बाद अपना पैगाम और उसे भेजना है 4471 पे। फेसबुक पे आपके पैगामात थोड़े से हैं, मगर आपका बहुत शुक्रिया कि आप शामिल हो रहे हैं। हमीद गुल साहब ने प्रोग्राम को लाइक किया है, ताहिरा मसूद साहिबा ने, मलिक वसीम अवान ने, आपका बहुत शुक्रिया। हमीद गुल साहब का एक कता भी हम तक पहुंचा है, देख लेते हैं, जो उनको गनीमत है ये भी तो एक अंदाजे मोहब्बत है, अब से कोई आपसे कोई पर्दा तो है नहीं, आप तो जानते हैं क्या हकीकत है। वाह जी वाह, क्या बात है, आप तो जानते हैं क्या हकीकत है, और वो लोग वाकई जानते होते हैं कि हकीकत क्या है। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी को हम चाहते हैं सच्चे दिल के साथ, तो यकीनन उनको हमारी मोहब्बत का बिल्कुल पता होता है, वो बिल्कुल महसूस कर रहे होते हैं। टेलीफोन नंबर 04211-0000-101। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है जी आप?
1: जी शुक्र अल्लाह का। मोहम्मद शहजाद कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
2: आपकी दुआएं जो खुशी मिलती है वो हम बयान नहीं कर सकते जी।
1: अच्छा,
2: तो आप में थोड़ा थोड़ा शहरी आ रही है मुझको भी। आप हमारे चांद है हम सितारे हैं, आप हमारे चांद है हम सितारे हैं, आप हमारे तो हम तुम्हारे हैं।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
2: ये आस्ता आस्ता जी मैं सीख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला।
1: हाँ नहीं, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बड़े जहीन हैं माशाल्लाह से।
2: जी आपकी मेहरबानी, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह। यकीन माने वो पुराना गाना नहीं, एक चांदनी रातें जी, चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे, वसीम साहब से करें बातें।
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद, थैंक यू वेरी मच।
2: और मेरा सब बहन भाइयों को सलाम, अब्दुल मीर बर्फी वाले भी जाग रहे, नीला आपकी भी आएगी माशाल्लाह, सबको मेरा दिल से सलाम, आपको दिल से दुआ और मोहब्बत से प्यार से सलूक से सलाम जी।
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
2: ओके अल्लाह हाफिज।
1: ओके जी, मोहम्मद शहजाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, खूबसूरत सी नज़्म आपके लिए। मुजीद अमजद का कलाम है, नज़्म का उन्वान है बुंदा। काश मैं तेरे बनगोश का बुंदा होता,

0: रात को बेखबरी में जो मचल जाता मैं, तो तेरे कान से चुपचाप निकल जाता मैं। सुबह को गिरते तेरी जुल्फों से जब बासी फूल, मेरे खो जाने पे होता तेरा दिल कितना मलूल। तू मुझे ढूंढती किस शौक से घबराहट में, अपने महके हुए बिस्तर की हर एक सिलवट में। तू मुझे ढूंढती किस शौक से घबराहट में, अपने महके हुए बिस्तर की हर एक सिलवट में। जूही करती तेरी नर्म उंगलियां महसूस मुझे, मिलता इस गोश का फिर गोशाए मानूस मुझे। कान से तो मुझे हरगिज न उतारा करती, कान से तू मुझे हरगिज न उतारा करती। तू कभी मेरी जुदाई ना गवारा करती, यूं तेरी कुर्बत रंगी के नशे में मदहोश, उम्र भर रहता मेरी जां में तेरा हल्का बगोश। काश मैं तेरे बनगोश का बुंदा होता, काश मैं तेरे बनगोश का बुंदा होता। वर्मन एफएम पाकिस्तान, आपका अपना फैमिली स्टेशन। खूबसूरत शायरी, खूबसूरत पोइट्री आपके लिए, खूबसूरत मौसीकी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अल्लाह का, ठीक हूँ। कौन? इरम बात कर रही है जी। जी आपका सलाम पहुंच गया। कहिए कैसी हैं, ठीक ठाक हैं आप?
1: जी शुक्रिया
0: जी। क्या कहेंगे जी?
1: जी सर पोएट्री शायरी।
0: शायरी है आपके पास?
1: जी सर।
0: जी सुनाइए।
1: शायर कहता है कि दिल आए रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलाते हैं। तो सर अगर देखा जाए तो ये हकीकत बयान हुई कि हाय रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलाते हैं। प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं।
0: हाँ, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं।
1: सूख जाए जो टहनी टहनी, उससे फूल नहीं फिर खिलता। इस दुनिया की रीत यही है, जो चाहो नहीं मिलता।
0: बहुत अच्छे।
1: ये आंखें जो देख रही हैं कैसे अजब तमाशे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: जिसने प्यार किया है उसका दर्द कोई ना बांटे, जिसने प्यार किया है उसका दर्द कोई ना बांटे। अपने जीवन की बगिया में सिर्फ खिले हैं कांटे। अंदर से हम टूट गए हैं, बाहर से अच्छे खासे। प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यारे।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: सर सलामत रहे और खुश रहे। अगर टॉपिक पे बात सर करें तो ये जो खुशियाँ होती है और जो गम होते हैं, ये आजमाइश होती है अल्लाह ताला।
0: बिल्कुल ठीक है, ये तो आजमाइश है, मगर ये देखें क्या खुशी और गम दोनों आरजी है। ओके ओके, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या खुशी और गम दोनों आरजी हैं। खुशी भी थोड़ी देर के लिए आती है, गम भी थोड़ी देर के लिए आता है, ऐसे ही है। तो फिर जिंदगी तो फिर अपनी डगर पे चलती चली जा रही है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। मगर कुछ लोगों को हमने देखा है कि मुस्तकिल खुशी में हमने नहीं देखा। बहुत कम लोग हैं जिनको हम हमेशा खुश देखें, कम लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोग हमें वो भी कम ही दिखाई देते हैं जो हमेशा गमगीन होते हैं, वो भी कम दिखाई देते हैं। तो फिर हम क्या कहें कि ये आरजी हैं, दोनों चीज़ें आरजी हैं। इनके इनके पीछे नहीं भागना चाहिए, इनको इनको साथ लेके नहीं चलना चाहिए। क्या हम खुशियों को साथ चलना छोड़ दें, क्या हम गमों को लेके साथ चलना छोड़ दें? मगर ये दोनों चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी का खासा है। ज़िंदगी इसी का नाम है, तभी तो ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी, तभी तो ज़िंदगी अच्छी लगेगी। उसमें तभी कभी मीठा होगा, कभी नमकीन होगा। कभी हम ऊपर होंगे, कभी जवाल की तरफ होंगे, कभी हम ऊंचाई की तरफ होंगे, कभी हम कामयाबी की तरफ होंगे। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी। आप क्या कहती हैं? मैं सही कह रहा हूँ। हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू, हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू। कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। میری مثال کہ ایک نخل خشک صحرا ہوں، تیرا خیال کہ شاخ چمن کا طائر تو، تیرا خیال کہ شاخ چمن کا طائر تو، میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی، میں مانتا ہوں کہ ایسا نہیں بظاہر تو، میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی، میں مانتا ہوں کہ ایسا نہیں بظاہر تو، ہنسی خوشی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے، یہ ہر مقام پہ کیا سوچتا ہے آخر تو، فضا اداس ہے رت مزمحل ہے میں چپ ہوں، فضا اداس ہے رت مزمحل ہے میں خوش ہوں، جو ہو سکے تو چلا آ کسی کی خاطر تو، فراستو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، فراستو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، زمانہ صاحب زر اور صرف شاعر تو، ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تو، کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تو. اگلے کالر سے بات کریں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام محترم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟
0: جی شکر اللہ کا. کون بول رہے ہیں؟
2: جی اسد پہاڑ سے تعلق ہے، ادھر لاہور میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، بس آپ لوگوں کو پروگرام سن کے.
0: کیا نام آپ کا؟
2: سر ارشد.
0: ارشد، ارشد صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
2: اسد.
0: جی جی اسد، اسد بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
2: الحمدللہ سر، بس ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے، بس سن رہے ہیں.
0: بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. کیا کہیں گے
2: سر جی؟ بس یہی کہوں گا کہ سب سننے والے کو دعا سلام، بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، دو چار گھنٹے آپ لوگوں کی وجہ سے بھی اچھے گزرتے ہیں موبائل سے.
0: چلے جیتے رہے، جیتے رہے،
2: سب کو سلام،
0: بہت شکریہ، اللہ حافظ. اوکے جی، پروگرام سن رہے ہیں. وعدہ کیا تھا اس نے کسی شام کا کبھی، وعدہ کیا تھا اس نے کسی شام کا کبھی، ہم آج تک ہیں گھر میں چراغاں کیے ہوئے. وعدہ کیا تھا اس نے کسی شام کا کبھی، لوگ وعدے بھی تو کرتے ہیں نا، وعدے نبھاتے نہیں ہیں. یہ بھی تو کہتے ہیں کہ وعدہ وفا نہ کیجیے، وعدہ تو کیجیے، ہم یہ تو کہہ سکیں کہ تیرا انتظار ہے. اور یہاں پہ وعدہ کیا تھا اس نے کسی شام کا کبھی، وعدہ تو کیا تھا نا، وعدہ کیا تھا اس نے کسی شام کا کبھی، ہم آج تک ہیں گھر میں چراغاں کیے ہوئے.

0: बादलों की छाओं में मुझे सुकून चाहिए, मुझे करार चाहिए। अभी आपने खूबसूरत गीत सुना और अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: कहाँ
0: से?
1: आपका प्रोग्राम बड़े दिन तक सुनता हूँ लेकिन कॉल नहीं मिलती सर।
0: आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: डीजी खान से।
0: डीजी खान से? ओ, बड़ी दूर से आपने हमें कॉल किया है।
1: कॉल नहीं मिलती, बड़े मुद्दत से मिला।
0: अच्छा, चले चले, बड़ी मेहरबानी। आप इस वक्त जाग रहे हैं और मुझे मेरे प्रोग्राम को सुन भी रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे?
1: बस सरेकी में रुबाई है
0: जी,
1: लाहौर वालों के नाम
0: जी, मगर लाहौर वालों को सरेकी की समझ आएगी?
1: आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छा, अजा था जवानी भी इब्तदाए, शबाब भरिया था क्या करे सी, आखिर कजला पाके इना दे जीजे तबाह करे।
0: वाह जी वाह।
1: एक और, अखियां तेरे रहम कानी, मोहब्बत तेरी वत ते कैम कानी, अमीर सदनी ते भाई ते वैने, गरीब सदन ते कैम कानी।
0: बहुत बढ़िया,
1: बहुत मेहरबानी सर,
0: बहुत शुक्रिया, जीते रहे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, 042-111-0101 इज द नंबर टू डायल। टाइम बताता चलूँ कि 3:00 हो चुके हैं 25 मिनट, अभी तकरीबन 35 मिनट हमारे पास और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम अनिल जी, वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
2: मैं ठीक हूँ, बस मैं सोच रही थी कि आज वसीम भाई ने कह रहा नहीं नीला तू सो जा। मेरी कॉल मिलती है वसीम भाई, बड़े मजे से शायरी पढ़ रहे होते। नहीं वैसे पोएट्री बड़ी अच्छी पढ़ी याद है, बहुत हमेशा की तरह, लेकिन आज कुछ ज्यादा रिच। और स्टार्टिंग जो बीजीएम था ना आपका उस मौजू के हवाले से, बहुत जबरदस्त लग रहा है।
0: हाँ जी, वो गीत था मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन।
2: मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, बहुत खूबसूरत। तो उसका बीजीएम लग रहा था जैसे पीछे ना बन गया, तो बड़ा अच्छा लग रहा था आप जब गुफ्तगू कर रहे थे।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: और वाकई जी नो डाउट इंशाल्लाह ताला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान
0: इंशाल्लाह,
2: और बड़ी कुर्बानियां देने के बाद पाकिस्तान भी हासिल किया गया। और 14 अगस्त सबको मेरी तरफ से एडवांस मुबारक है। अल्लाह ताला खुशियों से भरा रखे हमारा पाकिस्तान।
0: आमीन, आमीन।
2: और टॉपिक पे ये कहूंगी कि खुशी और गम आनी जानी एक साथ तो रहते नहीं ना कभी भी, हमेशा के बस गम ही रहे और ना ये कि हमेशा खुशी ही रहे, ऐसा तो नहीं होता ना।
0: ऐसा नहीं होता, मगर कुछ लोग इन चीजों को, खास तौर पे गम को, कुछ लोग लेके बहुत अरसा तक अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं, अपने जख्म कुरेते रहते हैं, उनका क्या किया जाए?
2: वेले होंगे होंगे सारे। कैसे होंगे, और किसे आ रहे नहीं थे, ये सारे ही लगे रहिए। अपने नहीं लगते होंगे तो दूजियां दे कुरेदन चले जाते हैं।
0: सही है।
2: कुछ लोगों को बस अच्छा लग रहा होता है ऐसे यूं रहना अपनी ही दुनिया में, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी नेमत दी है। एक बादशाह था ना, उसने कहा था मुझे अंगूठी में कोई खास कुछ लिखवा के दो कि जिसे देखूं मैं हंसूं और जिसे देखूं मैं रोपूं। तो वो उस पर लिखवाया गया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, जब वो हंसता था तो खुश होता था, तो जब देखता था तो फिर रोता था, और जब वो रो रहा होता था परेशान उदास होता था तो वो ये देखे खुश हो जाता था कि ये भी गुजर जाएगा
0: खुश हो जाता था।
2: हाँ, तो बस ना एक सी कंडीशन नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। सीमा जी और बादशाह की हो गया जे हैं,
0: हाँ।
2: इतनी हस्ती मुस्कुराती हस्ती है हमारी, आप हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत सारी दुआएं सीमा जी आपके लिए, आया करो शहजादे हो। कॉल कर देती है ना। और अभी शुजाद भाई है, कह रहे थे हम करें वसीम भाई से बातें, वाह वाह शुजाद भाई। क्या गुनगुनाया आपने, वेरी गुड। अच्छा, बड़े मजे से मस्त होके गा रहे थे वसीम से करें बातें। जबरदस्त। और आज अमित भाई ने बड़ी अच्छी शायरी अपनी जो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई सुनाई,
0: बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी।
2: और मैं भी कुछ पढ़ के तो
0: जरूर सुनाए ना, सुनाए
2: मैनू ਟਮਾਟਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਝਸੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਕਾ ਪਾਣੀ ਸੋਰੀ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਕਾ ਪਾਣੀ ਮੁਝਸੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ ਆਂਖ ਮੁਝਸੇ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਕਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹਸਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਮੁਝਸੇ ਕਿਉਂ ਹਸਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੁਝਸੇ ਦਰਿਆ ਕੀ ਰਵਾਨੀ ਸਬਸੇ ਬਾਤੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹਸਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੁਝਸੇ
0: ਦਰਿਆ ਕੀ ਰਵਾਨੀ
2: ਮਾਸ ਨਾਖੁਨ ਸੇ ਅਲਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੇ ਉਸਨੇ ਪੂਛੇ ਥੇ ਜੁਦਾਈ ਕੇ ਮਾਨੀ ਉਸਨੇ ਪੂਛੇ ਥੇ ਮੁਝਸੇ ਜੁਦਾਈ ਕੇ ਮਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਖਾਤਰ ਮੁਝੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਖਾਤਰ ਮੁਝੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਮੁਝਸੇ ਰੋਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਹਾਥ ਪੇ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਹਾਥੋਂ ਪੇ ਹਾਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੋੜ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਮਾਂਗੀ ਥੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ
0: ਵਾਹ
2: ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਾ ਉਸਕੋ ਇਲਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਸੁਨੇ ਮੁਝਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨੀ
0: ਵਾਹ
2: ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਚਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ
0: ਜਾਊਂਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ
2: ਤੋ ਇੱਕ ਫੂਲ ਹੋਤੇ ਜੋ ਹਮਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਹੋਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਗੁੰਚਾ ਸ਼ੋਟ ਮੇ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ
2: ਅਬ ਸੀਮ ਬਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਕੋ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢੂੰਢਤੀ ਰਹੀ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਬ ਮੈਂ ਢੂੰਢ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
0: ਅੱਛਾ ਮੰਡੇ ਕੋ ਤੋ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ 1 ਵਜੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਸ਼ੋ
2: ਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਮੈਨੇ ਸੁਣਤੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੌਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ
0: وہ اصل میں نا وہ اس میں دو کمرشل پروگرام تھے ایک حکیم صاحب کا تھا ایک اور تھا دس منٹ کا پھر شروع میں سیگمنٹ تھے ہمارے کشمیر کے پھر اس کے بعد جشن آزادی کے تو وہ اس طرح کی چیزیں اکٹھا ہو گئی تھیں تو اس وجہ سے نا درمیان میں تھوڑا سا ٹائم بچا تھا شو کے لیے
2: بس آپ پتہ کیا کیا کریں پھر جب تھوڑا سا شو ٹائم بچ جاتا ہے نا آپ سٹارٹ میں کالیں بھی لینی شروع کر دیے ساتھ ساتھ بی جی ایم چلائی جایا کریں گانا چلائی جایا کریں باتیں کری جایا کریں جتنے باقی بھی آتے ہیں میری بہن نے بھی سب کے لیے بہت سی دعائیں اسلام تھینک یو وسیم بھائی اللہ حافظ
0: بہت شکریہ اللہ حافظ اوکے جی نیلا جی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت باتیں کر رہی تھی ایسا ٹوٹا ہے تمناؤں کا پندار کے بس دل نے جھیلے ہیں محبت میں وہ آزار کے بس ایک لمحے میں زمانے میرے ہاتھوں سے گئے ہیں اس قدر تیز ہوئی وقت کی رفتار کے بس تو کبھی رکھ کے ہمیں دیکھ تو بازار کے بیچ تو کبھی رکھ کے ہمیں دیکھ تو بازار کے بیچ اس طرح ٹوٹ کے آئیں گے خریدار کے بس کل بھی صدیوں کی مسافت پہ کھڑے تھے دونوں درمیاں آج بھی پڑتی ہے وہ دیوار کے بس یہ تو ایک ضد ہے کہ محسن میں شکایت نہ کروں یہ تو ایک ضد ہے کہ محسن میں شکایت نہ کروں ورنہ شکوے تو ہیں اتنے میرے یار کے بس ایسا ٹوٹا ہے تمناؤں کا بندار کے بس دل نے جھیلے ہیں محبت میں وہ آزار کے بس دل نے جھیلے ہیں محبت میں وہ آزار کے بس السلام علیکم
3: جی وعلیکم السلام وسیم بھائی کیا حال ہے ٹھیک
0: جی جی جی جی عبد النور ہاشمی صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں
3: الحمد للہ سر جی میں سنبھال سے عبد الشکور بول رہا ہوں
0: اوہو آپ کی آواز بالکل ویسی لگ رہی تھی دوبارہ سے نام بتائیں
3: جی عبد الشکور اسلام سے بول رہا ہوں
0: جی جی عبد الشکور آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں فرسٹ کلاس ہیں
3: اس ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں بڑا انجوائے کر رہا ہوں ماشاء اللہ
0: بہت شکریہ
3: بہت نائس پروگرام ہے
0: بہت شکریہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ
3: جی یہ اسلام آباد کے ساتھ ایک ہمارا سٹی ہے رباط
0: اچھا اچھا رباط
3: جی جی
0: رباط سے بڑی دور سے آپ بات کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا پروگرام سننے کا پروگرام میں شامل ہونے کا
3: آپ کی محبت کھینچ کر لائی ہے نا
0: بہت شکریہ بہت شکریہ جی کچھ سنائیں گے
3: جی
0: میں نے کہا کچھ سنائیں گے آپ کو شاعری کچھ سنائیں گے
3: سر شاعری کیا पॉलिटिकल से तल्लुक है मेरा, शायरी तो बहुत कम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: तो ये आप कहते हैं गम और खुशी, ये काफी आपको पूछा गया है ना।
0: जी जी जी जी, अगर गम भी आरजी है खुशी भी आरजी है तो फिर मुश्किल क्या है?
3: सर जी असल खैर अपनी मेरी सोच के मुताबिक जो है ना, देखें ये गम या खुशी है ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है ना।
0: जी जी,
3: इंसान को अल्लाह पर एतमाद करना चाहिए।
0: जी जी,
3: जो कुछ है ना वो इंसान की मेरे ख्याल में बेहतरी होती है ना, अगर इंसान की सोच हो ना, खासकर जो गम है ना, गम के बाद अच्छी बात आती है। तो ये है ना, खुशियों को एंजॉय करना, जो गम है वो भी खुशी से कबूल करे ना आप, फिर ये ना इंसान जो है ना उस वो वापसदार है, हर वक्त गम में रहता है, वो गम फिर आपके नजदीक नहीं आएगा ना।
0: मतलब गम हो तो सब्र करे ना,
3: बिल्कुल
0: शुक्र करे, सब्र करे, ठीक
3: करे। उसे ये है ना कि आप देखें दूसरे लोगों में, वो कहते हैं ना आपको बीमार है हॉस्पिटल में चले जाए, अपनी बीमारी आपको याद नहीं रहे।
0: सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: इसी तरह आप देखें ना दुनिया में, शायद ये तो इंसान को होता है ना बेहतरी के लिए, अल्लाह पाक आपको ठोकर लगाते हैं ना तो बंदे तो भूल रहा है। गम इसलिए आता है ना, कोई फिर ये होता है इंसान की कुछ कोताहियां भी होती है।
0: सही बात है, सही बात है।
3: तो खुशी रहने के लिए कहते हैं खुशी, फिर ये है ना आप दूसरों को मुकम्मल खुशी दें।
0: सही बात है, अगर हम खुशी चाहते हैं हमें मिले तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को खुशियां दें,
3: खुश रखें ना, खुश रखें। सबसे जो अहम चीज है ना गम असद है।
0: सही
3: जाने,
0: सही बात,
3: आप ये दिल दिमाग जहन से निकाल देना तो फिर कभी भी आपको क्या कहते हैं गम वाले लम्बे नहीं आए।
0: सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो जेलसी है, जो हसद है, ये बहुत काम खराब करते हैं
3: ये हर मामले में, देखे ना छोटा बड़ा, जिसके अंदर जेलसी आती है ना वो हर वक्त गमगीन रहता है।
0: अपनी आग में जलता रहता है, अपनी आग में जलता रहता है,
3: बिल्कुल जलता रहता है।
0: बहुत शुक्रिया शकूर साहब, थैंक यू वेरी मच, आइंदा भी जरूर कॉल कीजिएगा, अगले हफ्ते भी
3: इंशाल्लाह जी। सोना रब तुहानू बहुत सारी सेहत दे, सारी दुआएं, हर कदम पे कामयाबी दे, अल्लाह पाक
0: तुहाडी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच,
3: अल्लाह
0: हाफिज़। ओके जी, मुरमुन एफएम पाकिस्तान तुहाडा अपना फैमिली स्टेशन, मैं तुहाडा अपना मेजबान वसीम है, मैं तुहाडे नाल रेडियो पाकिस्तान दे लाहौर दे स्टेशन तो थोड़ी मेरी गुफ्तगू जारी है और कुछ खूबसूरत पोइट्री आपके लिए प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। उदासी के उफक पर जब तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं, उदासी के उफक पर जब तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं तो मेरी रूह पर रखा हुआ ये हिजर का पत्थर चमकती बर्फ की सूरत पिघलता है। उदासी के उफक पर जब तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं तो मेरी रूह पर रखा हुआ ये हिजर का पत्थर चमकती बर्फ की सूरत पिघलता है। अगरचे यूं पिघलने से ये पत्थर संगरेजा तो नहीं बनता, अगरचे यूं पिघलने से ये पत्थर संगरेजा तो नहीं बनता, मगर एक हौसला सा दिल को होता है, मगर एक हौसला सा दिल को होता है कि जैसे सरबसर तारीख शब में भी, कि जैसे सरबसर तारीख शब में भी अगर एक जर्द रोज सहमा हुआ तारा निकल आए तो कातिल रात का बेइस्म जादू टूट जाता है। मगर एक हौसला सा दिल को होता है कि जैसे सरबसर तारीख शब में भी अगर एक जर्द रो सहमा हुआ तारा निकल आए तो कातिल रात का बेइस्म जादू टूट जाता है। मुसाफिर के सफर का रास्ता कम तो नहीं होता, मुसाफिर के सफर का रास्ता कम तो नहीं होता, मगर तारे की चिलमन से कोई भूला हुआ मंजर अचानक जगमगाता है। सुलगते पांव में एक आबला सा फूट जाता है, सुलगते पांव में एक आबला सा फूट जाता है, सुलगते पांव में एक आबला सा फूट जाता है। उदासी के उफक पर जब तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं तो मेरी रूह पर रखा हुआ ये हिजर का पत्थर चमकती बर्फ की सूरत पिघलता है। اگرچہ یوں پگھلنے سے یہ پتھر سنگ ریزہ تو نہیں بنتا، مگر ایک حوصلہ سا دل کو ہوتا ہے کہ جیسے سر بسر تاریک شب میں بھی اگر ایک زرد روز سہما ہوا تارا نکل آئے تو قاتل رات کا بے اسم جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسافر کے سفر کا راستہ کم تو نہیں ہوتا، مگر تارے کی چلمن سے کوئی بھولا ہوا منظر اچانک جگمگاتا ہے، سلگتے پاؤں میں کابلا سا پھوٹ جاتا ہے۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا

0: कोई शक है क्या?
1: You're listening to FM 101, a bale bale o shower shower.
2: सुरर संगीत
3: हो गई अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
4: इज़